100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन शनिवार, वैशाख मास की 19वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 9 मई सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

कण में राम, क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, एक नई सुबह, एक नई किरण और नई आशाओं के साथ आप सभी को सुमंगलम सुप्रभात। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि सुबह के 6:01 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री, आपके समक्ष उपस्थित हूं लेकर भक्ति और आध्यात्मिकता से महकता आपका पसंदीदा कार्यक्रम पुष्पांजलि लेकर। इस आध्यात्मिक यात्रा का श्री गणेश करते हैं प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश के चरणों के वंदनिया के साथ।

श्रोताओं, अक्सर हम पत्थर की मूरत में उस निराकार को ढूंढते हैं, जबकि वो हमारे भीतर की करुणा में मुस्कुरा रहे होते हैं। आज पुष्पांजलि के जरिए, इन भजनों के जरिए, इस संगीत के जरिए उसका संगीत अपने कानों में घोलेंगे तो बाहर नहीं अपने भीतर को जगाइएगा, शायद वहीं कहीं उसका वास मिल जाए।

श्रोताओं, माला के मोती तो हाथ से छूट सकते हैं, पर जो सुमिरन हमारी सांसों में बस जाए उसे विधाता भी नहीं छीन सकता। आइए अपनी हर श्वास में उस परमेश्वर को याद करें और उसको अपनी श्वासें उनके नाम करें।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। जैसे चंदन अपनी शीतलता से मन को शांत करता है, वैसे ही हरि का नाम हमारे जीवन के ताप को हर लेता है। आइए एक और मधुर भजन के साथ अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं और सुनते हैं एक सुंदर हरि भजन।

जो हमारे पास है वो उसकी कृपा से है, और जो नहीं है वो उसकी इच्छा है। शिकायतें छोड़कर जब हम केवल धन्यवाद कहना सीख जाते हैं, तभी जीवन में उत्सव शुरू होता है। आइए अब प्रणाम करें और वंदन करें उस देवता का जिसने हमारे सब दुखों को हरा, जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, जिन्होंने हमें भक्ति करना सिखाया। आइए उन्हें याद करें और उन्हें प्रणाम करें।

श्रोताओं, इसी मधुर भजन के साथ पुष्पांजलि की यात्रा यहीं तक। अगले घंटे यानी 7 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद आपको आपके फिर से आपके पास लेकर आऊंगी मैं सदाबहार गीत, आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम।

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। कल शाम कोलकाता में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। वे आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज और कल किया जा रहा है। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें लगभग 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने वाले व्यक्तियों और नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्टरेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच जयपुर में 7:30 बजे खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सिरों की

0: सरगम है। सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हर दम है।
0: जिंदगी के सतरंगी रंग FM रेनबो के संग।
2: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
3: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
2: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

नमस्कार, आदाब और एक और बार आप सभी का प्यार भरे दिल से स्वागत है। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त अरुश्री और आपके लिए लेकर आई हूँ वही गुलदस्ता। जी हाँ, सदाबहार गीत का गुलदस्ता, जो जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, जहाँ पर हम आपको उन्हीं गलियारों में दोबारा लेकर चलते हैं। तो चलिए बिना देर किए खो जाते हैं उन गलियों में और खूबसूरत सा सदाबहार गीत ये तराना आपके लिए।

0: प्यारे हम
1: देखते हैं तो वो गलियां और वो सड़कें हमें बुलाती हैं जहां हमें अपना बचपन या अपनी जवानी छोड़ी होती है। एक ऐसा गीत जो कहता है कि दुनिया हमारे होने या ना होने से रौनक कम नहीं होगी, पर हमारे हिस्से का सफर हमें पूरी शिद्दत से तय करना है। तो आइए एक गाना सुनते हैं जो आपको उन्हीं लम्हों की याद दिलाएगा।

मोहब्बत में इकरार और इंतजार की अपनी एक अलग ही मिठास होती है। कभी कभी दिल की बात कहने का अंदाज थोड़ा हक जताने वाला भी होता है। तो चलिए सुनते हैं एक वो गीत जो हर आशिक को ये हिम्मत देता है कि कोशिश नाकामयाब नहीं होगी, क्योंकि वो अगर रूठा है तो हम उसे मना ही लेंगे।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

फुर्सत ही किसे है जमाने को देखें, फुर्सत ही किसे है कि जमाने को देखें, तेरी सूरत से हटे आंख तो दुनिया को देखें, है ना। कुछ ऐसा ही ये जो अगला गाना वो आपके लिए।

नजरें तलाशती हैं जिसे वो दिल के पास है, नजरें तलाशती हैं जिसे वो दिल के पास है, मगर उसे ढूंढने का मजा ही कुछ खास है। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत की सबसे हसीन चीज क्या है? शायद वो तलाश जो हमें चैन से बैठने नहीं देती, जब दिल किसी के लिए इतना बेकरार हो जाए कि हर चेहरे में उसी की सूरत नजर आने लगे, तब ऐसी ही धुनों का, ऐसी ही तरानों का, ऐसी ही गीतों का जन्म होता है, जैसे कि ये वाला।

प्रोग्राम सदाबहार गीत ओनली ऑन एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त तरुश्री। और अब एक और खूबसूरत सा गीत आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी की आवाज़ में सिर्फ आपके लिए।

0: धनुष है,
1: सात सिरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार गीत मेरे यानी तरुषि के साथ। श्रोताओं, जब कुदरत करवट लेती है और फिजाओं में फूलों की महक खुलती है तो दिल अपने आप गुनगुना उठता है ना। लेकिन असली बहार तब आती है जब कोई अपना, जिसका हमें बरसों से इंतजार होता है, हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए। कहते हैं ना, तेरे आने की आहट से महक उठी है राहें, तेरे आने की आहट से महक उठी है राहें, तुझे ही ढूंढती हैं अब मेरी प्यासी निगाहें।

0: इसी खूबसूरत तराने के साथ सदाबहार गीत का सफर यहीं तक। 8 बजे सुनेंगे आप हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके बाद 8:15 से फेवरेट प्रोग्राम शुरू होगा। जी हाँ, गुड मॉर्निंग लखनऊ, मेरे और एक और दोस्त के साथ। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे,
1: घटा के संग संग,
2: संभलना।
1: हवा के साथ साथ,

0: और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि

0: वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज़ जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया

जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियाँ अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर

0: जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियाँ अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान, द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो।
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: गाहे बगाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, गाहे बगाहे की मुलाकात ही अच्छी है अमीर, कद्र खो देता है हर रोज का आना।
1: तभी तभी कभी तो हम लोग इसीलिए कभी कभी आते हैं ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम लोग कभी कभी आते हैं, लेकिन आज आए हैं तो बहुत सारी तैयारियों के साथ आए हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छे लगेंगे आप भी और हम तो बहुत अच्छे ही हैं। हम कौन
1: जी? मैं हूँ तरुश्री और मेरे साथ है
0: मैं अंजू शुक्ला, और 8:17 का वक्त अंजू और तरु लेकर आई हैं आपके लिए। गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
2: दिन की सकारात्मक शुरुआत विद आज का मॉर्निंग मंत्रा।
3: हाँ जी, आज का मॉर्निंग मंत्रा, दिन की अब एक पॉजिटिव शुरुआत करते हैं। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा जान लेते हैं, क्या कहता है आज का मॉर्निंग मंत्रा अंजू?
4: बिल्कुल, आज तो बहुत ही पॉजिटिव सा दिन है। आज पूरा देश गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मना रहा है, तो उनके विषय में हम बात करेंगे। उन्हें नमन करते हुए आज उन्हीं का एक कथन हम मॉर्निंग मंत्रा के रूप में आपसे शेयर करना चाहते हैं। कहा था उन्होंने, आप भी अपने आप से कहिएगा कि मुझे शक्ति दो कि मैं अपने भार को हल्का महसूस करूं और इसे हंसते हंसते सहन कर सकूं।
3: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात। और मेरे ख्याल से इसी बात को अगर हम सब महसूस करने लगे तो हमारे सच में भार कम हो जाएंगे और हम अपनी जिंदगी और आसानी से जी सकेंगे।
4: बिल्कुल, और जिंदगी जीने के लिए होती है खुशहाली के साथ और एक बहुत ही खूबसूरत हौसले के साथ, जज्बे के साथ।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: आठ बजकर 28 मिनट का वक्त और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। दो दोस्त आपके साथ बने हुए हैं, मैं तरुश्री, मेरे साथ हैं अंजू
2: जी।
1: और अब हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं, आज के दिन की बात कर लेते हैं। वैसे तो आज है वीकेंड, सैटरडे है, सैटरडे तो सैटरडे को अक्सर बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग होती है और वो प्लानिंग धीरे धीरे ट्रांसफर होती चली जाती है, आज नहीं चलो कल कर लेंगे।
2: टालने की आदत है,
1: टालने की आदत, जी हाँ। ये जो टालने वाली जो आदत है ना, वो अक्सर कभी जोखिम क्या कह सकते हैं कि हमारा नुकसान भी कर देती है ना।
2: बहुत सारी चीजें पेंडिंग हो जाती है। अभी हम लोग स्लीप डेप्थ की बात कर रहे थे, तरुण ने कहा कि हम रात में बहुत लेट नाइट तक काम कर रहे थे, हम भी एक बजे तक जग रहे थे और हम लोगों ने दोनों ने अपनी जो नींद का कर्जा है ना, उसकी लिस्ट में 3 से 4 घंटे बढ़ा दिए है ना। और ये लगता है कि नहीं, अब ये काम टालते रहे, फिर एटलीस्ट रात हो गई और अब तो फिर हमारे पास समय था ही नहीं, हमें निपटाना ही था, हर हाल में डेडलाइन थी तो हमें वो काम करना ही था। तो यही होता है कि अक्सर हम जब टालते रहते हैं तो फिर जब काम इकट्ठे बढ़ जाता है, बहुत सारा हो जाता है, तो या तो हम काम इनकम्प्लीट रखते हैं या हम अपना नुकसान करते हैं, अपनी नींद कुर्बान करते हैं या और जो बाकी काम है उनमें से कुछ चीजें कुर्बान करनी पड़ जाती हैं उस काम को पूरा करने में। तो कहते हैं ना कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब।
1: हाँ, तो ये जो हम लोग टालम टाल करते रहते हैं और हम लोग सोचते हैं कि अरे आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन वो सच में कहते हैं ना कबीर दास जी के दोहे, हम लोग बहुत कुछ सिखा जाते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ सिखाने के चक्कर में हम लोग खाली दोहे याद रखते हैं, उसका मतलब नहीं समझ पाते कभी।
2: हाँ, और उसको अपनी जिंदगी में उतार नहीं पाते, तो चलिए आज उतरवाते हैं।
3: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
2: तो भाई समझ तो गए होंगे, भूमिका तो हम लोगों ने बनाई दी है, क्यों करूं?
1: बिल्कुल, और हमारे श्रोता वैसे भी इतने समझदार हैं कि हम लोग बस एक इशारा देते हैं और वो पूरी की पूरी बात समझ जाते हैं। तो आज के मुद्दे की बात ही यही, चर्चा ही यही हो रही थी कि टालने की आदत है ना, ये जो टालने की आदत है ये कितनी ज्यादा नुकसानदेह है आपकी लाइफ में।
2: बहुत ज्यादा, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा,
1: कई बार सबके लिए ज्यादा।
2: हाँ, कई बार इसका हम नुकसान बहुत बड़ा बड़ा तरीके से झेल चुके, पूरी पूरी रात जगना पड़ा है या बहुत इंपॉर्टेंट काम मिस हो गए हैं, उसकी डेडलाइन चली गई है, या होता है ना कि जब अरे मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक गृह प्रवेश में जाना था, मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड का गृह प्रवेश था और ये हुआ कि उसके लिए गिफ्ट लेना है, उसके घर के लिए गिफ्ट लेना है, चलो आज नहीं कर ले लेंगे, यहाँ से निकले रास्ते में सोचते हुए गए कि आज आकाशवाणी से लौटेंगे, आज लेते हुए आएंगे, लेकिन चलो बाद में ले लेंगे, शाम को निकल कर ले लेंगे। फिर हुआ ये कि फिर घर में जो सुन ना रही हूँ घर में जो चीजें मौजूद थी उन्हीं में से
1: कुछ सेग्रीगेट करके
2: लेके जाना पड़ा। तो ये जो टालने की आदत, और खुद को बहुत गिल्ट सा फील हो रहा था, मैंने क्यों नहीं टाइम निकाला उसके।
1: बिल्कुल, और होता अक्सर पता है क्या है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं लास्ट सिचुएशन पर, ये जो टालने की आदत होती है उसकी वजह से। जैसे आपने ये जो बताया वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास जब भी कोई काम आता है, नॉर्मली एक कहावत है कि आप तब तक काम नहीं करते जब तक आपको लगता है कि भाई उसके लिए अब समय नहीं बचा है ना। तो उसमें ऐसा ही होता है अक्सर, जब हमको कोई काम मिलता है उसके लिए हमारे पास एक हफ्ता रहता है, लेकिन वो एक हफ्ता हमें ऐसा लग रहा है वो एक हफ्ता नहीं एक साल बराबर है, वो एक साल बराबर है तो हमको काम करने की क्या जरूरत है अभी। लेकिन वो एक हफ्ता कुछ सोच समझ के आपको दिया गया है कि उस एक हफ्ते में आप थोड़ा थोड़ा काम करिए। लेकिन फिर हम टालने की आदत क्या करते हैं कि चलो ठीक है आखिरी दिन में काम कर ही लेंगे, लेकिन वो आखिरी दिन में जो काम आप मात्र 2 घंटे में रोज कर सकते हैं उसके लिए आप पूरा पूरा 24 घंटे लगाते हैं उस काम को कंप्लीट करने में। तो आप सोचिए उस आखिरी के जो 24 घंटे आपने लगाए उस दिन के जो काम है वो तो टल गए फिर से।
2: बिल्कुल टल गए, और ये आदत हमको शुरू से सिखाई जाती है। देखो जो हमारा पाठ्यक्रम बनाया जाता है किसी भी हम क्षेत्र की बात करने में, स्कूल लेवल से हम सीखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या कोर्स होगा, सेकंड टर्म में क्या कोर्स होगा, इस कक्षा में हमें क्या पढ़ना है, तो डिवाइड किया जाता है सारे कामों को, भाग कर दिया जाता है, विभाजित किया जाता है, अलग अलग भागों में बांटा जाता है ताकि हम एक निश्चित समय में उस पर्टिकुलर पार्ट का काम कंप्लीट कर सकें, और ऐसा ना हो कि हम फिर जब लास्ट मोमेंट एग्जाम टाइम आए तो ही हम सारे टर्म्स का सिलेबस एक साथ पढ़ रहे हैं बोझा बनाकर, और उसके बाद फिर ये होता है ना कि सब कुछ ऊपर से निकल जाता है, खिचड़ी पक जाती, समझ में कुछ नहीं आता। तो आपकी काम की क्वालिटी भी प्रभावित होती है जब आप इकट्ठा काम करते हैं, जब समय हमारे पास सीमित रह जाता है तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में हमारे काम का जो क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है, साथ ही साथ हमारा मानसिक स्तर, हम जो स्ट्रेस में आते हैं वो अलग, वो भी नुकसान बहुत बड़ा होता है ना।
1: बिल्कुल सही कहा। तो ये एक छोटी सी आदत आपको आबाद भी कर सकती है, आपको बर्बाद भी कर सकती है।
2: बिल्कुल सही कहा।
1: तो आपको बस ये करना है कि हमें अपना एक्सपीरियंस बताना है कि टालने की आदत कितनी ज्यादा नुकसानदेह है, तो आप हमें मेल करिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर और हमें बताइए कि आपके क्या विचार हैं आज के मुद्दे पर,
2: और इस काम को बिल्कुल मत टालिएगा, जल्दी से मेल कर दीजिए। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 FM रेनबो पर।

8:38 का वक्त हो गया। अंजू और तरुश्री हैं आपके साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में 100.7 एफएम रेनबो पर आप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के जरिए भी हमारे बहुत सारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं, मेल से बता रहे हैं कि आप हमें कहां कहां से सुन रहे हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन लाइव रेडियो के जरिए भी हमें सुन पा रहे हैं आप। गूगल पर जस्ट टाइप कीजिए 100.7 और हमारे साथ जुड़ जाइए कहीं से भी कभी भी। और तरु, अब बात कर लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों में। आज दो महान विभूतियां जो हमेशा से हमें बचपन से हमें प्रेरित करती आई हैं और मुझे लगता है कि भारत का हर नागरिक उनसे प्रेरणा लेता है। कहते हैं ना कि कुछ लोग किताबों में मिलते हैं और कुछ लोग इतिहास में, लेकिन कुछ शख्सियतें पूरी सभ्यता की पहचान बन जाती हैं। और हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो दो महान हस्तियां, उन्हीं में से एक हैं ये। कहते हैं कि जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, जी हाँ, जहां भय मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, ये सिर्फ पंक्तियां नहीं हैं, ये भारत की आत्मा की आवाज़ हैं। और जो जिन्होंने ये कहा था, गुरु रवींद्रनाथ टैगोर जी, श्रद्धापूर्वक हम उन्हें नमन करते हैं। एक कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, संगीतकार, चित्रकार और शिक्षाविद, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारतीय साहित्य को विश्व मंच पर पहचान दिलाई। 1913 में वे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति बने। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला दोनों उन्हीं की रचनाएँ हैं।

0: उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया वो। और आज जो कहा जाता है ना कि 9 मई की तारीख है, और जब हम 2026 के पंचांग की बात करते हैं या बंगाली कैलेंडर की बात करते हैं, तो आज गुरु रवींद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जा रही है।
1: जी हाँ दोस्तों, और एक और शख्सियत जिनको हम सभी जानते हैं, जी हाँ, महाराणा प्रताप जी। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, स्वाभिमान, वीरता और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। हल्दीघाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में साहस और संघर्ष की मिसाल माना जाता है। और चेतक को कौन नहीं जानता, उनका प्रिय घोड़ा, वो वीरता से कम नहीं, उनकी भी कहानी उतनी ही ज़्यादा प्रासंगिक है। तो सर कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता, यही था महाराणा प्रताप का स्वाभिमान। तो आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, और क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज हम उनकी जयंती मनाते हैं। और इसी तरह से जो अद्वितीय साहस का नाम है महाराणा प्रताप, और जैसा कि अभी भी हम आज दो जयंती खास लोगों की मना रहे हैं, तो आज का दिन बड़ा खास बन जाता है।
0: बिल्कुल, इन दोनों महान विभूतियों को हम शत शत नमन करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं, उसका संकल्प करते हैं।

0: बिल्कुल, जिम्मेदारियों का एहसास हम सभी को होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए। हमारे जिन दोनों महान विभूतियों का की जयंती आज हम मना रहे हैं, वो हमें यही शिक्षा देती हैं, यही सिखाती हैं। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर और महान वीर महाराणा प्रताप जी को उनकी जयंती पर नमन करते हुए चलिए तरु आज के इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
1: जी, और कुछ मेल शामिल कर लेते हैं हमारे।
0: बिल्कुल, और सबसे पहले मुझे मेल दिख गया राममोहन गुप्ता जी का। क्या लिखा है पढ़ूं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: ध्यान से सुनना।
1: हाँ हाँ,
0: लिखते हैं कि तरुश्री और अंजू जी खूब चहचहा रही हैं।
1: क्या बात,
0: स्वयं है अच्छी, सभी हो ऐसे ही चाह रही हैं। बात है ये अच्छी और सीधी सच्ची भी, तभी संग सभी संग खुशियों का मंत्र बांट रही हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सीख से शुरू हुआ मॉर्निंग मंत्रा, मैं स्वयं को हल्का महसूस करूं, कुछ पल में मुद्दा आज का सारे समाज का आएगा, जिस पर श्रोता रखेंगे विचार मन का।
1: क्या बात है,
0: इतनी खूबसूरत बात आपने कह दी राममोहन गुप्ता अमर जी। लखीमपुर खीरी से आपका मेल आया, तो मैंने भी कुछ अर्ज कर दिया ऐसी बात। हाँ,
1: पर जानते
0: हैं मुद्दा है क्या ये, बहुत से लोग बहुत कुछ टाल देते हैं, ठीक है। मुद्दा है क्या आज का, वो ये कि बहुत से लोग बहुत कुछ टाल देते हैं। श्रोताओं के आए हैं ढेर सारे मेल, आइए तरुषी उन पर भी नजर डाल लेते हैं।
1: वाह वाह वाह, चलिए चलिए बिल्कुल आज शुरुआत करें।
0: बिल्कुल,
1: नजर डालना तो शुरू कर दिया है, कई सारे मेल्स आ चुके हैं। और अगर हम मेल्स की बात करें तो सबसे पहला मेल हम नवीन मिश्रा जी का शामिल करते हैं। लिखते हैं, नुकसान तो होता है लेकिन जीवन में सब चलता है, भागम भाग की जिंदगी भी किसी काम की, सुकून और आराम भी जरूरी है। तो भाई टाल भी जरूरी है।
0: अच्छा,
1: टालम टाल भी जरूरी है।
0: लेकिन इस टालम टाल में कई बार बहुत भारी नुकसान झेलने पड़ जाते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो हमने आज का मुद्दा अपने श्रोताओं को यही दिया है कि जो टालने की आदत होती है उसके चक्कर में कई बार बहुत बड़े नुकसान हमें झेलने पड़ जाते हैं। आप क्या कहते हैं, क्या आपको के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? अपने एक्सपीरियंसेस हमें शेयर कर सकते हैं, या टालने की आदत होनी ही नहीं चाहिए? आपके अंदर है या नहीं, कुछ तो बताइए हमें, सबके अंदर होगी वैसे। अच्छा, नवीन मिश्रा जी ने का मेल आपने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें। मोनू जी क्या लिख रहे हैं, अंजू बहन जी आपका आप आज आना था, रात में जागने का एक बहाना था क्योंकि गाने खूबसूरत और जानकारी श्रोताओं तक लाना था।
1: वाह,
0: मतलब सब शेरों शायरी करने लग गए। बहुत ही अच्छी बातें आपने लिखी हैं। आगे लिखते हैं, दूसरों के अधीन होना दुख है, स्वाधीन होना आत्मनिर्भर निर्भर होना सुख है। बहुत अच्छी बात है।
1: क्या बात है। और अगला मेल शामिल करते हैं कृष्ण कुमार जी का, मुद्दे पर लिखते हैं, सुप्रभात लखनऊ। मैंने बहुत दिन बाद ऐसा मेल पढ़ा, सुप्रभात लखनऊ, प्रातः काल से अत्यंत सुंदर प्रस्तुति। ओहो, बिल्कुल एकदम हिंदी। किसी भी कार्य में वरीयता के आधार पर कार्य को टालते हैं, परंतु यदि कोई बीमार है या किसी प्रकार की आवश्यकता है तो पहले वही कार्य करना है, समय के साथ सोचा जा सकता है। ये हमें गोमती नगर से कृष्ण कुमार जी मेल कर रहे हैं, गोमती नगर लखनऊ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेल का, बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़कर।
0: और जानते हैं मनोज कुमार राज जी ने भी अपने प्रोग्राम आपके प्रोग्राम्स की तारीफ की, सुबह से जुड़े थे। नवीन मिश्रा जी ने आपने जो गाने सुनाए थे उसकी तारीफ की। राजेश वर्मा जी भी सुन रहे हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से। और रॉयल अमित यादव जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है। ये श्रेया यदवंशी है गंगागंज रोड भानमऊ विलेज नकटुआ बाराबंकी से। और प्रोग्राम की ही धमाकेदार सॉन्ग के साथ शुरुआत हो गई है, बहुत दिन बाद अच्छा लगा। और ये शायरी प्रोग्राम में स्टार्ट में बोलती हूँ मैम, यही मुझे प्रोग्राम सुनने की वजह और मजा दोनों दे जाती है। थैंक यू सो मच। और कहती हैं कि आपको भुला पाना इतना आसान नहीं है मैम। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने लिखी है, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार हम दोनों की तरफ से आपको, थैंक यू श्रेया।
1: और आगे बढ़ते हैं, और ये किसकी तरफ से मेल आया, इन्होंने हिस्टोरिया करके नाम है, लेकिन आई गेस नाम इन्होंने नहीं लिखा,
0: ये ओम है, ओम।
1: अच्छा, ओम है, ओके। तो इनका मेल शामिल कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि अब तक अगर काम को नहीं टालता तो माइकल एंजेलो की तरह लाजवाब पेंटिंग करता, विधेवन की तरह लाजवाब संगीत की रचना करता, और शेक्सपियर की तरह कोई कविता लिखता। टालने की वजह से ही तो इंसान इतने नुकसान है, क्या बताएं।

0: देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे ना, तो अब लेकिन अभी देर नहीं हुई है, आप अभी भी शुरू कर सकते हैं अगर अपनी आदत को सुधार लें और हर काम को तुरंत त्वरित निस्तारण करें उसका। जैसे कि आज लोक अदालत है, आज बहुत सारी देखिए इसी से, देखिए कैसे बातों से बात
1: निकलती है,
0: कितने बड़े कलाकार हैं हम लोग, अपने लिए शाबाशी। आज देखिए त्वरित निस्तारण करने के लिए बहुत सारे मसलों का लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं वहाँ जाने वाले होंगे, आपको शुभकामनाएं और बहुत मुस्तैदी के साथ शासन प्रशासन और काले कोर्ट में जो आपके वकील बंधु हैं वो आपको न्याय दिलाने के लिए लगे रहते हैं, तो न्याय व्यवस्था पर भरोसा कीजिए और लोक अदालत में जरूर जाइए और आगे बढ़ते मेल पे।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: ये सुशील कुमार जी ने गुड मॉर्निंग भेजा था, सुशील कुमार मोंडनवाल ककरहवा बाजार लुम्बिनी रोड सिद्धार्थ नगर से हमें सुन रहे हैं, क्या बात है। और मुद्दे पर तो इन्होंने कुछ नहीं कहा है। नेक्स्ट मेल किसका है?
1: राम मोहन गुप्ता जी ने ही फिर से एक मेल भेजी है अपनी
0: मुद्दे पर।
1: हाँ, मुद्दे पर भेजी है, तो लिखते हैं, टाल मटोल करने की आदत करती बड़ा नुकसान, खातर जिसके अपना बहुत कुछ खो देता इंसान, हो जाने वाले काम हो पाते नहीं, टलते ही जाते, अंतिम समय में पूरा करने में कष्ट उठाने पड़ जाते, यही नहीं कई बार काम पूरा होने से रह जाता और तब होती खीज परेशानी अफसोस भी होता। काल करे सो आज के बजाय, आज करे सो कल की आदत हमेशा होती दुखदाई, देती अवांछित फल, इसलिए अच्छा सदा ही समय पर करना काम, अनावश्यक भाग दौड़ तनाव से बच जाता इंसान।
0: क्या बात है, बहुत सही बात कही है। जो अनावश्यक भागदौड़ लास्ट मोमेंट पे होती है ना, और जो स्ट्रेस होता है, जो बीपी हाई होता है, वो बहुत बड़ा नुकसान देता है हमें। तो बहुत अच्छी पंक्तियां आपने पूरे मुद्दे को का सार भेजा अपनी पंक्तियों के जरिए, थैंक यू सो मच। और सुनील कुमार जी लिखते हैं, सुनील प्रांजल जी विकास नगर लखनऊ से गुड मॉर्निंग भेजा है इन्होंने, कहते हैं कि टालने की आदत अच्छी नहीं है, ये बात बदल डालिए, करना है आपको जो काम अभी कीजिए, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की योजना टालता रहा रावण, मुसीबत पर याद आई योजना, मुसीबत को मत दावत दीजिए। बहुत सही और सटीक बात आपने भी लिखकर भेजी है, व्यवहारिक बात है,
1: बिल्कुल सही कहा। और अब चलिए म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और अभी बहुत सारी मेल्स बाकी हैं तो वो भी शामिल करेंगे, मगर थोड़ा सा तो टाल दें
0: नहीं, लेकिन हम पूरा करके जाएंगे समय सीमा के अंदर।

0: वैसे टाइम तो है नहीं, तो क्या क्या किया जाए इतने टाइम में क्योंकि गुड मॉर्निंग लखनऊ के पहले घंटे को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है ना, 8:57 और ये लीजिए 58 होने वाले।
1: हाँ तो बस बिना देर किए बस एक और प्यारा सा गाना हम सुना देते हैं अपने श्रोताओं को और उसके बाद फिर लौटते हैं न्यूज ब्रेक के उस पार।
0: बिल्कुल, स्टे ट्यून्ड 200.7 FM रेनबो, जारी रहेगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।

नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ये खबर आज सभी अखबारों में हेडलाइन बनी है। अमर उजाला ने लिखा है, शुभेंदु अधिकारी बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे, ताजपोशी आज। समाचार पत्र ने तमिलनाडु पर सरकार गठन में अनिश्चितता की खबर को भी प्रमुखता से छापते हुए लिखा है, विजय फिर राज्यपाल से मिले, आज भी शपथ लेने पर संशय। हिंदुस्तान लिखता है, शुभेंदु आज संभालेंगे बंगाल की सत्ता, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज समारोह, मोदी और योगी भी शामिल होंगे। दैनिक जागरण ने खबर का शीर्षक दिया है, बंगाल में शुभेंदु भाजपा के पहले अधिकारी। नेपाल ने निजी भारतीय वाहनों के सीमा पार आने जाने को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है, इस खबर ने भी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर जगह बनाई है। अमर उजाला ने लिखा है, साल में 30 बार ही नेपाल में भारतीय वाहनों को एंट्री, निजी वाहनों के लिए व्यवस्था लागू, मालवाहक वाहनों को छूट। आरओ एआरओ भर्तियों पर कोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने की खबर भी आज प्रमुखता से छपी है। हिंदुस्तान ने लिखा, आरओ एआरओ 2023 की भर्तियां पर अंतिम रोक, 2023 की परीक्षा में आरक्षण का विवाद, अग्रिम नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की फौरी रोक। नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, आरओ एआरओ भर्ती में नई ज्वाइनिंग पर अंतिम रोक, आरक्षण विवाद पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 12 को। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लंबे वक्त से गैर हाजिर 5 डॉक्टरों को किया बर्खास्त, कई पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू, इस खबर ने भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर जगह बनाई है। अमृत विचार ने लिखा, डिप्टी सीएम पाठक का सख्त एक्शन, 5 डॉक्टर बर्खास्त। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव से जुड़ी खबरें भी आज सुर्खियों में हैं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, यूएस ने ध्वस्त किए ईरान के टैंकर, सीज फायर के बीच हॉर्मुज में दोनों देशों के बीच फिर तनाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, हॉर्मुज से जहाजों का निकालने के लिए कई विविधतीय भुगतान नहीं करेगा भारत। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को खारिज किया, ये खबर भी आज प्रमुखता से छपी है। स्वतंत्र भारत ने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से झटका, 10% टैरिफ आदेश अदालत में खारिज। इसके साथ बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा, तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NACC द्वारा जनहित में जारी।
4: सात रंग का इंद्रधनुष है,
5: सात सुरों की सरगम है,
6: सात जन्म है सात समंदर,
4: सात हमारा हरदम है,
6: जिंदगी के सतरंगी रंग
5: FM रेनबो के संग।
7: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
8: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
9: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
10: गुड मॉर्निंग,
11: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे अभी कई सारे लोगों की सुबह हुई होगी, 9 बजे हैं अभी खाली।
10: 9:04 हो रहे हैं
11: वैसे,
10: और 38:40 हो गए, देख लीजिए।
11: हाँ,
10: टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है।
11: 9 ही तो बजे हैं, 12 नहीं बजे अभी।
10: ये 9 की कब 12 हो जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा।
11: शनिवार है आज, शनिवार, भूलिए मत।
10: फिर भी एक एक सेकंड अपनी वैल्यू रखता है, पता है कि नहीं पता।
11: आज तो हम लोग वैसे भी टालने की बात कर रहे हैं,
10: तो इसीलिए तो बता समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि टाइम का महत्व समझना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए जब आप ये करना सीख जाएंगे ना, तो ये जो टालने वाली आदत है ना आपकी, वो दूर हो जाएगी।
11: बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे तो देखा जाए कि अगर हम टाले ना कभी कोई चीज, अपने समय से काम सब कर ले, तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी।
10: बिल्कुल। अब देखिए,

0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे वक्त ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, कब करें कब करें. भैया दिन के 24 घंटे होते हैं, वही 24 घंटे उन्हें भी मिलते हैं जो जिंदगी के उस मकाम पर हैं, उस पड़ाव पर है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उन बुलंदियों को वो हासिल कर चुके हैं. आप बड़े बड़े नाम देख लीजिए, उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है. वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके आदर्श होंगे, तो वो भी उनके हाथ में भी वही 24 घंटे हैं, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं.
1: बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक होती तभी तो हम कामयाब होने से कहीं ना कहीं बच जाते हैं
0: और
1: सब दूर हो जाते हैं, कामयाबी
0: रह जाते हैं.
1: Yes.
0: और सबसे बड़ी चूक क्या है, यही टालने की आदत. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम टाल देते हैं, लगता है कि हाँ ये चैप्टर, ये जो चीज है आज न्यूज़पेपर में है, ये आर्टिकल, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना चाहिए, चलो रख देते हैं बाद में पढ़ लेंगे, तो बस उसके बाद फिर बाद में वो न्यूज़पेपर रद्दी में नजर आता है, हम रह जाते हैं. कई बार ऐसा होता है.
1: सच में देखा जाए तो हमें ये टालने वाली आदत, कहते हैं ना जो करना है वो कर डालो, बस सोचो मत, फटाफट.
0: बिल्कुल, और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए. जो एक तीव्र गति से चेतक दौड़ा था और उस पर बढ़कर चढ़कर महाराणा प्रताप ने फतेह किया था पूरी दुनिया को, और उनकी वीरता, उनकी महान शक्ति हमें आज ये याद दिलाती कि बस उसी तीव्रता के साथ आपको जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए. धीरे धीरे जो आलस में पड़े रहते हैं ना, बिस्तर में अभी पड़े पड़े हमें सुन रहे हैं, सोच रहे आज तो बस सेकेंड सैटरडे, आज छुट्टी का दिन है, चलो हो जाएंगे बाकी सारे काम, धीरे धीरे हो जाएंगे. तो बस वही है कि अगर आपने तेजी नहीं दिखाई तो काम बढ़ते जाएंगे और आप कहीं ना कहीं पिछड़ते जाएंगे.
1: ये तो सही कहा. तो
0: हम सही कहते हैं हमेशा.
1: ओह माय गॉड, वैसे तो बात सही है, सही कहती. चलिए ये आपके लिए.

0: विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. जिनका आज है जन्मदिन उन्हें हम सब की एफएम रेनबो की पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, प्यार, बधाइयां. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए.
1: क्या बात है, एक ही बार में सारी बातें कह डालिया.
0: और जिनकी है आज वेडिंग एनिवर्सरी, उनको हम देते हैं डटे वीरता शौर्य के लिए, उन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा. और एक और बहुत बड़ा नाम है, उनकी भी जयंती हम आज मना रहे हैं. महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु. उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी. हम बात कर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी की. और 1866 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था. नमन करते हैं हम उन्हें और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं आज उनकी जयंती पर. उनका योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा.
1: जी हाँ. और अब अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज़ की, तो आज विजय देवरकोंडा का बर्थडे है. और ये कौन है, तो अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दूँ कि साउथ में अर्जुन रेड्डी फिल्म आई थी, करोड़ों दिल के धड़कन बन गए थे विजय. और अभी हाल ही में कई सारी फिल्मों को, मतलब हिंदी में लोगों ने उनको देखा. और साथ ही साथ जाते ना, सब जब साउथ इंडियन फिल्म्स का क्रेज बढ़ गया है ना अपने इधर नॉर्थ इंडियंस में, तो वैसे तो जितने भी हीरोज हैं वो सभी दिल की धड़कन बने हुए, लेकिन विजय का अलग ही स्थान है अपना. और साथ ही साथ अभी जो हाल ही में इनकी शादी हुई है, तो तब से वो और ही लाइमलाइट में आ गए. तो उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आज उनका बर्थडे है. और साथ ही साई पल्लवी, बड़ी खूबसूरत सादगी और बेहतरीन डांस से सबको दीवाना बनाने वाली साई पल्लवी भी आज अपना जन्मदिन मना रही है. तो इन दोनों ही सेलिब्रिटीज को हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं.
0: तो बहुत बहुत मुबारकबाद सबको जिनका आज है जन्मदिन. और आज की जो तारीख है 9 मई, किसी भी मायने में आपके लिए खास है, तो हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस.
1: जी हाँ, बिल्कुल. तो अब अगर विजय की बात करें, तो उनकी एक लेटेस्ट फिल्म आई थी, मुझे उनका ये गाना बहुत पसंद है, तो चलिए एंजॉय कर लेते हैं. हाँ.

0: 9:18 मिनट का वक्त है और मैं और तरुश्री आज हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, समझ में नहीं आ रहा कि हमारे लिसनर्स एंजॉय कर रहे होंगे कि नहीं, बताओ।
1: उसके सबूत मैं आपको दिखाती हूँ, जरा एक बार मेल्स पे नजर डालिए।
0: अच्छा, हम अपनी तरफ देख लेते हैं। हाँ, अरे देखिए, अरे क्या
1: नदी आ गई, नदी
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहा है
0: बिल्कुल। लेकिन चलिए, इस ओवरफ्लो के साथ साथ हमारी सड़कों का क्या हाल है, लखनऊ का यातायात कैसा है, हम उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर हमारे श्रोताओं के मेल्स भी देख लेंगे। वैसे बहुत मजा आता है जब हम विकास सिंह जी से बात करते हैं, जो इनका खूबसूरत अंदाज है, एनर्जेटिक अंदाज हमें भी ऊर्जा से भर देता है, क्यों तरुषी?
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है हम आपका हमारे प्रोग्राम में हमेशा की तरह।
2: वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज जैसा कि सैटरडे है और सैटरडे को बहुत कम ट्रैफिक रहता है, तो उसी अनुसार से आज लखनऊ शहर के सभी मार्गों पर यातायात सामान्य गति से गतिमान है। कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है, कोई विशेष डायवर्जन आज नहीं है। जैसा कि पूर्व की भांति अवगत कराया जा चुका है मैम कि हमारा जो समता मूलक से बैराज वाला मार्ग है, यहाँ पर जो हमारा बैराज का गेट का है मरम्मत कार्य चल रहा है, इस दौरान जो है हमारा बैराज पुल यातायात के लिए प्रतिबंधित है। तो यहाँ से लगभग प्रतिदिन 40,000 वाहनों का आवागमन होता है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है कि इन्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारा जो रास्ता है वो 10-90 हो करके बैकुंठ धाम होते हुए जा सकते हैं तथा ग्रीन कॉरिडोर होते हुए आप अपने गंतव्य को जा सकते हैं। तो आप ग्रीन कॉरिडोर का प्रयोग करें तथा 10-90 PNT भालू अड्डा का प्रयोग करें, इस मार्ग के प्रयोग से बचे ताकि आपको असुविधा का सामना न करना पड़े। शाम को BVD बैडमिंटन अकेडमी में लगभग जो है 6-7 बजे का एक कार्यक्रम है, तो शाम के समय में अगर 6-7 बैडमिंटन अकेडमी जो हमारा लोहिया लोहिया उद्यान के पास में है, अम्बेडकर उद्यान से हमारा डिगडिगा वाला ये यातायात के लिए प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान आप अगर इधर अम्बेडकर उद्यान से डिगडिगा चौराहे की तरफ आवागमन करना चाह रहे थे तो आप कृपया पहले से ही हुसड़िया से डायवर्जन करें अथवा आप जो है वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें ताकि आपको असुविधा का सामना न करना।
0: शाम को 6 बजे से है ये?
2: हाँ, 6 बजे से 7 बजे के बीच में ये रहेगा प्रतिबंध।
0: जी सर, ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो गई है, बड़े मंगल का भंडारा हम लोग चख चुके हैं, पहले बड़े मंगल का, आज शनिवार है। बहुत सारे लोग मंगलवार को तो करते हैं, शनिवार को भी भंडारों का आयोजन होता है, तो अगर ऐसे कोई विशेष आयोजन किए जा रहे हैं तो उनसे आप अपनी तरफ से यातायात विभाग की ओर से क्या आग्रह करेंगे, क्या हिदायतें देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, हमारा जो आयोजक है उनसे अनुरोध है कि कृपया आप जो है पहले से ही वहाँ पर ऐसे ट्रैफिक मार्शल लगाएं अपने साथ में कि जो लोग जो है रोड को किसी प्रकार से प्रतिबंधित ना करें, कहीं से बाधा ना उत्पन्न हो। साथ ही जो भी वहाँ पर भंडारे में जाते हैं लोग, उनसे भी अनुरोध है कि आप अगर आप जा रहे हैं तो अपने वाहन को कृपया ऐसी जगह पार करें जहाँ से यातायात में अवरोध उत्पन्न ना हो। और ये जितने भी

0: प्रमुख भंडारे और वो है वहां पर हम ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस की ड्यूटी लगाकर सुगम यातायात का संचालन करा रहे हैं। बस यही अनुरोध है कि यदि आप हमारा सहयोग प्रदान करेंगे तो हम आपको बेहतर यातायात उपलब्ध कराने में सफल रहेंगे, और हम प्रतिबद्ध हैं कि अगर आपकी सहायता से हम बेहतर आपको लखनऊ शहर में ट्रैफिक उपलब्ध कराएंगे। मेरा
1: बिल्कुल
0: यही अनुरोध है मैम सभी से कि आप यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और इंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने एनर्जेटिक अंदाज में आपने बहुत कुछ समझा दिया हमारे श्रोताओं को, और उम्मीद है वो समझेंगे और ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। थैंक यू सो मच सर।
0: जी आभार।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह जी, और अब आपकी बारी है।
2: जी हमारी बारी नहीं, हमारे गाने की बारी है।
1: अच्छा, गाने की बारी है, वाह वाह। वैसे गाने बड़े अच्छे बज रहे हैं आज।
2: बिल्कुल, हमारे चॉइस ही ऐसी है ना।

0: इतना प्यार से बुला रहे हैं, आ जाओ भाई,
1: आजा आजा आजा
0: मतलब आजा आजा पे वैसे बहुत सारे गाने हैं ना, आजा से राजा याद आ रहा है,
1: राजा से कुछ और याद आ गया,
0: राजा से ये याद आ रहा है कि आज हमारे साथ कार्यक्रम सुगंध माटी की में राजा अवस्थी जी होंगे फिर से, हमारे राजा भैया,
1: राजा भैया,
0: बड़ा मजा आता है उनके साथ प्रोग्राम करने में, होता है
1: हमें तो सुनने में मजा आता है
0: बहुत सारे श्रोताओं को सुनने में मजा आता है, तो इंतजार करिएगा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्यक्रम सुगंध माटी की आप तक पहुंचेगा, और जो हर शनिवार को अवधि का स्पेशल तड़का लगाने के लिए आता है, अवधि भाषा बहुत प्यारी बोली है और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि अवधि को प्रमोट करें, क्योंकि हमारी अवधि हमारी शामे अवध, हमारी अवध की शान है, शाने अवध है, और इसीलिए ये प्रोग्राम हर शनिवार को आप तक पहुंचता है, लेकिन बुधवार को जो प्रोग्राम पहुंचता है उसमें अवधि के साथ साथ और भी बहुत सारे रंग आपको भारत की विभिन्न संस्कृतियों के रंग देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, है ना?
1: बिल्कुल, और एक और प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो हर रविवार को उसका इंतजार रहता है हमारे श्रोताओं को, 12 बजे प्रसारित होता है हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम, और इस रविवार को यानी 10 मई

0: आप इस विषय पे आप सुन सकते हैं ये प्रोग्राम। स्पेश जो विषय रहेगा वो है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, और इसके इसके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद होंगे वो होंगे डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान। ये रहेंगे हमारे साथ और बताएंगे आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बारे में, साथ ही साथ आपके जो सवाल होंगे उसका जवाब भी देंगे।
1: बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं इस प्रोग्राम में 12 बजे से 1 के बीच में। हमारे फ़ोन नंबर 0522-2238-845 या फिर 0522-2238-852 के जरिए, और ईमेल आईडी तो हमारी हमेशा ओपन रहती है। आप मेल पर भी अपने प्रश्न अपने सवाल पूछ सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। फिलहाल इसी मेल आईडी का सदुपयोग करके हमारे बड़े सारे श्रोता बिना वक्त गंवाए बिना टाल मटोल किए आ गए हैं अपने विचारों के साथ आज के मुद्दे पर।
0: जी, तो अभी हम लोग जो मेल शामिल कर रहे हैं वो पहला अब जो मेल मैं शामिल करने जा रही हूँ पिंकी बारी जी का है, और लिखती हैं कि आप दोनों की वॉइस बड़ी अच्छी लगती है क्या बात है, और लिखती हैं आज के मुद्दे पर कि मेरे अंदर भी काम को टालने की आदत है, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जैसे जो टाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है तो वो टाल देते हैं, पर जो लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, काम कर लेना चाहिए, फिर उस काम को मैं कर लेती हूँ क्या बात है।
1: ये बात सही, और इस बात से ये याद आया कि जब काम बहुत सारे हो जाते हैं ना तरुश्री, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज तय कर लेनी चाहिए कि ज्यादा जरूरी क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहले उसको निपटाइए और उसके बाद मतलब कैटेगरीज आप डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरीज वाइज आप कामों को विभाजित करके उनको करने की कोशिश कीजिए, और ऐसे में क्या होगा ना कि काम हो भी जाएंगे और कोई महत्वपूर्ण काम आपका नहीं छूटेगा। अच्छा, घनश्याम सिंह जी लिखते हैं कि एडवोकेट घनश्याम सिंह जी नारायण नगर फैजाबाद रोड लखनऊ से, इन्होंने हमें गुड मॉर्निंग भेजा। साथ ही कहते हैं किसी काम को टालना बहुत ही खराब आदत होती है, एक साहब के इस आदत के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उन्हें 12 बजे अदालत पहुंचना था लेकिन उन्हें आराम करने की आदत थी, 10:30 बजे आराम करने के लिए लेट गए और इतनी ज्यादा गहरी नींद में सो गए कि 2 बजे जगे तब तक जज साहब ने फैसला उनके खिलाफ दे दिया था। देखिए इतने बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, वो अपना मुकदमा हार गए थे। तो ये जो बात आती है ना कि आलस और ये जो टाल मटोल की आदत है, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक होती है।
0: बिल्कुल, और अगला मेल आकाश कुमार जी का है। आंचल वर्मा जी हमें हरदोई से मेल कर रही हैं और लिखती हैं कि आज का मुद्दा जो है उससे आपने जैसे अपने दोस्त के यहाँ का किस्सा बताया, ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। अब इसके आगे क्या कहूँ, ये बहुत बुरी आदत है लेकिन किसी भी काम को कल पर टालने की आदत कितने भी कोशिश करूँ अगर सुधरती ही नहीं, क्या बताया, आदत से मजबूर है।
1: तो इसीलिए तो हम लोग ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं कि आपको थोड़ा सा झकझोर सके, हिला गए, मतलब झकझोर सके कि अगर ऐसी कमी है तो सुधर जाओ।
0: है ना? मैं एक बात बोलूं मैं आपको कि हमारे अंदर, हम लोग के अंदर सब आदत, सब अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, खाना बनाना आता है, काम करना आता है, सारी चीजें आती है, मगर एक चीज बहुत आता है,
1: क्या?
0: आलस बहुत आता है और इसी आलस की वजह से ये काम टालने की आदत आ जाती है।
1: हम सोचते हैं कि वो थोड़ा कम आए है ना, बाकी सब कुछ ज्यादा है, वो कम आए लेकिन वो भी, वो क्या करे, वो भी बहुत ज्यादा आने की कोशिश किए रहता है। फिलहाल हम बिना वक्त गवाए एक गाना बढ़िया से सुना देते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। बहुत सारे और ईमेल्स हैं और भी बहुत कुछ है, बाकी पूरा आधा घंटा है हमारे पास अभी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। स्टे ट्यून्ड।

0: 9:40 का वक्त हो गया है। बहुत ही खास प्यारा सा दिन है, आज सैटरडे है, 9 मई है, लेकिन कल भी बहुत प्यारा दिन है।
1: जी कल है संडे, और संडे के साथ जो मई का जो संडे पड़ता है,
0: दूसरा संडे
1: वो बड़े खास दिन के लिए, याद दोबारा करने के लिए, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए माना जाता है। वैसे तो ये दिन हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं वो तो हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए जब हम माँ की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि कोई भी दिन, कोई भी खास मौका जरूरी नहीं है कि हम उसकी जरूरत ही नहीं है कि हम उसे इसका इंतजार करें और माँ को सेलिब्रेट करें, मातृत्व को सेलिब्रेट करें। लेकिन फिर भी जब दिन मनाने की बात आती है तो बड़े सारे लोगों को याद दिलाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में कि उनको ये याद दिलाना पड़ता है कि उनकी एक माँ है।
1: हाँ नहीं, उनको माँ याद जरूर रहती है, बस एक तरह से एक बहाना मिलता है उस चीज को एक्सप्रेस करने का, है ना।
0: लेकिन कहते हैं ना तरु कि चेहरे से जन्नत, आंखों से खुशबू होना, माँ का मतलब है दुनिया में एक बड़ा ही अनोखा जादू होना।
1: क्या बात है, आपने तो बिल्कुल क्या कहता ना, सारी बातें ही एक ही कुछ चंद शब्दों में कह डाली।
0: और माँ के पास पता नहीं कैसा जादू होता है ना, सब कुछ कर भी लेती हैं। हम लोग यहाँ टालने की बात कर रहे हैं, माँ तो किसी चीज को नहीं टालती। अपने बच्चे के लिए जब कोई काम करना होता है उसे, तो वो प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे उस काम को अंजाम देती है और बहुत सारी चीजें कर देती है। तो उस समय में दुर्गा माँ याद आती है, बहुत सारे हाथ होते हैं।
1: और ये चीज मैं सच बताऊं तो अगर हम पर भी आता है तो कहते ना कि हम लोग भी यही चीजें सीख कर बड़े हुए, देख कर बड़े हुए, तो वो चीज ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर वो ग्रास्प कर लेते हैं, वो चीज आपके अंदर कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो वैसे माँ शब्द सिर्फ एक माँ के लिए जो कहते हैं ना, मातृत्व की भावना, वो सिर्फ मैं मेरे हिसाब से सिर्फ एक औरत के लिए नहीं होती। माँ शब्द वो हर इंसान के लिए है जिसके अंदर ये भावना है।
0: बिल्कुल,
1: तो आप अगर एक पुरुष भी हैं और आपके अंदर ये मातृत्व की भावना है तो ये दिन आपके लिए भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जब हम बात कर रहे हैं मदर्स डे की, तो भाई कल ये दिन हम मनाएंगे ही, लेकिन आज से माहौल बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। बड़ी सारी माएँ इस समय में सुन रही होंगी जो मल्टीटास्किंग कर रही होंगी, बच्चे का टिफिन, कुछ मतलब स्कूल तो है ही है, और हस्बैंड का ऑफिस, उनका भी टिफिन, उनकी तैयारी, और नहाना धोना, पूजा पाठ करना, नाश्ता करना, घर की साफ सफाई करना, बहुत कुछ कर डाला होगा आपने और बहुत कुछ करना होगा। लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालिए।

0: मुस्कुराइए, ये दुनिया आपके लिए आपसे है, तो बस आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही असली मायने में होगा हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, और अपना ख्याल रखिए। हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस हम दोनों की ओर से।
1: बिल्कुल।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: लो न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है
2: भाई। अब मैच का क्या होगा?
1: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
3: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं।
4: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
3: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NACC द्वारा जनहित में जारी।
7: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow।
8: धड़कन लखनऊ की।
9: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
10: जी हाँ दोस्तों, आपकी खूबसूरत दिन की शुरुआत तो हमने कर ही दी है, और इस खूबसूरत शुरुआत को खूबसूरत ही बने रहने के लिए कि जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहने वाला है, और उसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद दानिश जी, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक। तो सर बताइए, स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में।
11: गुड मॉर्निंग सर।
12: जी गुड मॉर्निंग
10: सर, कैसा रहने वाला है आज का मौसम?
12: मौसम की बात करें तो मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा, थोड़ी गर्मी का एहसास होगा, बाकी शाम तक होते होते मौसम खुशनुमा हो जाएगा। तो कुल मिला के कहें तो आज कल थोड़ा मौसम खुशनुमा रहेगा, बाकी तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है, और आने वाले अगले 4-5 दिन में तापमान 5 से 6 डिग्री बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने सामान की तरफ पहुंचेगा, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो कोई ऐसा लू का कोई अलर्ट।
10: सर बारिश के क्या आसार है?
12: बारिश का तो अभी 4-5 दिन कुछ ऐसा नहीं है, उसके बाद एक पश्चिम विक्षोभ बन रहा है, तो उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी देखी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल 3-4 दिन साफ।
10: जी जी, तो मेरे ख्याल से मौसम तो बढ़िया रहने वाला है आजकल, तो जितने दिन है उतने दिन आप एंजॉय कर लीजिए दोस्तों।
11: थैंक यू सो मच सर हमें जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: तो श्रोताओं, आप मौसम से आपकी आपको जानकारी तो मिली है, लेकिन तरु अभी शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारी शादियां हैं 15-16 तारीख तक, और लेकिन बैकअप प्लान जरूर रखिए जिनके घरों में शादियां हैं, मैं तो मस्ट कहूंगी, क्योंकि जब चीजें तैयारियां सारी बर्बाद हो रही होती है ना, तो उस पिता से पूछिए जिसकी बेटी का विवाह होता है या बेटे का विवाह होता है।
1: सच में वैसे देखा जाए तो सभी का नुकसान होता है,
0: बहुत नुकसान होता है,
1: और ये जो टालने वाली आदत की आज हम बात कर रहे हैं ना, तो ये आदत जो है ना, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं आप, कि आप अक्सर लोग प्लानिंग करते हैं, कोई भी इवेंट की प्लानिंग करते हैं तो मौसम को नजरअंदाजी कर देते हैं। उनको लगता है कि अरे अप्रैल में है, अप्रैल में तो गर्मी होती है, मई मई में तो गर्मी होती है, लेकिन आप ये मत भूलिए ज्येष्ठ का महीना चल जरूर रहा है, मगर कोई भरोसा नहीं है
0: जी। अब तो बारिश जनवरी में भी होती है, फरवरी में भी होती, कभी भी हो जाती है
1: बारिश, कभी भी हो जाती है। तो अभी कह रहे हैं ना, कभी कभी बीच में ऐसे सूरज निकल जाता है, ऐसा लगता है बीच बीच में उनका स्पेशल अपीयरेंस चल रहा है, और कभी कभी ऐसे बारिशें होती है जैसे लगता है उनका स्पेशल अपीयरेंस चल रहा है।
0: बिल्कुल, तो भाई अगर किसी के घर में कोई शादी ब्याह या उत्सव का माहौल है तो बिल्कुल ना टालिए, कोई भी काम करना है तो उसको बुक कर लीजिए, पहले से सारे अरेंजमेंट्स कर लीजिए, और ऐसे में क्या होता है ना, जो टालने वाली आदत होती है लास्ट मोमेंट पे हमें याद आता है तो फिर बहुत सारी चीजें, कहते हैं ना मूड तो बहुत लोगों का खराब होता है, बाकी जो खराब होता होता है मूड सबसे पहले बड़े सारे लोगों का, और खासतौर पर दूल्हा दुल्हन का खराब होता है।
1: स्पेशल डे है उनका,
0: उनका स्पेशल डे बिल्कुल बर्बाद मत होने दीजिए। इसके लिए सबसे जरूरी है कि टालने की आदत को बदलिए और फटाफट सारी प्लानिंग के साथ काम कर डालिए। स्टे ट्यून्ड रहिए 100.7 FM रेनबो से, क्योंकि हम लोग आपको अपडेटेड रखते हैं, आपको अलर्ट करते रहते हैं बीच बीच में, है ना तरु?
1: बिल्कुल।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
4: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर।
5: जी नमस्कार, 48 मिनट का वक्त हो गया। वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम इस वक्त थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं ना तरु।
6: बिल्कुल, और मेरे ख्याल से फटाफट पहले इतिहास के बारे में जान लेते हो कि आज का क्यों दिन इतिहास के पन्नों में है।
5: भाई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आज के दिन हुई थी, और वो थी ये कि आज के दिन ही 1874 में घोड़ों से खींचे जाने वाली ट्राम कार सर्विस शुरू हुई थी मुंबई में।
6: तो आप सोचिए कि ये जो बॉम्बे उस टाइम पे था, मुंबई जो आज हम जानते हैं बॉम्बे ट्रामवे कंपनी की ओर से कुलावा से पायधोनी और बोरीबंदर से पायधोनी, यानी ये जो उसके बीच की ये शुरुआत हुई थी। और इन ट्रामों को शुरू में 200 घोड़े के बेड़े के साथ 20 ट्रामों से शुरू किया गया था। इन ट्रामों का दौर 1907 में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम के शुरू होने के साथ खत्म हुआ। तो सोचिए वो दौर कैसा रहा होगा जब ये घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं ये शुरुआत हुई थी।
5: बिल्कुल सही में घोड़ा गाड़ी है ना। हाँ। और उसके बाद तो अब तो केवल वो प्लास्टिक वाली बच्चों वाली घोड़ा गाड़ी नजर आती है, लकड़ी वाली भी होती है।
6: काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा।
5: जी तो चलिए, बहुत सारी और बातें हैं हमारे जो श्रोताओं ने लिखकर भेजी उन पर भी नजर डाल लेते हैं।
6: हाँ, क्योंकि रह जाएंगे बहुत सारे मेल्स हैं आज, तो बहुत ही ज्यादा मेल्स हैं।
5: तो रोशनी रावत जी से हमने छोड़ा था और यहीं से फिर से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग भेजा इन्होंने, हम दोनों बिल्कुल अच्छे हैं। ये बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव की रहने वाली हैं और चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही। मुद्दे पर कहती हैं कि जब हम सभी समय पर काम करते हैं तब मन को बहुत शांति मिलती है, ऐसा लगता है जैसे कोई महारत हासिल कर ली हो, कोई बात की चिंता नहीं रहती हो समय पर काम करने से। ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट कही आपने।
6: क्या बात है। मोइनुद्दीन अंसारी जी का मेल शामिल करते हैं, और ये इनकी जो सिस्टर्स हैं उमरा अंसारी और हुस्बा अंसारी हमें श्रीनगर लखीमपुर खीरी से मेल कर रही हैं और लिखती हैं कि जो भी काम करना होता है तुरंत करते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल की टीचर बोलती हैं कि कल करो सो आज करो, तो आज जो कल करना है वो आज ही कर डालो। अच्छी बात है, और जो आज करना है वो अभी कर डालो।
5: जी बिल्कुल, अब कल का खाना आज बना के मत रख लीजिएगा।
6: हाँ, ये तो भाई कल का तो कल ही करना पड़ेगा ना,
5: सारी चीजें नहीं कर सकते आज कल वाली है ना। अच्छा, रोशनी ने ये कहा है कि समय पर काम करने से रात को नींद बहुत सुकून वाली आती है, चेहरे पर खुशी की लहर लहराती है। क्या बात है। तो बस ऐसे ही खुशियां अगर कायम रखनी है तो समय पर काम कीजिए, टालने की आदत को विराम दीजिए।
6: जी
5: क्या बात है, आज बड़े कवि निकल रहे हैं अंदर से ना।
6: आज अंजू जी ने अलग, आज वो प्रेरित हो गई है।
5: राममोहन गुप्ता जी ने प्रेरित कर दिया हमको।
6: हमें लगा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर,
5: वो तो हमेशा प्रेरित करते हैं।
6: आप शुरू सही थी।
5: अच्छा, महेंद्र दीपन जी क्या लिख रहे हैं।
6: ये लिखते हैं कि आज के मुद्दे पर इनका मानना है कि अनुशासन ही जीवन का आधार है, और ये व्यक्तिगत रूप से कभी भी अपने कामों को टालने में विश्वास नहीं रखते। हालांकि गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन मैं अपनी दिनचर्या को इस तरह व्यवस्थित रखता हूँ जिससे कोई भी जरूरी काम छूटता नहीं है। सुबह से शाम तक दिनचर्या की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रहती है। पूरे दिन शाम के 6 से 8 बजे समय ऐसा होता है जहां मुझे लगता है कि समय का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, अन्यथा मेरा बाकी सभी कार्य सटीकता से हो जाता है। भैया सल्यूट है आपको, सल्यूट
5: परफेक्ट है ना। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बस ऐसे ही बने रहिएगा आगे आने वाले जीवन में भी, है ना। और देखिए श्यामू चौहान जी लिख रहे हैं, इनके साथ राजकिरण, सर्वित, मोनिका, प्रतिमा, सावित्री सब

0: परिवार के सदस्य हमें सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग भेजा है इन्होंने, गांव बीर किठाई दरियाबाद मोहब्बतों के शहर बाराबंकी से, है ना, उम्मीदों का शहर हमारे इधर है यानी उन्नाव और मोहब्बतों का शहर उधर है यानी बाराबंकी, तो लखनऊ क्या है फिर बताइए।
1: अरे ये तो इश्क हो गया
0: यहाँ पर सब कुछ है, मोहब्बतें भी हैं, उम्मीदें भी हैं ना,
1: बिल्कुल
0: चाहते भी हैं, बहुत कुछ है। तो चलिए आपको गुड मॉर्निंग भेजा है इन्होंने, मुद्दे पर कहते हैं कि किसी काम को टालने से कंटिन्यूटी ब्रेक लग जाता है, इस वजह से कार्य में बहुत बाधा उत्पन्न होती है, सीखना, संघर्ष, धैर्य, अनुशासन, लगातार प्रयास, यही वो सीढ़ियाँ हैं जो सपनों को हकीकत बनाती हैं, लेकिन जो इंसान हर हाल में चलना नहीं छोड़ता वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँचता है, हर कदम मायने रखता है, बस चलते रहो एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच, आपका मेल हमें बहुत अच्छा लगा।
1: जावेद अख्तर जी ने मेल भेजा है और ये हमें आजमगढ़ से मेल भेज रहे हैं, लिखते हैं मोहब्बत व प्यारे अंदाज में पूरे लखनऊ शहर को गुड मॉर्निंग, क्या बात है,
0: और इनकी नगरी का नाम है रेशमी नगरी, मुबारकपुर।
1: ओहो क्या बात है, क्या बात है। और इसमें उन्होंने लिखा है कि ये मोबाइल ऐप के माध्यम से हमें सुन रहे हैं और लिखते हैं कि कोई भी काम उसे कल पर मत छोड़िए, जो चाहिए जो करना है वो आज ही कर डालिए, इसी में भलाई है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। वकील अहमद जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है, आवाज की तारीफ की है, कहते हैं कि घर में काम हो तो टालना नहीं चाहिए, अच्छा घर में काम हो तो टहलना नहीं चाहिए, ये लिखा टहलना यहाँ पर हाँ आ गया है, ठीक है, अगर कहीं जाना हो तो नहीं करना चाहिए, नहीं ना करें, कोई ज़रूरी काम हो तो कर लें फिर कहीं जाएं। समय इस समय हम खेत देखने आए हैं, वकील अहमद जी हैं, अहमद मंसूरी, कटका हथूरी ब्लॉक हरगांव जिला सीतापुर से। ये बात तो सच है, बड़े सारे लोग बस यूं ही टहलते रहते हैं,
1: है ना, और वही टहलते रहते हैं। मनोज विश्वकर्मा जी का मेल आया है और ये हमसे सुबह से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कार्यक्रमों की तारीफ करी है, बड़ा अच्छा लगा आपके मेल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शकील अहमद जी ने भी मेल किया है और लिख रहे हैं कि सदाबहार गीत, और ये भी हमसे मेरे ख्याल से सुबह से जुड़े हुए हैं और मुद्दे पर कहते हैं काम को टालने से हमारा केवल नुकसान ही होगा, इसलिए सभी काम समय पर ही कर लेना चाहिए, अथवा जो 11th आर काम करने से स्ट्रेस, हैरेसमेंट और टेंशन ही क्रिएट होते हैं। बात तो सही कही,
0: बिल्कुल सही कही। और रॉयल अमित यादव ने लिखा है कि टाल मटोल की आदत ने कितने काम बिगाड़े हैं, वक्त तो बहती नदी है, जो टालते हैं वो किनारे हैं, मुश्किलें टालने से नहीं करने से हल होती हैं, बहाने तो बस हार की शुरुआत की पल पल होती है।
1: ओहो मोनू सेठ जी ने भी बस सब शायराना हो रहे हैं आज कल पर छोड़ देना एक आलस है,
0: शायराना आगे क्या लिखते हैं
1: कल पर छोड़ देना ये एक आलस है, और जो आलस से आ गया वो पिछड़ गया, जो आलस को टाल गया वो बाजी मार गया, वरना जब चिड़िया खेत तो बाद में पछताए का होता,
0: चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पीछे पाछे पछताए होता है ना। कृष्णकांत सिंह जी भी लिख रहे हैं कि आज के मुद्दे से ये कहना चाहते हैं कि टाल मटोल कभी कभी बहुत भारी पड़ता है, अगर कोई जॉब से संबंधित वांट निकलती है और उसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो अंत में कहीं सर्वर की समस्या या किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, समय से बिजली पानी और अन्य बिल पे नहीं किए आपने तो आपको जो चार्जेस लगते हैं एक्स्ट्रा वो देने पड़ जाते हैं, तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और ऐसे में जब ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट निकल जाती, जिस दिन लास्ट डेट होती है ना उसी दिन सब चीजें याद आती, आफत आती,
1: सर्वर डाउन हो जाता है और आपका काम पिछड़ जाता है।
0: बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कृष्णकांत जी कैसरगंज बहराइच से, थैंक यू सो मच।
1: और अब मुनेश कुमार जी का मेल शामिल कर लेते हैं, उन्होंने भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तब सब सब सब शायराना हो रहे हैं,
0: जल्दी जल्दी
1: हाँ, टालना है बुरे काम टालो, अच्छे कामों को जल्दी निपटा लो, कोई अगर करे आपकी दावत बाकी तो शराब पुड़िया पुड़िया मसाला टालो बाकी जो कुछ मिले दावत में उसे आप जल्दी से खा लो लड़ाई झगड़ा गुस्सा टालो, प्रेम पूर्वक व्यवहार अपना लो, ये तो बहुत अच्छी बात कही, खुले बाजारों से फल फ्रूट टालो, शुद्ध ताजे फल अपना लो, और हम अपनी बात करें तो मांसाहार को टाल दिया, हरी साग सब्जी को अपना लिया, बुरे काम टाल दिया, अच्छे काम अपना लिया, झूठ को टाल दिया, सच को अपना लिया, बाकी म्यूजिक टाल दिया, एफएम रेनबो अपना लिया, क्या बात है?
0: बड़ी आसान भाषा में अपनी बड़ी मजेदार बातें कह डाली हैं। और सिमरन स्वरांजलि ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है, प्रोग्राम की तारीफ की है, थैंक यू सो मच डियर। आगे लिखते हैं टालने की आदत तो अक्सर हम लोगों में होती है और मैं भी पहले बहुत टालती थी कुछ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे मुझे बहुत अफसोस हुआ जिसका, और मुझे लगा कि बहुत बड़ी गलती की, इसलिए जितनी जल्दी हो सके काम को कर लेना चाहिए, वरना कभी कभी वक्त निकल जाने के बाद बस अफसोस रह जाता है, चाहे कोई काम हो, कोई रिश्ता हो, किसी से मिलना हो, किसी से बात करनी हो, समय रहते कर लीजिए। और इन्होंने एक घटना बताई कि बचपन की एक दोस्त थी, काफी अच्छी फ्रेंड थी, कुछ समय से वो बीमार थी, मैं रोज सोचती थी कि उसको कॉल करूंगी, भूल जाती थी, टाल देती थी, हाल ही में पता चला कि वो अब नहीं रही। तो कहते हैं ना कि जो लोग कर लेंगे तो उनसे यही कहूंगी कि अभी सुधर जाइए, टालना बंद कर दीजिए, करना शुरू कीजिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, अफसोस को मत दावत दीजिए, टालना काम बंद कीजिए। और वारिस अली जी भी मेल कर रहे हैं, उनका मुद्दे पर कहना है कि किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, काम जमा होने पर मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन, एंग्जायटी, अनिद्रा की समस्या होती है, दूसरी बात मल्टीटास्किंग वर्क से गलतियां हो जाती हैं, कार्य की गुणवत्ता

0: तभी कम हो जाती है। इसके अलावा जब आप आपके पास पेंडिंग वर्क रहते हैं तो रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते हैं और संबंध भी खराब हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। गुलफशा सिद्दीकी मार्केट में है, बस इतना लिखा है, गुड मॉर्निंग भेजा है, सुन नहीं पा रही है, कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। और पिंकी ने भी कुछ लाइन्स लिखकर भेज दी थी, छोटे छोटे काम जो टाले बन गए आगे चलकर जंजाल बड़े, आलस ने मन को ऐसा घेरा मंजिल ने भी रास्ता मोड़ा। वाह बहुत अच्छी बातें आपने लिखी, लंबी बातें, लेकिन अब वक्त नहीं कह रहा है कि अब हम और कुछ शामिल करें। भाई तरु को टाटा बाय बाय तो कहने का मेरा मन नहीं हो रहा।
0: बिल्कुल आज मजा आ रही है ना,
1: आज मजा आ रही बनकर यहीं बैठे रहे, लेकिन हमारे राजा भैया भी आ चुके हैं स्टूडियो में, तो उनसे भी आपको रूबरू करवाना है। प्रोग्राम सुगंध माटी की लेके आवे का है ना, तो इनका तो भेजे परी।
0: हाँ तो हमका दियो आज की तई विदा।
1: हाँ तो जा तू खसका ही ऐसे है।
0: लेकिन ऐसा गया है।
1: हाँ ऐसा हंसत मुस्कुरात रहा सब जने।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सभी को भी आज के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आज का दिन आपका अच्छा रहे। और फिलहाल अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत आज के लिए, फिर मिलते हैं किसी और दिन।
1: Stay tuned.
0: 100.7 FM Rainbow.
1: Bye, Taru.
0: Bye.

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर श्री योगी का एक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतियोगिता देश भर से आए पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाड़ियों के बीच समन्वय, सौहार्द और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगी। प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में कल एक स्वगणना सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्य सरकार के कई मंत्रियों और सांसदों ने अपनी स्वगणना पूरी की। इनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, कपिल देव अग्रवाल और डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल शामिल हैं। स्वगणना 2027 के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सरकार की ओर से प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए सहायता केंद्र और हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए।

रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज और कल किया जा रहा है। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने वाले व्यक्तियों और नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: अरे भैया राम राम प्रणाम, कैसे हैं आप सब? देखा भैया आज शनिवार शनिचर और घड़ी में बज गया है 10:04। तो और हम लेके आए गए ही, हम यानी अंजू शुक्ला लेके आए गए ही 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम सुगंध माटी की, जेकर आप सब कर रहा थे बहुत है इंतजार। तो भैया आप सबसे जैसे वादा करे रहे तो कि हम एक बहुत दिल के राजा मनई का लेके आओगे, एकदम वैसे भी राजा मनई हैं और दिलों के राजा हैं, यानी अंदरों से राजा हैं, उनके नामों राजा हैं। ऐसे झंझटी भैया मनई कह ही देते है ना, लेकिन आप हैं राजा भैया। बहुत बहुत स्वागत राजा भैया, राम राम।
1: हाँ राम राम दीदी, और हमारे FM रेनबो का सुनने वाले जितने श्रोता भाई बहनी मातारी चाचा चाची उन सबका हमारा प्रणाम और राम राम।
0: राम राम भैया, राजा भैया क्या बात है, आज तो बढ़िया चटक कुर्ता उर्ता पहन के आया है, मौसम अब ऐसे बढ़िया होता है बाहर।
1: हाँ बढ़िया तो है।
0: तो का आज कौन कौन तैयारी करके आवा हमारे श्रोता पंचन के लिए बतावा तो?
1: अरे श्रोता पंचन के लिए सब तैयारी हम लोग तो बातें फायदे की करी थे।
0: सही बात या सही बात या बहुत बहुत फायदा के बात होते और बहुत सारी बात कही होते हैं, और बात कही में बहुत कुछ सिखावे तैयारियां हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: हाँ वैसे मौसम जो उन्हें कहाता है कि जो उन्हें कुछ ऐसे ऐसे मतलब सुनाए दी गौ नहीं कि अब हमारे जो कहा थी जो श्रोता पंचय यहाँ ना वो मगन हो जाए और अपने सबके जो उन्हें ये जो सुगंध माटी कार्यक्रम सुना थे ना वह सुनत सुनत मगन हो के बहुत ढेर सारा काम कई डाले हैं।
1: हाँ बिल्कुल करें।
0: तो सबका गौ नहीं सुनाई और बत कही सुनाई हमारे राजा भैया।
1: हाँ बिल्कुल
0: है। तो चला हम सब जौन है आज का कार्यक्रम सुगंध माटी की जौन रहा थे FM रेनबो पर हर शनिवार का, और ई कार्यक्रम में आप सुना थे अवधि गौ नहीं। अब भैया देखा हमारे अवधि के बात अगर की जाए ना तो फिल्म होए चाहे नाटक होए चाहे साहित्य होए हिंदी साहित्य होए हर जगह अवधि के बोलबाला रहा है ना भैया।
1: हाँ बिल्कुल

0: बड़ी जानदार
1: हाँ
0: और बड़ी शानदार भाषा है।
1: हाँ बहुत शानदार
0: हाँ।
1: भाषा है। तो चला आज के जो उन कार्यक्रम के शुरुआत है ओका बहुत पुराने एक ठीक बहुत मजेदार फिल्मी गाने से कही देता ही और ये गानों गौने ही सुनत जा और वापस आवा। तो राजा भैया के साथ अंजू शुक्ला सुगंध वाटी कार्यक्रम में हुए ढेर सारी बात कही और मजा मजा।

0: यही यही दर जो है ना सब गड़बड़ाए जाते मामला है पान खाओ लेकिन ये जो कुर्तो अब छींट पड़ जाते तो जो घरे मलकी नहीं है ना उनके मूड हो जाते खराब है कैसे छूटे बतावा है।
1: सही बात है बहनी। पान तो देखो मुख शुद्धि के लिए बहुत बढ़िया है और आयुर्वेद में कई बीमारी में प्रयोगी का होता
0: है। सही बात राजा भैया।
1: रोग मुक्त करत है
0: और क्या। और अपने सांस्कृतिक सनातन परंपरा में भी जो ना पान का बहुत महत्व होता है। और लखनऊ में नवाबों के शहर में रहा था ही पान तो जो ना है जो उन शान से खावा जाता रहा था पूछा ना।
1: लेकिन अब लोग पान का जहर बना दिए।
0: सही कहे हो राजा।
1: दुनिया भर के किवाम और तमाकू जाने का पान का सही जो उपयोग है वो है भुलाए दिन लोग।
0: सही कहे राजा भैया।
1: नुकसान होता है तब गंदगी फैला चारों तरफ।
0: ये जो गंदगी फैलावे में जो है पान पान मसाला गुटका ये सब तो बहुत है मतलब का

0: ही खात है तो खात है, अपने शरीर के तो अंदर गंदगी भरत है, नुकसान करता है, और शहर और आसपास के माहौल सड़क वड़क कुल गंदा कर देते हैं।
1: बिल्कुल, अरे गुटका तो बहनी जहर है ही है, लेकिन पान तो अमृत है, मगर उसका उपयोग ऐसे ढंग से लोग करे लगे हैं।

0: ही खात है तो खात है, अपने शरीर के तो अंदर गंदगी भरत है, नुकसान करता है, और शहर और आसपास के माहौल सड़क वड़क कुल गंदा कर देते हैं।
1: बिल्कुल, अरे गुटका तो बहनी जहर है ही है, लेकिन पान तो अमृत है, मगर उसका उपयोग ऐसे ढंग से लोग करे लगे हैं कि वहाँ जो है नुकसानदेह हुई हुआ है।
0: तो राजा भैया तनी
1: हर शादी ब्याह मौके पर और पूजा पाठ में पान का
0: बहुत महत्व होते
1: हैं।
0: हाँ, बहुत महत्व होते हैं। भगवान का भोग लगा, पान सुपारी लौंग इलायची, देखा बीरा जो है भगवानों को समर्पित की जात है,
1: जोड़ा इलायची, दुर्गा माता हो, काली माता हो, माता के पूजा में कौनो भगवान की पूजा हो, पान अग्रणी रात।
0: बिल्कुल बिल्कुल रहा थे। और देखा ये सब बात जो है हमारे सबके परंपरा में इतनी सुंदर सुंदर है, और जौन जौन चीज प्रयोग की जात है, ओके जैसे आप बतायो आयुर्वेदिक महत्व है, ओके स्वास्थ्य के दृष्टि से, पर्यावरण के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सब चीजें हैं, बहुत जरूरी जरूरी है, लेकिन मन ही सब भुलाया जाता है।
1: पान में दो इलायची डालो, एक इलायची डालो, लौंग डालो, है और बस उका लपेट के और खा लो, और उमा थूके की कोई जरूरत ही नहीं, सब अंदर।
0: सही कहो, ओकरे बाद फिर देखा हाजमा दुरुस्त है, और सब कुछ दुरुस्त है, और मूड भी दुरुस्त है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। और बगल में जो बैठा हो खुशबू से वो को मन मस्त हो,
0: क्या खुशबू है। और देखा यहाँ जो ना एक बन्ना गीत सुनाए देते ही मालिनी अवस्थी जी की आवाज में, और देखा बन्ना का भी पान खवावे की तैयारी होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: अब भैया 10:16 के वक्त होता है। अंजू शुक्ला और राजा भैया के साथ आप सब पंचे सुनता है कार्यक्रम सुगंध माटी की एफएम रेनबो पर। और राजा भैया आज है शनिचर है और देखा अधिक मास पुरुषोत्तम मास बतायन रहे हमने श्रोता पंचन का, वो चलता है जेठ महीना, मतलब अब की शनिचर और बड़ा मंगल डबल हो गया, दुगुना हो गया।
3: अरे हाँ, यह है तो हम सुने तो हम कहें अरे वाह, तो बड़ा बढ़िया है, अपन खाओ भंडारा।
2: हाँ, और भंडारा की अगर बात होते तो एक तो परंपरा लखनऊ से शुरू है रही।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपन नवाब साहब रहे, उनकी बेगम रहे, वही हम सुना है कि अलीगंज के मंदिर की स्थापना करवाना है और पहल भंडारा वही लगाना है
2: पुराने हनुमान मंदिर।
3: और तब से जो है वह परंपरा चल निकली, एका लोग आज तक निभा रहे हैं और हनुमान जी के नाम से भंडारा खवावत हैं और लोगों के ऊपर हनुमान जी की कृपा भी होत
2: है। बहुत बहुत कृपा होत है। अरे भाई, उन्हें इनके कृपा से तो सब कुछ होत है, उन्हें इनके प्रताप से तो उन्हें मनाई सामर्थ्यवान बना था कि खवाए पावे
3: बिल्कुल
2: सबका,
3: बिल्कुल बिल्कुल। लो देखो तुम मंगल की याद दिवा दी हो, हमको अपन एक झंझट याद आएगा।
2: अरे दैया तो चला सुना है, हम सोचते रहे कि राजा भैया बहुत राजा बना बैठा, कौनो झंझट वाली बात ये नहीं बताया।
3: अरे बहनी, हम कौनो झंझट किया नहीं चाहिए थे, हम का बताई।
2: हाँ, बस हो जात,
3: गलत बात हमका बर्दाश्त नहीं होते, बस हो जात।
2: तो चला कौन झंझट भाई?
3: अरे भवा यो भाई, बड़े मंगल मा सब लोग हनुमान जी के दर्शन करे जात, भीड़ दुगनी चौगुनी हो जाती। अब हमारे पड़ोसी है एक मंगल भैया, वे जो है वहाँ गए दर्शन करे हनुमान जी के और मेहरिया का हाथ पकड़ ली ने आगे आगे चले लाग, और बच्चा जो उनका रहा है वो दो चार आदमी उनके पीछे आगे आगे, लड़का पिछड़ गवा। अच्छा। अब वो हवल दिल दाए बाएं देखे लाग,
2: ये बड़का मंगल वाले दिन के बाद।
3: अरे ये है मंगल जो पहल मंगल भवा।
2: अच्छा।
3: अब उनका लड़का दहने बाएं होएगा और थोड़ी देर बाद आगे चले के बाद जब वो देखिन के लड़का कहूं है नहीं तो दहने भाई वही ढूंढे लाग, मार हवल दिल भागे भागे घूमे, ऐसे पूछे वैसे पूछे, अरे भैया इतना बड़ा लड़का रहा, नीला नीला बुशर्ट पहने रहा है, देखियो तो नहीं है। अब को कहे भाई हम नहीं देखा, को कहे हम नहीं देखा, मार हवल दिल। तब तक वो दूर खड़ा रो रहा है, तो हम गए, हम कहे बच्चा काहे रो रहे हो, कहे अम्मा बप्पा हमार हेरा गए।
2: अच्छा, अब उन्हें नहीं है ना, अम्मा बप्पा।
3: हाँ, हम कहना चाहो बच्चा तुम्हारे साथ आओ, प्रसाद की दुकान पर लेके खड़े भन, तब तक देखा मारी आंखी लाल चले आए दौरत हवल दिल, तो दुई कंटा बोई के मार दिन, अब हमारे आगे लाग गए।
2: अरे लड़कियां का मार दे।
3: हाँ, साझा नहीं चल सकत हो। अरे हम कहें रुका, ये लड़का गलती है कि तुम्हारी गलती है, मेहरिया पकड़े हाथ आगे उलरा चले गए हैं, और यो का करे, चार आदमी बीच में घुस गए और यो दाएं बाएं देखा लाग, नहीं दिखाई पड़े तो रोई है ही है।
2: सही बात बतावा, नान भरे लड़की लड़किया आपन जिम्मेदारी नहीं समझा था और लड़कियन के डांटा था,
3: ओके मार दी।
2: बताओ
3: मार पीटअप तो वैसे अच्छी बात नहीं,
2: सही बात
3: हिंसा करना बहुत
2: बेचारा वैसे रोवा था और सहन का हुए।
3: हम कहें खबरदार जो अब हाथ उठायो और आयो भगवान के दर्शन करे, लड़का पीट रहे हुए
2: तो
3: फिर कहीं ना रे दादा अब कहा बताई, गुस्सा आ गए। हम कहें गुस्सा कंट्रोल में
2: रखा,
3: हमारे गुस्सा आ जाये तो तुम्हार पैजामा ढील हो जाए।
2: बहुत सही।
3: हाँ,
2: झंझट और बढ़
3: जाए।
2: नहीं तो राजा भैया बहुत सही कहे हो।
3: हाँ,
2: समझ गया रहे, नहीं समझ गया रहे,
3: समझे किसी आए गए, जाओ भगवान के दर्शन करे, भगवान दर्शन करो, उनसे जो मन्नत मांगे खो तो मांगो है।
2: सही बात।
3: तो खैर लेके चले गए, मेहरियो कहे इसकी उनकी मेहरारू जो रहा है काला दादा इनकी आदतें खराब है, हाथ बड़ी जल्दी इनका उठा थे। हम कहें अब की जब हम हाथ तूर इनके। हाँ, अगर लड़कियों के ऊपर उठाए तो
2: सही कहे हो। और राजा भैया देखा यह तरह से जो है महतारी बाप का लड़किया बच्चा बड़े भाग्य से मिला थे संतान।
3: हाँ,
2: उनका अच्छा संस्कार दो, अच्छी परवरिश करो, उनका ध्यान रखो, कल कतो मेला वेला देखे जाओ तो इतना हो लड़किया जो है आप पूरी सब्जी लाइन में लगा, लड़किया हाथ हथवा छोड़ा के वह कहती आइसक्रीम के लाइन में लग जाए, ओकरे बाद फिर हेरत फिरत रहा है, तो ध्यान रखत जाए लड़किया मन
3: चलता आसमान एक हो जाते।
2: हाँ। तो चला राजा भैया गवनी एक बढ़िया सुनाए देते ही अपने श्रोता पंचन का, और यही तरह बढ़िया बढ़िया बात आपसे जोत रहे, कार्यक्रम चल रहे सुगंध माटी।
3: सुनाओ बहनी, सुनाओ। हाँ, हाँ।

0: उनका उनका प्रसन्न रखिए का राजा भैया, तब तो बढ़िया बढ़िया नीक नीक खाना उना खाए मिले घरे में, बतावक ना बताओ। सही कहे ना,
1: एकदम सही।
0: तो जौन जौन डिमांड करत जाती जौन है ओका पूरा करत जा कर, वही से जौन है कल जब मनसेधु हरे यहाँ जौन पति परमेश्वर है वो सब अपने मेहरारू के अपनी पत्नी का ध्यान तो रखबे करत है। लेकिन जब अभी महतारी बाप के बात करे है तो और लड़कियां बच्चा है उन्हों सब अपनी महतारी के बहुत ध्यान रखे करे,
1: बहुत बहुत कहा था महतारी के आंचल में जो छाया है वही में अमरत तो रहत है।
0: बिल्कुल सही कहे हो राजा भैया, और कहा था कि महतारी से बढ़ के कहू केहू नहीं होता,
1: कोई नहीं, और कोनो बात होए कोई से न कह पाओ, बाप से लड़का इतनी बात नहीं कह पाओ महतारी से कह दो, चाहे जितनी पीड़ा व्यथा हो महतारी के पैरन पर लेट जाओ आंचल डाल दे, मनो आधा दर्द खत्म हो जाए।
0: बिल्कुल सही कहे हो राजा भैया, और दर्द में हो अरे तनी ठोकर लाग गए गिर पड़े कुछ हो गए अरे मोर माई अरे मोरी मैया हो, तो पहले मैया याद आवा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बहनी, महतारी के आंचल में सरग है।
0: हाँ सही कहे हो राजा भैया,
1: और सुख दुनिया में कौनी चीज मिलाई कहूँ नहीं,
0: बिल्कुल नहीं। और आपने भारत में तो महतारी एक नहीं होते, वैसे बहुत जने कहा थे महतारी एक का है, हाय भैया माँ एक ही होते हैं सबके, लेकिन हमरे यहाँ तो एक का महतारी नहीं होते, जाना था गांव देश में देख लिया बड़की माई छुटकी माई वह पुरवा वाली अम्मा उसरा पुरवा वाली अम्मा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जितनी बुजुर्ग होती है वही सब माई तुल्य होती है,
0: और क्या,
1: और वहाँ सम्मान दिया जाता है,
0: चाची मौसी नानी सब महतारी महतारी समान होते हैं,
1: और अगर कोई उनका सम्मान नहीं देते तो बहुत बड़ी नालायकी करते।
0: अब देखा कल मदर्स डे मनावा जाए, जाना था नहीं, मई माह के जो है दूसरे रविवार का मदर्स डे मनावा जाते, मातृ दिवस है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मनावा जाते, बहुते मनई जो है ऐस महतारी के ना फोनो फोन करिए ना जो है उनके हाल चाल पूछिए, लेकिन कल बड़का बड़का स्टेटस स्टोरी लगाई है देखियो, बतावा।
1: लेकिन भाई बहने हमें ये बताई कि महतारी का ख्याल और महतारी की सेवा महतारी से प्यार चेतना करे मने वो कम है। एक बात और बताई, महतारी के ऋण से कोनो संतान उऋण नहीं हो सकत है, चाहे सर के बल खड़ा हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल कहो, सही कहो राजा भैया। अबे देखा जबलपुर में जो घटना सामने आए रही, हृदय विदारक घटना, सबके जीव हिल गए है, अपने नान भरे एक लड़किया के बचावे के लिए महतारी का सीना से लगाए जीव दई दहेस, लेकिन अपनी लड़किया के नहीं
1: छोड़े।
0: तो बस यही माँ के भावना होते, तो एक समझे चाहिए सबका अपने यह जीवन में अगर समझ ले कि महतारी के नन में हाँ असली पुण्य असली स्वर्ग, तो जो उन्हें समझ ले आपके जीवन हो गए धन्य।
1: तो ये तो बहनी हम बताई कि महतारी बाप जो हैं वो जीवित देव हैं,
0: सही
1: जीवित भगवान हैं, हमारे घर में हैं, हमारे पास हैं, उनकी सेवा से न चूको भैया, वही से स्वर्ग है।
0: वही बिल्कुल सही कहे हो, और परम पिता परमेश्वर के अनुकंपा बनी रहा है सबके ऊपर, और देखा कौनों भी मांग मनोती मांगे खोए तो भैया पहले महतारी याद आवती है, पहले कहा थे कि देखा माँ हे भगवान हमारी पूरा कह दे ई पूजा हो, और हमरे सबके यहाँ तो संकटा मैया तुरंता मैया चट्ट मैया सानी मैया दुर्गा मैया काली मैया और
1: अरे बहुत मैया है हम कहते, यही लिए इतने अवतार लेके
0: धरती पे आए हैं कि कौनो
1: महतारी का महत्व बना रहा है,
0: बना रहा है, और कौनो लड़कियां बच्चा के दुख कलेश कुछ न रहा,
1: कुछ न रहा है। अब घर की महतारी का तुम सेवा न करो,
0: मंदिर में जाके
1: चढ़ाओ घंटा हलाओ, कुछ नहीं मिले वाला है तुमका, वो महतारी गुस्सा जी है तुमसे।
0: बिल्कुल सही कहे हो राजा भैया, बिल्कुल बहुत सही कहे हो, और यही वजह से जो है हम सब इस कार्यक्रम में आपका याद दिलावत है, अरे चला फोन घुमावा मम्मा अम्मा का अपने हाल चाल पूछा, और अगर घरे में है तो एक कप चाय बना के उनके नाश्ता पानी कराए दे, तनी उनके सेवा के दे।
1: अच्छा बहनी, हाँ हम कहे दुनिया भरे के सब काम निपटावे के बाद 10-5 मिनट महतारी बाप के पास
0: बैठ जाओ,
1: उनके दुख सुख समझ लियो,
0: बैठ जाओ बस वही बहुत
1: है उनके लिए,
0: उनके
1: परम सुख है,
0: बहुत
1: है ना। अब वो पीठिन पर हाथ फेरी है,
0: बिल्कुल
1: आशीष दिया है,
0: बिल्कुल आशीष दी है, और देखा एक बहुत सुंदर के गवनई अवधि सुनावत है आप सबका, यू में बहुत आशीर्वाद है और बहुत सबके लिए मनौती है, और ई गौनई है अवसानी मैया के,
1: सुनाओ सुनाओ।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अब भैया सुगंध मार्टी की सुनता है आप सब। अंजू शुक्ला और राजा भैया आपके साथ है। राजा भैया दूर दूर रैया वाला गाना सुन।

0: लाए रहे हैं, वही रह रही है, अवसानी वही है।
1: हर महतारी मानत है,
0: हाँ।
1: है और जब की मानता पूरी हो जाते तो खवावत है।
0: हाँ, और हमरे सब खिया तो जो ना कौनो शुभ कारज हो है, है तो पहले जो ना दुर्दरिया माता के अवसानी माता के सुहागन खवाई जाते
1: है, कबनो खवाई जाते है।
0: हाँ।
1: और बड़े भाव से है, विधि विधान से या दुर्दुरैया खवाई जाते
0: हैं। अच्छा, बहुत जने जो ना ए तरह करत हैं, अवसानी मैया करत हैं, कहूँ संकटा मैया, कहूँ चट्ट मैया, मतलब महतारी से जो ना है बढ़ते कौनो
1: कौनो स्वरूप हो, महतारी का स्वरूप।
0: हाँ, और हुमा जो ना मान मनौती मांग के जब पूरा हो जाए तो खवावा
1: किया जाता है। क्षेत्र में अलग अलग मान्यता है तो करत है। और एक बात बहनी हम बतावा चाहित रहे कि आजकल मनई मनई से तो प्यार करत नहीं, न फरता है वह के प्रति मनमा अपने जहरू गोला कर।
0: सही गए,
1: लेकिन पशु प्रेमी बहुत हो गए। हम यो नहीं कहे थे कि पशु प्रेम करब गलत बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब उनके कुछ तरीका भी हैं, तौर तरीका हैं। पशु पालो तो उनकी व्यवस्था भी सही बनाओ।
0: सही कहे भाई।
1: हाँ,
0: सही कहे भाई।
1: अब कुछ है दिन पहले की बात है कि धनेश्वर भैया है,
0: अच्छा
1: वो का कहा थे उनका डॉग लवर, हाँ डॉग लवर,
0: डॉग लवर
1: कुकुर प्रेमी वही है उनके यहाँ। 8-10 कुत्ता,
0: अच्छा
1: छोटे बड़े सब
0: खावत पियावत है, हाँ सबका,
1: हाँ परे रहा थे और कहूँ जाखत है तो उठाई उलावत। तो अब उनके यहाँ कहा भवा के एक दिन बरसतिया का बिटे बाजार रही रहे,
0: अच्छा
1: और वह हाथ में पकड़े रहा है कुछ खाए पिए वाला सामान, सब दौड़ा लेन भगवान चढ़े बैठो के ऊपर और गिरा दी मारे ऐसी वैसी नोच डाली चिल्लाए। खैर हम उधर से दूर रहन दौड़ गए, मारा एक आधे का डंडा भगायन चिल्लाए के, तब तक अपनों आगे हम कहें यार देखो यो प्रेम तो तुम्हारा ठीक है,
0: तुम
1: सेवा करो इनकी, लेकिन उनकी व्यवस्था भी कायदे से बनाओ।
0: सही सही क्यों, देख देखे रहो भैया कि कहूँ लड़किया बच्चा का केहू रहा चलत मने का दौड़ावे ना काटे ना।
1: और तुम छपरा तरे बैठ देख रहे हो, हुआ से हो रो रो कह रहे हो चलो चलो, तो कुछ मनी है मनाई तो आजकल मानत नहीं तो ना कहे।
0: बताओ अभी टीवा का कितना चोट लग गया, कितना
1: चार जगह का होगा, भूखे कितने इंजेक्शन लगी है।
0: सही कहो,
1: तो वह तो भुगत गई के महतारी बाप भुगत गए, और तुम्हारा जो पशु प्रेम है धरा रहेगा। तो आइस करो भाई, पशुपालन करो, प्रेम करो पशुवन से, लेकिन ऐसा ध्यान रखो कोनो को नुकसान न पहुंचाओ।
0: सही कह रहे हैं राजा भैया।
1: हाँ
0: जीव जंतु पशु प्रेम बहुत जरूरी है, और मनई इंसान न ध्यान दही है तो इनका का हो भाई।
1: हाँ।
0: तो हर पशु प्राणी के पक्षी का आप सब ध्यान रखो, उनके खाए पिए के देखभाल करो, उनके शरण के देखभाल करो, है उनका छाव कही दियो कहूँ बिछावे के उगर के, लेकिन भैया कंट्रोल करो, है और सरकारी व्यवस्था बहुत है तगड़ी राजा भैया, बताई ना सुई हुई लागत है। आप कंप्लेंट कही के लावा अपने जो है कॉलोनी में जितना है आपके जानवर उनका सबका सुई लगवाए दियो, है
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो रोग न हो।
0: हाँ,
1: पर
0: हाँ सही बात है, और बाकी जो ना है व्यवस्था एह तरह रखियो कि जो ना अगर कहूँ कौन कटहा कुकुर वगैरह आए तो एक टी बोर्ड आवत है ना कुत्तों से सावधान, एह तरह से लिख दियो तो कि ताकि जो राह चलत मने अनजान मने आवत है वो थोड़ा सावधानी से रहा है। भाई जरूरी है वही उन्हों का घर है, उन्हों सब रहें वहाँ, लेकिन जे जिम्मेदारी लेता है जे खवावत भी आवत है वो का यो जिम्मेदारी ले चाहिए कि जो ना केहू का काटे उठे
1: काटे ना कोई तकलीफ न हो। और देखो के हम सुना है कि कुकुर काटे के सुई पेटे में लागत है।
0: अरे न पूछा राजा भैया, बहुत तकलीफ दे होते
1: हैं।
0: हाँ कितनी तकलीफ दे बात होते, लेकिन भैया देखा राजा भैया बहुत नीक बात बतायो, तो ओकरे बात तो फिर वो ध्यान दे हुई है।
1: हाँ हाँ ध्यान दे है, ध्यान दे का है, नहीं दबाव डाला जाए और आप जो है वही बनवाइन है।
0: हाँ बन बनवाए देंगे उनका, मतलब गेट वेट के अंदर रखा करें कि निकल न पावे हैं, क्यों दौड़ावे न पावे।
1: हाँ हम जब कहें तो चार छह गांव वाले और टाड़ होंगे।
0: हाँ,
1: तो फिर उनके ऊपर दबाव बना।
0: हाँ,
1: अब उनकी व्यवस्था कहीं है।
0: चला ये तो बहुत बढ़िया बात बताए हो राजा भैया। चला यही बात एक अपने श्रोता पंजर का एक बढ़िया गौने ही सुनाई दिया, देखा इतना ईमेल आवा है, इतना बढ़िया बढ़िया बात लिख के सब भेजे हैं। चला उन्होंने को तो पढ़े टाइम चाहिए, लेकिन पहले हम तो गाना सुनाई है, और ये गाना बड़ा मजेदार है, सुना ध्यान से। अरे मनोरंजन खातिर सुना बताई बस ऐसे ना
1: सुनाई हो।
0: हाँ सुनाओ थे, देखा
1: अच्छा
0: बहुत झलकुआ गाना है।

0: ए राजा भैया, दोनों ही चटकदार रही ना।
1: हाँ, बहुत बहुत बहुत।
0: तो चलो हमने श्रोता पंचर का मजा आया जाते, यही ले बजाए।
1: हमारा तो पाँव थिर के लाग
0: पैर चल रहा राजा भैया। अच्छा राजा भैया, यह तरह जो ना अपन लोग गीत होते ऐसे बाजा बाजा लेके बैठ जात रहे चौपाल में, मने जो ना क्यों गावत रहा, क्यों बजावत रहा, क्यों नाचत रहा, मजा आ जात रहा।
1: अरे का बात, खाली पखौरा नहीं फरकते, अंदर से हो लूटत।
0: सही कहे हो,
1: गीत में वह कशिश है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से हो लूटत है, मनवा ऐसे झूम जात
1: है कि बस लहर लहर लहराए लागे।
0: अरे वाह वाह वाह। और यह कहती जाऊँ ना, हमारे जो श्रोता पंचय है ना, जब ये कार्यक्रम आवत है ना, तो उन्हों सबके मनवा डोले लागत है। हाँ देखा कि इतना सारा ईमेल आए गए। हाँ जल्दी जल्दी देखा, आपको बताई रमेश कुमार भैया हमका मेल करे, हाँ कोलकाता में सुनता हाँ।
1: अरे
0: हाँ कोलकाता में सुनता हाँ, देखा तहसील कैंपियरगंज जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहे वाला है। और जौना सुगंध माटी के प्रोग्राम बहुत सुंदर लागेला, कहा थे रमेश कुमार ग्राम जगन्नाथपुर पोस्ट लोहर पुरवा तहसील कैंपियरगंज गोरखपुर से है। कमाए उमाए गए हुई कोलकाता,
1: बिल्कुल भाई, नौकरी चाकरी इधर सुधर सुधर।
0: हाँ और देखा विकास आपका चरण स्पर्श लिख के भेजे यहाँ,
1: खुश रहो।
0: हाँ
1: बहुत बहुत आभार और बड़ा धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम सुनत हो।
0: हाँ और एक उन्नाव से सुनता है, सफीपुर जिला उन्नाव से, और कार्यक्रम की तारीफ इनका गाना ही बहुत नीक लागती है।
1: सुने रहो, हाँ। सुने रहो।
0: झग्गर राम साहू भैया भरे सुनता है बहुत जने, बबलू साहू, जामुन देवी, पूजा प्रेम, दुष्यंत प्रांजल समीक्षा, सब जने सुनता है। और कहाँ से ये सभी मेल करे हैं ये तो नहीं लिखे हैं भैया, हमका दिखाई नहीं पड़ता है इनके हुआ कि कहाँ से मेल हमें करे हैं, लेकिन पिंकी बारी बहनी बगलिए से अमीनाबाद से करती हैं पड़ोस में आए, और कहा थी कि जमुना है आज हम बोलबे ना, आज हम कविता बोली आप दोनों जन के
1: अच्छा।
0: लिए हाँ, और कविता लिख के भेज दिए हैं, और कहा थी यहाँ कि देखा अंजू मैम पूरा पढ़िएगा, बहुत दिल से भेजी हूँ। अच्छा। तो देखा पढ़ी थे आए? राजा भैया ध्यान से सुने, कहा थी यहाँ कि राजा भैया के ठाठ निराले, चटकीदार कुर्ता पैजामा वाले, सुगंध माटी का शो सजावत है, अपनी बोली से मन हर्षावत है, 60 पार के उम्र भले होई। अब ए राजा भैया ये तो पोल खोलती हैं।
1: पोल खोले तो काम
0: है, 60 पार की उम्र होई बतावती हैं सबका। अरे राजा भैया हमारे अबे अबे कितना बड़ा है ये हैं भाई। देखा कहा थी आगे कि 60 पार की उम्र भले होई, जो सो हुआ का जवानन सो होई, हंसी मजाक और मीठी बोली सुनत खिल उठत सबके टोली, माटी के खुशबू संग लई आए, अपन गांव के रंग जमाए,

0: राजा भैया जियत रहे हजारन साल, रहुआ बिना सूना लागे हर चौपाल। और अंजू शुक्ला मैडम के बोली मिठास सुनते खिल उठे सबके एहसास, सुगंध माटी का मंच संभारे अपने अंदाज से दिल में उतरे, और चेहरा पर मुस्कान निराली बातन में अपनापन वाली, गांव गांव के रंग जमावे माटी का खुशबू दूर तक पहुंचावे, राजा भैया संग जमे जोड़ी प्यारी सन, जैसे चंदा संग चमके फुलवारी, अंजू मैडम जियत रहे खुशवाल और रहुआ से रोशन बा हर चौपाल। वाह भैनी वाह,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: पिंकी, यही है बहुत बढ़िया लिखे लागू,
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत
0: सब लेखिका कवियत्री बनी है सब जने।
1: हाँ बिल्कुल, पूरा वर्णन कर दी।
0: अच्छा फोटो वोटो देख लेते सब स्टोरी पे है कि राजा भैया कौन कुर्ता पहन के आए हैं।
1: वैसे तो समझी नहीं।
0: हाँ अच्छा, मोनी दून भैया कुडरी खैराबाद सीतापुर में सुनता है, देखा फोटो वोटो भेज दे है, सेल्फी लई के रेडियो चलता है बाजा और लड़कियों बैठा है और प्रोग्राम धमाकेदार चलता है कहा था, और थोड़ी उन्हें आवाज बढ़ाए रहे हैं रेडियो के फुल वॉल्यूम में सुनता है, और मुनेश कुमार राज भैया भी सुनता है, और राजा भैया कैसे नहाए बरसात और साथ भाई कि नहीं भाई बतावा।
1: हाँ तो चार दिन पहले तो भई रहा है भाई, 30-31 पहली तारीख तक। अब तो खैर मौसम
0: ठीक है,
1: हाँ बराबर है।
0: हाँ, हाँ,
1: आगे कोनो संभावना तो मौसम विभाग वाले दे नहीं रहे।
0: हाँ,
1: दो चार दिन
0: चला रही। हाँ ये बात तो सही है, वैसे मौसम ठीक ठाक रहा है, गर्मी और भी ना पड़े तो भले है, लेकिन अब का बताई पड़े तो है ही है भाई।
1: गर्मी है तो गर्मी तो पड़बे
0: करे, और जम के पड़े है, हचक के पड़े,
1: ज्यादा पड़ी,
0: बहुत ज्यादा पड़ी,
1: अपन सब व्यवस्था रखे लोग।
0: हाँ हाँ तो चला। अच्छा मुनेश कुमार राज भैया जो ना पूछे है ना वो बात सही कहे, हाँ उनके वह नाम है, एक गुप्त बातें पूछे तो हम गुप्त ढंग से इनका जवाब दे दे। अच्छा जावेद अख्तर भैया आजमगढ़ से सुनता है और बहुत मोबाइल ऐप पे सुनता है, बहुत तारीफ करके इन्हों भेजे हैं, वारिस अली खान भैया, इंद्रपाल मिश्रा भैया कहाता है बहुत उपयोगी बात बतावत है आप हैं, और बोली जो उन्हें बहुत मीठी लागत यह है, अब ये ग्राम अमृता महोली सीतापुर से सुनता है, और वारिस अली खान भैया जो उन्हें आपका प्रणाम भेजे हैं कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनता है, संजय नगर ऐशबाग से जो उन्हें, और कहा था पहले सादा पान खाता था बाद में छोड़ दिया, आपने सही बताया पान के कई फायदे हैं लेकिन सादा पान खाने से और भैया गंदगी ना फैलाने से,
1: बिल्कुल
0: भैया
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ और देखा बहुत मन ही हमका मेल करे हैं, आशा पांडे बहनी अमरावती महाराष्ट्र से सुनती हैं, और इनका जो है बहुत सुहाना लगता है प्रोग्राम हमेशा की तरह, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के लिए सबे का बधाई देती हैं।
1: धन्यवाद बहुत आभार।
0: और बहुत जने हमका मेल करे हैं लेकिन भैया बखत हो गया कि बढ़िया के गौना ही सुनाए दे, एक सुना और बाद वापस आवा तो बहुत नीक नीक बत कही और बताई है अब राजा भैया है तो सुनते रहे आप सब सुगंध माटी की।

0: क्या बात है भैया, सुनिया अंगना में पाजेब गाड़ी, हर सुइया में झुलनी कर धनिया, और जब न हसुली सब मिली, ऐसे हवा करी है सास के पतोहिया रानी, तबे तो मिली।
1: बिल्कुल सही है? बात है। अरे ना ही मिले मगर बुजुर्गन की सेवा करनी चाहिए, सयानन का धर्म है,
0: बहुत धर्म है। और भैया जमीन जायदाद और गहना गूठी के लालच में नाही, महतारी बाप सास ससुर के सेवा करत जा, निस्वार्थ सेवा करत जा ना। और ए भैया राजा भैया देखा 10:53 है, और आपका यही तरह नहीं झंझटी भैया कहते भाई, जो बतावत रहे हमका झंझट मोल लेके आवा है, बताए दिया तनी हमने श्रोता पंचन का जल्दी जल्दी से।
1: बहनी झंझट नहीं है, एक आम बात है और लोग जी का ध्यान नहीं रखा था। हम देखे थे कि सहारन में भी बहुत से लोग, गांवन के लोग बहुत से हेलमेट नहीं लगावत मोटरसाइकिल चलावत भैया,
0: हैं हां बरवा जो लहरावत की चलत है खराब हो जाए।
1: अब बिरजू दादा का लड़कवा करीब हां अच्छा खासा पट्टा हैं, और यहाँ लखनऊ में बाजार करे आवा रहा है, हमारे ख्याल करूँ नखास उखास के पास कुछ और कौन चीज से टकरान गाड़ी हाली,
0: अरे राम,
1: और डिवाइडर से टकरा के गिर गवा और उसके दिमाग में चोट लग गए।
0: अरे
1: लोग उठाए उठू को लेके ट्रामा सेंटर पहुंचे, कोई दो चार टेस्ट लिखी, जब तक पर्चा उर्चा बना तब तक पता लगा कि डॉक्टर कहेस की
0: जवाब दे दे
1: कुछ नहीं बचा। अब बिरजू दादा का बुढ़ापा में वो कष्ट मिला है,
0: अरे राम,
1: और जरा सी लापरवाही के हेलमेट नहीं लगाए रहे।
0: सही कहे हो राजा भैया।
1: भैया चाहे गांव के हो चाहे शहर के लोग हो, हमारे हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है गाड़ी वाहन चलाओ तो हेलमेट जरूर लगाओ,
0: बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बात कहे हो राजा भैया। जीवन से बढ़ के कुछ नहीं होते, हेलमेट लगावा, सीट बेल्ट पहना, और बहुत तेजी ना दिखावा, आराम से चला।
1: अरे हाथ पैर टूटी है तो जुड़ गई है, और इस दुर्घटना हो जाते तो हाथ से जैसे तोता उड़ेगा।
0: सही
1: सेवा पाला।
0: सही कहे हो भाई, ये तो बहुत मतलब महतारी बाप के सामने आगे अगर जवान बेटवा बिटिया लड़किया बच्चा कुछ कुछ हो जाते तो जो है महतारी बाप के जीवन तो जो है
1: महतारी बाप का तो कष्ट होता है, और वह की मेहरी एक जू पर काम।
0: अरे राम, सही कहे हो राजा भैया, ये तो बड़ा दर्द विदारक आप जो है घटना सुनाए दे हो, लेकिन एक मकसद ये है कि हमारे श्रोता पंचन जो सुनता है एक ध्यान रखे, जो अगर दुर्घटना कोनो घटना घटित होते उसे सीखे की जरूरत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सावधान सुरक्षित रह के लिए
1: गांठ बांध ले कि मोटरसाइकिल चलेबे तो हेलमेट जरूर लगेबे,
0: बिल्कुल
1: स्कूटर चलेबे हेलमेट जरूर लगेबे, और गाड़ी चौपहिया गाड़ी है तो वही मां भाई को कहा बताए
0: सीट बेल्ट,
1: सीट बेल्ट, सीट बेल्ट जरूर लगावे भैया,
0: और गाड़ी के स्पीड पर नियंत्रण रखे,
1: बिल्कुल
0: उड़ावे की जरूरत ना है,
1: बिल्कुल नियंत्रित स्पीड में गाड़ी चलावे वाहन चलावे, और सबसे हाथ जोड़ हमारी प्रार्थना है अपनी जीवन की सुरक्षा करें।
0: बिल्कुल बहुत जरूरी है राजा भैया, और देखा राजा भैया कार्यक्रम सुना थे तो बहुत कुछ सीखे मिले थे आप सबका। हाँ तो राजा भैया आपके साथ है, बहुत जल्दी फिर से आई है कार्यक्रम सुगंध माटी के। अरे राजा भैया ये घड़ीवा जंगल कहीं तेज चलती है का बताइए,
1: हम लोगों के कार्यक्रम से खार खात।
0: हाँ सही कहे, बड़ी जल्दी
1: तेज चले लगा,
0: इसे उड़ के जाना कैसे हो गया कि 10:56

0: डॉक्टरों के पता है ना इलाज
1: है
0: अब ए राजा भैया बैठा रहा भाई ना जा और यही तरह हमारा श्रोता पंचन कहा थे कि जो ना है ए का कहा थी आवत है तो राजा भैया ये कार्यक्रम के टाइम जो है 2 घंटा करे चाहिए मन नहीं कहा था कि आपका जाए दे लेकिन अब कहा बताइए समय
1: मन का हो थे
0: देखा इतना ईमेल आ जय सिंह कुमार वकील अहमद मोनू भैया बबीता राव सत्यम पाल शैलेश कुमार बहुत जने बाबू अंसारी कईयों जने लेखे लिख के भेजे मुनीश कुमार भैया पूछा था अमित कुमार भेजे ए मुनीश कुमार भैया पूछा था राजा भैया कौन है वही है जो हमें लग रहे हैं भैया तो काव लागत है तुम नहीं जाने लेकिन आप असली नाम बताए दो इनका सबका
1: असली नाम का पूरे सहरमा थिएटर में जो है राजे भैया जानते हैं
0: सब राजा भैया
1: जो जान रहे हैं वही राजा भैया
0: वही राजा भैया है और एक बात बताई दी ये वही राजा भैया है जो लखनऊ के रंगमंच के जाना माना कलाकार फिल्म कलाकार और जो ना आकाशवाणी के बहुत सीनियर कलाकार हैं और जो भाई कई उठी फिल्मों में भी काम करे हैं आमिर खान भैया का जो ना है अवधि बोले नहीं सिखाए रहे पिक्चर लगान पिक्चर में आए तो ऐसे हमारे सबके सौभाग्य कि आपके साथ हम कार्यक्रम करते ही मजा बहुत
1: हमार सौभाग्य है कि आपके साथ काम कर रहे हैं और आकाशवाणी वाले इनका धन्यवाद कि हमका यो अवसर दीन और ये भैया लोगन का आभार कितने प्यार से सुना थे
0: हाँ बहुत प्यार से सुना थे सब जने और देखा सबके प्यार के लिए एक बढ़िया गाना और आखिरी गाना ये हमरे आखिरी गौन ये है ई कार्यक्रम के लेकिन जो ना है राजा भैया के हम बहुत बहुत आभार धन्यवाद देते ही आप सबके तरफ से हैं आपके ईमेल जो उन बचा है वो का अगले कार्यक्रम में पढ़वे जरूर ठीक है
1: बहुत प्यार
0: हाँ तो भैया श्रोता पंचन आप सबका हम अंजू शुक्ला और राजा भैया की ओर से राम राम
1: राम राम राम, राम, राम।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर श्री योगी एक स्मारिका का विमोचन भी करेंगे। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतियोगिता देशभर से आए पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाड़ियों के बीच समन्वय, सौहार्द और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में रक्षा मंत्री ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि टैगोर की रचनाएं मानवता, भाईचारे और संवेदनशीलता का संदेश देती हैं। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। फर्रुखाबाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री के काम में लापरवाही बरतने पर मुख्य विकास अधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों का अप्रैल माह का वेतन रोक दिया है। साथ ही उन्होंने 60 पंचायत सहायकों की सेवा समाप्त करने के निर्देश भी दिए हैं। फर्रुखाबाद में लगभग 2.5 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री होनी है। अब तक 1,50,000 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री फॉर्म काम पूरा हो चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

ये तो वही बात हो गई ना कि इश्क मोहब्बत की रिवायत भी अजीब है, पाया नहीं है जिसको, उसे खोना भी नहीं चाहते। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूँ आरजी अंजू शुक्ला। एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, खैर मकदम करती हूँ। और आपने ट्यून किया 100.7 FM रेनबो।

0: सारे प्रोग्राम्स आप सबके पसंदीदा हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार रहता है उन लिसनर्स को जो चाहते हैं कि हमारी बात हो जाए आज प्रोग्राम में. तो बात करने के लिए क्या करना होता है पहले बता देते हैं. 0522, जी हाँ, फोन नंबर नोट कर लीजिए, लखनऊ का एसटीडी कोड 0522 और 2238852 या फिर 2238445. ये दो फोन नंबर्स हैं जिन्हें डायल करके आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं हमसे और बात कर सकते हैं बहुत सारे लोगों से. इसके अलावा FMAKASHVANILUCKNOW, दैट इज FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com, ये हमारी ऑफिशियल मेल एड्रेस है जिस पर आप ईमेल कर सकते हैं और तुरंत मेल कीजिएगा, आपकी बात ऑन एयर हो जाएगी. कोशिश करें कि सारे मेल्स 11:50 तक तो भेज दें, उसके बाद अगर कोई मेल आता है तो वो छूट ही जाता है, शामिल करना मुश्किल होता है. फिलहाल फोन पर हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है, आइए बात कर लेते हैं. हेलो हेलो.
1: हर फूल खुशबूदार नहीं होता, पत्थर चमकदार नहीं होता. हर फूल खुशबूदार नहीं होता, पत्थर चमकदार नहीं होता. दोस्ती करना जान समझकर अंजू मैम के जैसा हर कोई दोस्त वफादार नहीं होता. अंजू मैम के जैसा हर कोई दोस्त वफादार नहीं होता.
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस मोहब्बत के लिए. वालेकुम सलाम. शमा जी बोल रही है
1: जी, जिला सीतापुर पचानापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं. सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार, और राजा भैया को तो मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार.
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. राजा भैया जी के लिए ना आप कुछ लिखकर भेज दीजिएगा ईमेल के माध्यम से, है ना, किसी से भिजवा दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी जब वो कह रहे हैं उनके जो ईमेल्स आए थे वो हम पूरे शामिल नहीं कर पाए क्योंकि वक्त कम होता है, गाने भी लोग गीत भी सुनाने होते हैं.
1: बताइए आप कैसी हैं.
0: मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन जो मैं कह रही हूं ना वो पहले सुन लीजिए. तो उन्होंने ये कहा था कि जितने भी ईमेल मेरे लिए आएंगे ना, जितनी भी बातें, वो मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, फोटो खींच के भेज दीजिएगा. तो आप लोग ईमेल भेजेंगे तो मेरे लिए आसानी होगी कि हम उन्हें भेज सकें, है ना, वो जो कुछ भी आप उनसे कहना चाहते हैं. बिल्कुल, थैंक यू सो मच शमा. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं.
1: बहुत अच्छे हैं, और आपका इंतजार कर रहे थे कब शनिवार आए, कब अंजू मैम आए, और अगले शनिवार को आना और राजा भैया को जरूर लेके आना.
0: नहीं नहीं, ये यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, हम शनिवार, अगले शनिवार को तो हम नहीं आएंगे. अब हम थोड़ा सा मूड बदलने की कोशिश कर रहे हैं.
1: फिर दिल तोड़ दिया.
0: नहीं, दिल नहीं तोड़ा, दिल खुश कर दे रहे हैं. देखिए अब हम अगली बार जो आएंगे ना तो हम रात के प्रोग्राम में आएंगे, ठीक है,
1: प्रोग्राम में. शनिवार को नहीं आएंगे.
0: अगले शनिवार हम नहीं आएंगे, लेकिन अगले शनिवार को जो आने वाला है ना उनकी अवधि तो हमसे भी बड़ी जबरदस्त है.
1: कभी आप हेलो एफएम में आइए.
0: हेलो एफएम में भी आएंगे, लेकिन फिलहाल अगले शनिवार नहीं आने वाले हैं हम. और अब वो डेट हम थोड़ी देर में बताएंगे इस प्रोग्राम के एंड में कि हम कब आ रहे हैं, और अगली बार हमारी मुलाकात रात के प्रोग्राम में होगी. थैंक यू सो मच,
1: बताते हैं.
0: चलिए बहुत सारी बातें हो गई, बहुत शुक्रिया शमा. जल्दी से एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए ताकि हम और लोगों को भी मौका दे पाए.
1: बस हम आपकी तारीफ लेकर के आए थे आज.
0: अच्छा, चलिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और आपने हमारी बात मानी, मैं दो हफ्ते से आ रही हूँ लगातार, तो उस प्रोग्राम में आपने मेरे प्रोग्राम में कॉल नहीं किया था, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया. बाकी तो आप लोग करते रहते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय. तो भाई ये तो थी शमा, और हमेशा की तरह मेरी गुजारिश उन्हीं से, उन सब से है जो नियमित श्रोता है हमारे, कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करें उसके बाद फ़ोन लगाया करें. लेकिन शमा से मेरी बात दो हफ्ते बाद हो रही थी इसलिए मैंने इनकी कॉल ली, और इसी तरह बाकी हमारे सभी श्रोता भी थोड़ा हम लोगों की बात मान लेंगे तो अच्छा लगेगा. फिलहाल ईमेल्स बहुत सारे हैं, एक दो मेल्स पढ़ती हूँ, उसके बाद एक म्यूज़िकल ब्रेक लेंगे हम लोग. और मेल्स में कौन कौन है भाई, पहले तो जो पिछले प्रोग्राम के मेल्स आए थे जो हम नहीं शामिल कर पाए हैं उन्हें हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे. मैनुद्दीन जी ने खैराबाद सीतापुर से लिखा था, प्रोग्राम बहुत धमाकेदार चल रहा है, आपने तारीफ की, थैंक यू सो मच. और मनीष कुमार जी, आपका मेल मैं शामिल कर चुकी हूँ. जावेद अख्तर जी का भी मेल पढ़ा जा चुका है, और ये ऐप से हमें सुन रहे थे. इसके अलावा वारिस अली खान जी ने भी, जी आपका मेल शामिल हो गया था. इंद्रपाल मिश्रा जी का मेल भी शामिल कर लिया था. बाबू अंसारी जी ने लिखा है, देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से नमस्ते भेजा है, प्रोग्राम जबरदस्त लग रहा है सुगंध माटी की, थैंक यू सो मच. मोनू जी ने लिखा है कि अंजू बहन जी, राम राम राजा भैया उर्फ झंझटी भैया के बहुत आभार है, जौनी प्रोग्राम में दर्शन दहीन. हमारे नानी पूछा था कि काम तो बड़े अच्छे अच्छे कर रहे थे लेकिन नाम झंझटी भैया काहे रखा गया, बहुत नीक अवधि भाषा बोले थे राजा भैया. और पिलकवा तरबूज खाए रहे हैं नानी के साथ, फोटो भी भेज दिए, वाह क्या बात है. अच्छा, पीला वाला तरबूज खा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, आपकी बात हम जरूर राजा भैया तक पहुँचा देंगे, ठीक है. और कोमल तिवारी जी ने कहा कि प्रोग्राम तो बहुत ही हाँ का नौवा चली रहा है. अच्छा, हकनौवा चले रहा है, वाह क्या बात है. सब अवधि बोलना सीख गए, वैसे बोलते भी हैं. आशा पांडे जी अमरावती महाराष्ट्र से सुन रही

है। थैंक यू सो मच, आपने भी प्रोग्राम की तारीफ की। शेख अल्लाह बख्श साहब ने भी आदाब भेजा हमें तेलंगाना निज़ामाबाद से। शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना जी ने भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। और शैलेश कुमार यानी नीलू शर्मा का मेला है, गुड मॉर्निंग भेजा इन्होंने। और राजा भैया को भी गुड मॉर्निंग भेजा। सुगंध माटिकी के दो एपिसोड मिस हो गए थे, अच्छा किसी कारणवश हम नहीं सुन पाए थे, बट आज इन्होंने सुना। स्नेहा, सोनी, सारा, पीहू, रोशनी, बबिता, पूजा, सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच। और इनकी प्रिय दोस्त गोपी भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार हमारी तरफ से आप सबको। सत्यम पाल जी ने भी हमें सुना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच सत्यम जी। मोनू जी ने दोबारा कहा कि अच्छा दिवाकर का गाना सुन के मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। वकील अहमद जी ने कहा कि आवाज़ पसंद आई और ये गन्ने के खेत में देखने आए थे। वकील अहमद जी ने हमें मेल किया कटका हथूरी ब्लॉक सीतापुर से। अजय सिंह कुमार का मेल आया, इन्होंने भी नमस्कार भेजा। सुगंध माटी के प्रोग्राम बहुत अच्छा लागत बा, राजा भैया एक से बढ़ के एक अच्छी अच्छी बात करत हैं, बहुत मजा आएगा। राजा भैया अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बहुत धन्यवाद। अंजू मैम आपका भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित कुमार जी क्या लिख रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है आपको, चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से सुन रहा हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर 3 ईयर्स का स्टूडेंट हूँ, थैंक यू सो मच, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं आप, गुड मॉर्निंग, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आप बहुत आगे बढ़ें। और इसके अलावा अच्छा मुनेश जी ने कहा था अंजू दीदी राजा भैया कौन है, वही है क्या, हमें तो वही लग रहे हैं, कौन है राजा भैया, भैया आपको क्या लग रहा है आप बताइएगा तो हम बताएंगे आपको कौन है वो। सोनू जी ने भी मेल किया, गौनई तो एक से बढ़ के एक बजाय रही अंजू बहन जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, इस समय हमारे इधर बादल छाए हैं, बारिश का अंदेशा है कुछ कुछ, ओके। अच्छा बारिश से याद आया भैया, पता है आप लोगों को वैसे सुगंध माटी के प्रोग्राम मैं नहीं कर रही हूँ इस समय, संदेश आपके गीत हमारे चल रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, मतलब हम तो ऐसा करते थे और हम लोग क्या करते थे ना, सिलबट्टा होता है घर में, पता है कि नहीं, सिलबट्टा बहुत सारे लोगों के घर में तो होता ही नहीं है, है ना, मिक्सी का ज़माना आ गया भाई, लेकिन अगर सिलबट्टा आपके घर में है और उसका जो बट्टा है मतलब सिल का जो बेटा है बट्टा यानी लोढ़ा, उसको उठाइए और आंगन में खड़ा कर दीजिए, खड़ा खड़ा रख दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक छोटा सा टोटका है, मतलब कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में शादी ब्याह उत्सव है और जब बिन मौसम बारिश हो जाती है तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है ना, सब कुछ बहुत सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं, इसके लिए ये हम लोग करते थे, है ना, तो बड़ा मज़ा आता था, बारिश नहीं होती थी, रुक जाती थी, कई बार ट्राई किया है मैंने, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। फिलहाल एक बढ़िया सा गाना आप तक पहुंचा रही हूं, ट्रेंडिंग सॉन्ग है और ज़बरदस्त सॉन्ग है, इसे इंजॉय कीजिए, वापस आइए 100.7 FM रेनबो पर, प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे।

0: जी, हमने वहीं दिल लगाया था जहां मना किया गया था, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, क्या करें, दिल तो पागल है। बहुत सारी फिल्मों के नाम याद आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर कोई है, उनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, जॉली जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है जी।
0: बस बढ़िया ही रहा करिए और सब कुछ बढ़िया कर दिया करिए, है ना? आप लोगों से बात करके हमारा दिन भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं जॉली जी?
1: मैं आपका वो सोशल मीडिया पे प्रोग्राम देख रहा था,
0: अच्छा,
1: कि जो आपने मेडिकल स्टूडेंट से आकाशवाणी के बारे में जो क्वेश्चन पूछे थे, तो भाई हमको भी बहुत जानकारी हो गई, पता लग गया कि ये सब कब कब शुरुआत हुई और ये सब।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आकाशवाणी, बिल्कुल सर, और वैसे भी आकाशवाणी का तो अपना एक समृद्ध गौरवशाली इतिहास है। 90 साल पूरे होने जा रहे हैं, 8 जून 1936 से ये शुभारंभ हुआ था। और बस इतना ही है ना कि जब हम बात करते हैं पीढ़ियों की, जनरेशन्स को, और अपनी सांस्कृतिक जो समृद्ध परंपरा है उसको जोड़ने की, उसकी तो युवाओं को, यूथ को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये यूथ आउटरीच इनिशिएटिव किया गया आकाशवाणी @90, क्योंकि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और पूरे भारत में सभी आकाशवाणी केंद्रों के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो आकाशवाणी लखनऊ की एक छोटी सी पहल थी, हम मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच थे। अच्छा लगा कि आपने सोशल मीडिया पर लाइव देखा फेसबुक पे।
1: ओके जी,
0: और आप क्या कहना चाहते हैं जॉली जी हमारे बाकी लिसनर्स से, संदेश के तौर पे?
1: संदेश तो बस यही है कि जैसे हम लोग गर्मियों की छुट्टी में किसी के हवाले घर छोड़कर चले जाते हैं, तो अर्ज किया है कि वो हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं, जो हम पंछियों का घोंसला सुना छोड़ आए हैं।
0: क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कह डाली आपने, थैंक यू सो मच। बस यही है कि सब जो जहाँ भी जाए सुरक्षित अपने घर वापस जरूर आए, है ना?
1: नहीं, दूसरा कोई ध्यान नहीं दे पाता कि पंछियों को पानी देना या दाना देना है या नहीं देना है, तो वो हम लोगों के इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे मालिक आएंगे और हमको दाना पानी देंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो गली में आपके आसपास जो बेसहारा पशु हैं, वो भी, मतलब हमें तो, मैं तो अपनी कॉलोनी में एंटर होती हूँ तो पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं कि हाँ गाड़ी आ गई है, अब कुछ मिलेगा ज़रूर, है ना? तो वास्तव में उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर इस तरह से कहीं आना जाना है, दूर जाना है, गर्मी की छुट्टियों में जाना है, तो आप पड़ोस पड़ोस में कह सकते हैं लोगों को कि वो रख दें, ख्याल रखें उनका, पशु पक्षियों का, है ना?
1: जी,
0: थैंक यू सो मच जॉली जी, बड़ा प्यारा मैसेज आपका। तो भाई ये तो थे जॉली जी, आप भी आ सकते हैं 0522-2238-845 या फिर 0522-2238-852, ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, जो डायल कीजिए और हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होइए। फिलहाल हम गर्दन इधर घुमाते हैं तो हमारे पास ईमेल्स बहुत सारे हैं। आंचल जी ने मेल किया है और लिखते हैं कि माटी का सुगंध कार्यक्रम बहुत उम्दा, ज़बरदस्त, शानदार, बेमिसाल प्रस्तुत किया आपने। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज़ को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज़ अंदर ना आने दे, जहाज के अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति ना दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत ही पॉजिटिव थॉट है ये, और इसे सबके दिल में रहना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव थॉट से दूर रखिए अपने आप को, अपने जहन को, अपने दिल दिमाग को। आंचल अंकित सेठ रायबरेली से आपने हमें मेल किया, थैंक यू। रामराज जी का मेल आया है, श्री गणेशाय नमो, ज़िला रायबरेली, गाँव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानू, पप्पू, मनीष, मिर्ज़ा, इमरान बेग, नीरज, रिजवान भाई, आप सब का मेल है। आप जो गाने सुनाती हैं बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा संदेश ये है कि धूप बहुत ही तेज़ है, धूप से बचना चाहिए, साथ में पानी लेकर चलना चाहिए। हमारी तरफ से सबको प्यार भरा नमस्कार, बड़ा ही प्यारा मेल आपका, थैंक यू सो मच। और अब हम आगे बढ़ते हैं, गाना सुना देते हैं, ठीक है? एक बढ़िया सा गाना और वापस आते हैं, तो आपके ईमेल्स हैं और आपके फ़ोन कॉल्स भी होंगे, है ना? कोई ना कोई तो हमारे साथ ज़रूर ऐड होगा हो जाएगा। तो चलिए सुनिए इस गीत को, इंजॉय कीजिए और बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ, जो है धड़कन लखनऊ की।

0: उठा माजे किंग, ओ माजे किंग।
1: विलियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
4: धड़कन लखनऊ की।
5: भैया 11:30 तो बज गए हैं, 100.7 FM रेनबो ट्यून किया है आपने। काम अपने निपटाते रहिए, अगर घर में हैं तो भी, बाहर हैं तो भी, अगर ड्राइव कर रहे हैं तो सेफ ड्राइव कीजिएगा, इत्मीनान से चलिए, जल्दबाजी मत करिए और रेनबो को ट्यून इन रखिएगा ज़रूर। और अब हम चलते हैं अपने अगले लिसनर के पास जिनका कॉल आ गया है हमारे पास। हेलो।
6: हेलो दीदी, प्रणाम।
5: जी प्रणाम, आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका?
6: दीदी हमारा नाम सोनिया सिंह है।
5: सोने सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
6: दीदी लखीमपुर खीरी ग्राम पत्रा खीर से।
5: अच्छा, क्या बात है, मौसम कैसा है वहाँ पर?
6: हाँ दीदी मौसम तो अच्छा है, हवाएं चल रही है, बाकी धूप भी निकली है।
5: मतलब गर्मी उतनी अभी नहीं लग रही है ना इस समय?
6: हाँ दीदी गर्मी विशेष तो नहीं लग रही, बाकी गर्मी तो दीदी है ही है।
5: सही बात है, गर्मी तो है, गर्मी का मौसम है, गर्मी आएगी भी, कब तक टालेंगे हम गर्मी को, कब तक बचेंगे उससे, है ना। तो चलिए क्या कहना चाहते हैं आप?
6: दीदी कहना हम यही चाहते हैं दीदी, कुछ लोग हैं अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं, बेसहारा माए कहाँ जाएं, कपड़े सी सी के, जब पिताजी नहीं रहे तो कुछ माए अपने कपड़े सी सी के या काम दूसरों के वहाँ कर करके,
5: बिल्कुल माए बिल्कुल अपना गुजारा करती है।
6: और फिर वही बच्चे दीदी माँ को घर से जब बाहर निकाल देते हैं तो माँ के दिल पर क्या गुजरती है दीदी।
5: सही सही बात है। और कल तो मदर्स डे मनाएंगे तो बड़ी बड़ी बातें लिखेंगे स्टेटस पे, फोटो लगाएंगे, है ना, बड़ा प्रेम दिखाएंगे माँ के प्रति, समर्पण दिखाएंगे, लेकिन जब बारी आती है अपने कर्तव्य निभाने की तो पता नहीं कहाँ चला जाता है सब कुछ, है ना,
6: मुकर जाते
5: हैं। बहुत अच्छा मैसेज है आपका, आई होप सब इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि माता पिता भगवान स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है धरती पर।

0: उनका कर्ज आप नहीं चुका सकते जीवन भर, तो बस जीवन रहते उनकी सेवा कीजिए, उनका ख्याल रखिए और प्यार दीजिए उन्हें, है ना, सम्मान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े प्यारे मैसेज के साथ आपने हमसे बात की, थैंक यू सो मच सोने सिंह जी।
1: दीदी हमारा पहली बार नंबर लगा है।
0: अच्छा, वाह क्या
1: हाँ
0: बात है।
1: दीदी, बाकी फोन जो आता था कुछ हम कहो कुछ तुम कहे प्रोग्राम आता था
0: जी, प्राइमरी चैनल पे।
1: उस हाँ उसमें दीदी हमने कॉल की तो हमारी आज दीदी कम से कम हम बहुत दिन से ट्राई, 2-3 महीने हो गए। हाँ
0: चलिए बस ऐसे ही ट्राई करते रहने से देखिए कामयाबी मिल जाती है। बहुत अच्छा लगा
1: और
0: हमें भी
1: दीदी
0: आपसे बात करके।
1: आप दीदी ठीक हैं?
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया है सोने सिंह जी। बहुत सारे और श्रोता हमारे लगातार जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मौका देना है, फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। तो भाई अब ईमेल्स की तरफ रुख कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है संदेश आपके गीत हमारे, तो संदेश तो ज़्यादा हो जाते हैं, गीत कम हो जाते हैं हमारी तरफ से, हम पीछे रह जाते हैं, तो गाने भी तो हमें सुनाने होते हैं। फिलहाल बहुत सारे ईमेल्स हैं हमारे पास, और महेंद्र दीपन जी का मेल आ गया है, और इन्होंने हमें लिखा है, मैं महेंद्र दीपन जिला नागौर राजस्थान से। अंजू मैम जी, सबसे पहले आपको चरण स्पर्श, मेल थोड़ा बड़ा हो गया आपके हिसाब से, पूरा कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह आपने एक एआई वाला पोस्टर बनाकर भेज दिया है। कहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी बाइक वालों की भीड़ को देखकर अक्सर ऐसा भ्रम होता है कि जैसे कोई फॉर्मूला वन की रेस शुरू होने वाली। हाँ, बड़ा डिजाइन से लगाते हैं ना। वैसे जरा सी जगह मिली नहीं कि हैंडल घुसा दिया, बस अब निकल ही जाएंगे। देखिए बाइक वालों का क्या है ना कि बहुत दाएं बाएं से, उनको दाएं बाएं करने की बड़ी आदत होती है, और इधर उधर से निकालने, तो कई बार तो बस कार वालों के सामने ऐसे आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ब्रेक, मेरी गाड़ी का ब्रेक उनके ब्रेक दबाने से दब जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, ख्याल रखिए अपना और ट्रैफिक रूल्स का पालन करिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए। आगे इन्होंने लिखा है कि शॉर्टकट मानसिकता के पीछे की हकीकत है, अजीब लॉजिक है। बाइक सवारों का मानना है कि अगर टायर निकल गया तो समझो पूरी बाइक निकल जाएगी, और हकीकत का कहना यह है कि 5 मिनट बचाने के चक्कर में इतना रिस्क लेने के बाद अपनी बाइक सवार अगले चौराहे पर उसी बड़े ट्रक के पीछे खड़ा मिलता है जिससे वो पीछे उलझ कर आया था। बिल्कुल, और वैसे भी बड़े जो बाहर भारी वाहन होते हैं, ट्रक हैं, बसेज हैं, इनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, जैसा कि इन्होंने लिख कर भेजा है। समझ में नहीं आता कि चंद मिनट बचाकर आखिर हम कौन सा बड़ा किला फतह करने वाले हैं। ये न केवल खुद के लिए जोखिम भरी है बल्कि दूसरों के लिए भी सिरदर्द बन जाती है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी और बातें लिखी हैं ट्रैफिक नियमों का पालन करने के उद्देश्य से, आपका मेल आया है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा आपने, थैंक यू महेंद्र जी। वारिस अली खान जी ने भी आदाब भेजा है, आपने शो को शायराना अंदाज में शुरू किया। देखिए मैं तो सारे शो कोशिश रहती है कि शायराना अंदाज में शुरू करूँ, और अक्सर ऐसा होता भी है। और इन्होंने भी एक शेर लिखकर भेजा है कि याद आएगी तेरी रोज पर तुझे आवाज़ न दूंगा, लिखूंगा हर गज़ल तेरे लिए पर तेरा नाम न लूंगा। बहुत खूब लिखा आपने, थैंक यू सो मच। संदेश के तौर पर कहना चाहते हैं कि जो सकारात्मक सोचते हैं उसे भी कोई भी जहर नहीं मार सकता, और जो नकारात्मक सोच रखते हैं उसे कोई दवाई बचा नहीं सकती है। बहुत बड़ी बात और गहरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई बस आप जिंदगी को खुशहाल तरीके से जिए, पॉजिटिव रहें हमेशा, पॉजिटिव थॉट्स को अपनाइए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। वकील अहमद जी का मेल पढ़ते हैं, और यहाँ बारिश हुई है, गाड़ी धीमे चलाएं वरना फिसल सकती है। वकील अहमद जी कटका हथौरी ब्लॉक हर गाँव सीतापुर से लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आपने कुछ नाम लिखे हैं, साहिबा, शाजिया, शमा, रिंकी, पिंकी, महक, कुलफशा, सबके नाम हमने ले लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक गाना आ रहा है बढ़िया वाला, तो मटकना चाहते हैं तो मटक लीजिए और झूमना चाहते हैं तो झूम लीजिए। फिलहाल इस गाने के साथ इंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो को, जो है धड़कन लखनऊ की, और मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला आपके साथ।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
2: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियां, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
1: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
2: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
1: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
2: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
1: fmrainbowhelpline@gmail.com।
2: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी, बागवानी स्पेशल सेगमेंट

कल यानी रविवार को सुबह गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में ठीक 9 बजे के समाचार के बाद प्रसारित किया जाएगा। अगर आप की भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप लिख भेजिएगा अभी अभी जो मेल आईडी बताई गई उस पर, और सुनना ना भूलिएगा छत व गमलों में फल फूल सब्जी उत्पादन जो भी प्रश्न हैं आपके, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए फ़ोन लाइन पर प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे फ़ोन लाइन के जरिए डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ, और आपके सवाल पूछेंगे हमारे आरजे जो गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में होंगे कल। और फिलहाल आपको एक और प्रोग्राम जो रविवार को आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्वास्थ्य चर्चा पर आधारित प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, उसके विषय में जानकारी दे देते हैं कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जो मुझे लगता है कि भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। एक बहुत बड़ा प्रतिशत इंसानों का, लोगों का इस बीमारी से ग्रसित है। तो ये इन बीमारियों के विषय में आपको की जो भी समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनके विषय पर आधारित आज का प्रोग्राम होगा, मतलब हेल्थ एंड फिटनेस कल का, कल यानी 10 मई रविवार 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान मेडिसिन विभाग से, और आप इनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपको सवाल पूछने के लिए वही माध्यम अपनाने हैं, यानी हमारे फ़ोन नंबर्स 0522-22-38-852 और 0522-22-38-845 और fmakashwanilakhnau@gmail.com, ये हमारी मेल आईडीज, तो इनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं प्रोग्राम में और अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर साहब से सीधे। और अगर नहीं कोई सवाल है फिर भी प्रोग्राम को ज़रूर सुनिएगा, बहुत सारी जानकारियां बढ़ती हैं और उस जानकारी का फ़ायदा आपकी स्वस्थ दिनचर्या पर, स्वस्थ जीवनशैली पर में हो सकता है। फिलहाल अब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ मेल्स पढ़ती हूं। और ये मेल्स आए हैं हमारे पास अलग अलग जगहों से बड़े सारे श्रोताओं के। सुशील कुमार यादव जी का मेल आया है, लिखते हैं कि रंगों की तलाश वो करता है जिसकी ज़िंदगी बेरंग हो, इंद्रधनुष से घिरे लोगों को रंगों की कदर कहाँ। बहुत प्यारी और खूबसूरत बात आपने लिखी है सुशील यादव, करनैलगंज गोंडा उत्तर प्रदेश से। लेकिन कई बार जब आप किसी चीज़ की कद्र नहीं करते हैं तो वो आपसे दूर हो जाती है, और जब आपके हाथ से निकल जाती है ना तब उसकी वैल्यू पता चलती है, और उस वक्त पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है ना। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल लिख रहे हैं, प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सभी गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी, जय जी। संतोष कुमारी जी ने लिखा है, अंजू मैम नमस्ते, कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज मौसम बड़ा सुहाना है उस पर आप प्रोग्राम का मज़ा आ रहा है इनको, और आज 4 बजे। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यार से रेडियो के साथ जुड़ी रहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब बारी है एक बढ़िया से गाने की, इन्जॉय कीजिए इस ट्रैक को और वापस आइए 100.7 FM रेनबो पर, जारी रहेगा ये सिलसिला, यानी बातें, गाने और बहुत कुछ।

जी हाँ भाई, इसी तरह गाते रहिए, झूमते रहिए, मस्त रहिए, खुशियां मनाते रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे। लेकिन इस प्रोग्राम को अब धीरे धीरे वाइंड अप करने की बारी आ रही है। फोन्स बहुत सारे आ रहे हैं हमारे श्रोताओं के बराबर, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। हो सकता है लाइन्स में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, हमारे ईमेल का जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है और उस पर बहुत सारे लिसनर्स लगातार जुड़े हुए हैं। जी तो चलिए जल्दी जल्दी से ईमेल्स को पढ़ने का सिलसिला शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इस प्रोग्राम का और 11:51 हो गए हैं। अच्छा तो चलिए, मेल्स हमारे पास जिनके आए हैं उनमें हैं कुछ नाम, और संतोष कुमारी जी आपका मेल मैंने पढ़ दिया था और बहुत अच्छा अच्छा मेल्स आप लोग लिखते रहते हैं, थैंक यू सो मच। हमारे पास मेल है मुनीश कुमार राज जी का फिर से, और इन्होंने लिखा है कि हम देख रहे हैं कि खासकर आप जब आती हैं तो बस वही 3 आवाज़ें फ़ोन कॉलिंग के माध्यम से सुनता हूं। जी ऐसा नहीं है, आपने बहुत सारे और भी लोगों को देखे, सोने सिंह जी का भी फोन लगा लखीमपुर खीरी से, और भाई देखिए हमने पहले भी कहा है कि फ़ोन पर हमें ना किसी की शक्ल दिखाई पड़ती है ना हमें फ़ोन नंबर दिखाई पड़ते हैं, हम बस रैंडमली कॉल्स पिक करते हैं और बात करते हैं। वैसे बहुत सारे और लोग हैं जो लगातार ट्राई करते रहते हैं लेकिन उनका फ़ोन लगता नहीं है, और इसीलिए हम जो हमारे नियमित श्रोता है उनसे हर बार गुजारिश करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करिए फ़ोन्स को मिलाने में, कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन का ब्रेक ले लीजिए, आराम से प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए और नए लोगों को मौका दीजिए, ठीक है। और देखिए आपने जो बात कही है ये बात तो हम पिछले एपिसोड में भी कह चुके हैं और अक्सर हम कहते रहते हैं, हमारे श्रोता बस मान लें इस बात को। और मनीष गुप्ता जी कैसे हैं आप, कहते हैं कि जो लोग ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं कृपया करके वो हो सके तो एडजस्ट करने की कोशिश किया करें, क्योंकि लोग इतना फैल कर बैठ जाते हैं कि दूसरे को मौका ही नहीं देते हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत सब

0: वो दे दिया करिए जगह, है ना, एडजस्ट कर लीजिए। जनरल डिब्बे में सफ़र करने वाले लोग वैसे भी एडजस्टिंग नेचर के होते हैं। थैंक यू सो मच। और इन्होंने एक बात पूछी है जी, थैंक यू सो मच भाई। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग, हमने मेल खोला रैंडमली और इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें सामने आ जाती हैं। बबीता राव जी का भी मेल हमने शायद मिस कर दिया था, और इन्होंने लिखा कि इनके मम्मी पापा भी प्रोग्राम सुनते हैं, अवधि बहुत अच्छी लगती है इन्हें, हम जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें, और राजा भैया आपके द्वारा जो ज्ञानवर्धक बातें बताई गई वो बहुत पसंद आती हैं प्रोग्राम में, इन्होंने तारीफ की, प्रशंसा की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैंने सबके मेल्स पढ़ लिए हैं, कुछ और मेल्स हैं जो शायद शामिल ना हो पाए हों, लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, बहुत जल्दी से मैं भागती हूँ क्योंकि अगला प्रोग्राम लेकर एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपके साथ जुड़ने वाली है। अच्छा चलते चलते एक मेल और आ गया है, ये रवि जी हैं गोमती नगर लखनऊ से, इन्होंने भी आवाज़ और प्रोग्राम्स की तारीफ की है, और इन्होंने भी सोशल मीडिया पर जी इन्होंने लिखा है कि फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जो आपने मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच कार्यक्रम किया उसकी इन्होंने प्रशंसा की है, ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आकाशवाणी की ओर से होते रहने चाहिए, इन्होंने ऐसी बात कही है। मतलब कि पब्लिक जो रीच के प्रोग्राम्स हैं, पब्लिक आउटरीच के प्रोग्राम्स होने चाहिए, या ये कहें कि हम लोग निकल के यहाँ स्टूडियो से पहुँच जाएँ कहाँ आप लोगों के बीच में, यही चाहते हैं ना। तो चलिए वैसे कोशिश रहती है, बहुत यूथफुल तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इन्जॉय करते हैं, और हमारे बहुत सारे लिसनर्स ऐसे प्रोग्राम्स में बाहर से दूर दूर से हमसे मिलने पहुंचते हैं, इस प्रोग्राम को हमारे कार्यक्रमों को सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं, तो अच्छा लगता है। तो चलिए इसकी सिलसिला जारी रहने वाला है, मुझे लगता है कि आने वाले और कुछ दिनों में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपको देखने सुनने को मिलते रहेंगे। और आकाशवाणी लखनऊ की ओर से और FM रेनबो की ओर से आज बस इतना ही, मेरी अंजू शुक्ला की ओर से इतना ही। FM रेनबो पर लगातार एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा, मैं अंजू चलती हूँ, मुलाकात होगी आपसे मंगलवार की रात ठीक 8 बजे आऊंगी और रहूंगी आपके साथ 12 बजे तक। जी हाँ, प्रोग्राम आप शार, उसके बाद रेनबो कैफे जो पॉप टाइम है, लेकिन ट्यूसडे और सैटरडे को रेनबो कैफे जाता है, और रजनीगंधा का सफर आपके साथ तय करूंगी। तो सुनते रहिएगा 100.7 FM रेनबो। मैं अंजू चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, नमस्कार, बाय।
1: बरखुरदार हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए।

नमस्कार, 12 बजे हैं, आप सुनिए FM समाचार। शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी उपस्थित रहे। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वो सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत है। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य शहद उत्पाद एवं निर्यात क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में हनी एक्शन प्लान पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत न्यूजीलैंड उच्चायोग के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर शहद उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रदेश के कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान शहद उत्पादन की गुणवत्ता, निर्यात क्षमता, तकनीकी उन्नयन तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्रदेश के स्टाम्प और पंजीयन विभाग के 3 कर्मियों को अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हुए विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी कठोरता से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी विभागीय नियमों के विरुद्ध जाकर कार्य करने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चीन में आयोजित फुटबॉल चैंपियनशिप AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप में भारत ने कल लेबनान को 4-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर लेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbow@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
3: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब यारी।
3: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
5: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो।
6: धड़कन लखनऊ की।

12:05 और 10 सेकंड्स का वक्त आपके साथ, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त विनय यादव और प्रोग्राम शुरू हो चुका है फैमिली फन, जहाँ पर हम करने वाले हैं आपके साथ ढेर सारा फन। तो आप तैयार हैं ना? जी बिल्कुल तैयार रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारा एंटरटेनमेंट शुरू होने वाला है जनाब।

हाँ जी दोस्तों, ज़िंदगी ऐसे ही झूमती है जब हमारे फैमिली के लोग और हम साथ में होते हैं और एक साथ सब मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। जानते हैं फैमिली एक हमारी ज़िंदगी में एक कुछ या यूँ कहें कि फैमिली एक ऐसी चीज़ें होती है जो एक नियामत है भगवान की, नियमत कहते हैं जिसे, नियमत है भगवान की, जो आप कोई ऐसा शब्द उसके लिए है ही नहीं, बना ही नहीं है, जो ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट में दिया है। और ऐसा गिफ्ट है ना जो आप यकीन मानिए कि ज़िंदगी में वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं। और एहसास तभी होता है जब आप दूर हों, अगर आप साथ में हैं तो यकीन मानिए उनको ऐसे सहेजिए, उनसे ऐसे प्यार करिए, उनसे ऐसे मिलिए जैसे ऊपर वाले की नेमत है, गिफ्ट।

0: 7 FM रेनबो
1: धड़कन लखनऊ की।
2: फ्रेंड्स 12:23 और 55 सेकंड्स का वक्त, आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त विनय यादव और आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम फैमिली फन। फैमिली में बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ रहते हैं ना, और उन सब की अपनी अलग अहमियत है, चाहे वो दादी बाबा हों, मम्मी पापा हों, भाई बहन हों, चाचा चाची हों, और या फिर और अगर और थोड़ा आगे बढ़ें तो कजिन्स भी। अच्छा, आप कैसे हैं? थोड़ा नॉटी हैं या बहुत समझदार हैं फैमिली में, या फिर बहुत स्टूडियस पढ़ाकू? सब लोग कहते हैं डिस्टर्ब ना करो, पढ़ने दो बच्चे को। खैर, ये तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन आपको बताएं कि फैमिली को संजो कर रखना, उसके साथ बंध के रहना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। फैमिली को साथ रखना, ये उससे भी बड़ी चीज होती है। और सबकी बातों को मानना तो कितनी बड़ी चीज है, ये आप भी समझते हैं। हमारी जिंदगी में तमाम ऐसे दिन, तमाम ऐसे लम्हे आते हैं जहां पर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई हम करें तो क्या करें। मम्मी पापा की बात माने या दादी बाबा की बात माने, कजिन हमारे ऐसा कह रहे हैं, चाचा चाची, भाई बहन, क्या करें? आपको बताएं, वही एक अच्छा फैमिली वाला इंसान होता है जो सबको खुश रख सके। लेकिन बात ही आती है ना कि भैया सबको खुश कैसे रखें, ये बहुत बड़ी चीज होती है ना। आप भी फैमिली के साथ रहते होंगे और देखते होंगे कि सबको खुश रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आप एक मैच्योर इंसान की तरह जब ट्रीट करेंगे, समझदार बनने की कोशिश करेंगे, बनेंगे धीरे धीरे, आप फैमिली को साथ लेकर चलेंगे और सबको खुश रख सकेंगे।

हाँ जी, हम सभी ना बहुत अच्छे लगते हैं जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, और सबसे जो बड़ा किरदार है फैमिली के अंदर वो आपको लगता है किसका है? आपको क्या लगता है? मम्मी का या पापा का? हाँ जी, दोनों का, क्योंकि मम्मी पापा को तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना, उनके किरदार को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, घर में मम्मी का होना, माँ का होना किसी मंदिर में जलते दीपक जैसा होता है ना, वो खुद जलकर भी सबके जीवन में उजाला करती है, हम सबके जीवन में।

अगर हम बचपन की याद करें, बचपन की याद तो हमेशा आती है। अगर हम अभी बड़े हैं, आप सुन रहे हैं और आपकी भी एज ऐसी है, कुछ 90s देखा है आपने, तो अगर अभी भी आप बाहर निकलते हैं, किसी काम से जाते हैं, तो सबसे पहले मम्मी आपको सारे इंस्ट्रक्शन देकर भेजती हैं कि आपकी सेफ्टी रहे, आप सही सलामत घर वापस आए, आप किसी से भिड़े नहीं, आप सबकी रिस्पेक्ट करें, आपको सब प्यार करें। ऐसी ही उम्मीदें करती है ना माँ सबकी माँ।

12:39 और 6 सेकंड्स का वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम फैमिली फन। और फ्रेंड्स से जानते हैं कि कहते हैं ना कि फैमिली में सामंजस्य बिठाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि अगर आप अपने किरदार को समझ जाएंगे, हाँ जी आप क्या हैं जो जिस फैमिली में आप हैं ना, और जिन रिश्तों को आप निर्वाह कर रहे हैं, जी रहे हैं, निभा रहे हैं, वहाँ पर आप कैसे पेश आते हैं, कैसे निर्वाह कर रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों पर गौर करेंगे, उन पर ध्यान देंगे और उनकी अहमियत क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है और उन लोगों के प्रति आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, जब आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे ना, तो जो शिकायतें होती हैं ना हम सभी की कि सबको मैनेज कैसे करें, ये बहुत आसान हो जाएगा, कोशिश करके देखिएगा। खट्टा मीठा ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं ना, कभी इधर कभी उधर, लेकिन जितना ज़्यादा हम फैमिली के साथ रहेंगे, घुलमिल कर रहेंगे, सबके विचारों को सुनेंगे और अपने विचारों को भी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम दबा लेते हैं, दबाइए नहीं, खुद को बहुत ज़्यादा पेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर थोड़ा भी आप सुनेंगे और फिर कहेंगे तो यकीन मानिए आपकी बात को सुना भी जाएगा और गौर भी किया जाएगा।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
3: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: करियर पर है ध्यान,
4: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
3: पॉजिटिव है फैशन,
4: क्रिएटिव है पैशन,
3: टेक्नोलॉजी में रुचि,
4: बने पर्सनालिटी ऊंची,
3: फॉलो करें ट्रेंड्स,
4: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
3: ओनली ऑन यूथ वेव,
4: यूथ की बात यूथ के साथ,
3: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
4: धड़कन लखनऊ की।

अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पर जिंदगी भी चलती ना फैमिली के साथ में, आपने गौर किया है क्या? अगर आप सबके लिए हाजिर हैं, सबकी बात मान रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और होना भी चाहिए। देखिए, आप फैमिली के साथ में हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, तो फिर आप सबके साथ हैं तो सबके प्यारे भी हैं और सबकी बात तो आपको माननी पड़ेगी ना, सबके लिए हाजिर होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैं क्यों हाजिर हूँ, मेरी भी जिंदगी है, मुझे भी

काम करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे भी अपना करियर देखना है, ठीक है, सबके लिए टाइम होता है, 24 घंटे दिए हैं भगवान ने। बस कहना हम ये चाहते हैं कि आप फैमिली के साथ हैं तो कभी भी उन चीज़ों को इग्नोर मत करिए जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आपका कोई भी बहाना उन्हें हर्ट कर सकता है। हाँ, या फिर उम्मीद ही ना हो, उनको पता हो कि नहीं आपसे कहना ही बेकार है, और ऐसे बनना भी नहीं चाहिए ना, और ऐसे बनने से चीजें खराब होती हैं और हो सकती हैं। तो जितना ज्यादा हो सके फैमिली के साथ उनको रिस्पेक्ट देते हुए, उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ हमें रहना चाहिए, चलना चाहिए। यही जिंदगी है, और आप यकीन माने, आप अगर कोशिश करेंगे ना धीरे धीरे उन चीज़ों को बदलने की, साथ रहने की, साथ चलने की, उम्मीदों पर, सामने वाले की उम्मीदों पर खरा उतरने की, तो धीरे धीरे आप उन चीज़ों में ढल जाएंगे, वो चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। पक्का बता रहे हैं, यकीन मानिए, और कोशिश करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ही क्यों करूँ,

सबकी रग रग में आप संभालने लगेंगे। 12:54 और 37 सेकंड्स का वक्त, और ये वक्त कहता है कि विनय आपसे इजाजत लेगा प्रोग्राम फैमिली फन से, मुलाकात करते हैं लेकर नेक्स्ट प्रोग्राम में न्यूज ब्रेक के उस पार। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आपके दिल की आवाज़ 107 FM रेनबो।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव।
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
3: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
2: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
3: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
2: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
3: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
2: fmrainbow@gmail.com।
3: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं, आप सुनिए FM समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल के में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य शहद उत्पादन एवं निर्यात क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में हनी एक्शन प्लान पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत न्यूजीलैंड उच्चायोग के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर शहद उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रदेश में कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान शहद उत्पादन की गुणवत्ता, निर्यात क्षमता, तकनीकी उन्नयन तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बस्ती में जेल में रह रही महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और महिलाओं द्वारा बनाई गई सजावटी वस्तुओं की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सुलह समझौते पर आधारित मामलों का निस्तारण होता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आकर पारिवारिक विवाद, वाहन चालान जैसे मामलों का निस्तारण आसानी से किया जा सकता है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनकी लगभग 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। इस दौरान श्री सिंह का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। इस मौके पर लोकसभा सांसद

मुकेश राजपूत सभी विधानसभाओं के विधायक और विधान परिषद सदस्य प्रांशु दत्त द्विवेदी भी उपस्थित रहे। चित्रकूट में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में ब्यूटी पार्लर और महिला सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने संस्थान परिसर का निरीक्षण कर प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि कौशल विकास और स्वरोजगार आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। इसी बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 107.7 FM रेनबो।

हाँ जी, मेरा भी दावा है कि आपने ऐसा मौसम मई में नहीं देखा होगा, पक्का बता रहे हैं आपको। या यूं कहें जेठ के महीने में, हाँ जी, मंगलवार की पूड़ियाँ, बड़े मंगल की पूड़ियाँ खा रहे हैं आप, वो जलती धूप में ठंडे पानी और पूड़ी सब्जी, एंजॉय कर रहे थे ना। लेकिन अब का मौसम देखा है ना आपने, ठंडी हो रही भैया, किसी किसी टाइम तो लगता है कि स्वेटर निकाल लें, फरवरी जनवरी दिसंबर तो नहीं आ रहा है, क्या कहें भैया, ऊपर वाले की देन है और हम सबको यहाँ रहना है तो सहना तो पड़ेगा जी। 1:06 का वक्त, प्रोग्राम शुरू हो चुका है होटल पर तेरी बात, और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे विनय यादव। तो बस इसी मौसम को लेकर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। तो आप तैयार हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, हम भी ईमेल के सामने बैठे हैं, आपके मेल आना स्टार्ट होंगे और हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और खूबसूरत ट्रैक तो रहेंगी ही आपके साथ।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: फ्रेंड्स, समय है इलाकाई खबरों का।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। मग़रबी बंगाल में बीजेपी के पहले वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह की मौजूदगी में कल कोलकाता में हुई बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में जनाब अधिकारी को बिला मुकाबला लीडर मुंतखब किया गया था। हलफ बरदारी की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर जेपी नड्डा, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़राए आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा मुतअद्दिद रियासतों के वज़राए आला और सीनियर लीडरान मौजूद थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़ेर एहतमाम दूसरी ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 चैंपियनशिप का इफ्तिताह करेंगे। जनाब योगी इस मौके पर एक सोवेनियर भी जारी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि ये मुकाबला मुल्क भर से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाड़ियों के दरमियान हम आहंगी, दोस्ती और सेहतमंद मुकाबले के जज्बे को मज़ीद तकवीत देगा। रियासत में 7 मई से डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत पहले मरहले की खुद गिनती शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल मर्दमशुमारी के पहले मरहले को ऑनलाइन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी मुल्क की तरक्की के लिए एक बुनियादी अमल है और इसमें हर शहरी की शिरकत इंतहाई ज़रूरी है। इस दौरान नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना मर्दमशुमारी फॉर्म ऑनलाइन भरा। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि
1: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: डुमरियागंज से मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल, पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर, काबीनी वजीर कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने भी कल खुद गिनती का अमल मुकम्मल किया। उत्तर प्रदेश के इलाकाई डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस

ऑपरेशंस ने कल यूनिसेफ के तावन से लखनऊ में यूनिसेफ के दफ्तर में सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन पर बेदारी और सलाहियत साजी के सेशन का इनेकाद किया। तकरीब में रियासत के चीफ प्रिंसिपल मरदमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने वजाहत की कि खुद शुमारी मरदमशुमारी 2027 की एक बड़ी इख्तरा है। ये मुल्क की पहली मुकम्मल डिजिटल मरदमशुमारी होगी। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज आज और कल 18 मजामीन में लेक्चरर ग्रेड के 624 ओहदों के लिए तहरीरी इम्तहान करा रहा है।

0: एआई पर मबनी सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है और उन्हें जिला कंट्रोल रूम और कमीशन के मरबूत कंट्रोल कमांड रूम से मुंसलिक किया गया है। इम्तिहान के तकद्दुस से समझौता करने वालों और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत भर में आज कौमी लोक अदालत का इनेकाद ज़िला अदालतों, कलेक्ट्रेट अहातों और सभी तहसीलों में किया जा रहा है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लखनऊ की हिदायत के मुताबिक लोक अदालत में ख़ानदानी और उज़्दवाजी तनाज़ात, मोटर एक्सीडेंट, मुआवजे के मामलात, सार्फीन के मामलात और बैंक की वसूली समेत मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात का तस्फिया किया जाएगा। रियासत के स्मार्ट प्री पेड मीटर सिस्टम को ख़त्म करने और तमाम स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में चलाने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया गया है। रियासत के तवानाई के वज़ीर ए के शर्मा ने बताया कि RDSS स्कीम के तहत नसब तमाम मीटरों को फौरी असर से पोस्ट पेड मोड में तब्दील किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: महकमा मौसमियात ने आज मशरक़ी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा ने कई जगहों पर तेज़ हवा और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम मरकज लखनऊ के साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फ़ाल हो जाएगा और 12 मई से वस्ती और मगरबी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।

1:22 और 49 सेकंड का वक्त, आप हैं प्रोग्राम मोटो पर तेरी बात और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे विनय यादव। हाँ जी, आपके मेल तो हमें मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन आ गया है लाइन पे। सुधाकर यादव जी ने मेल किया है मोटो पर तेरी बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी बातें आपने लिखी हैं, जाफराबाद से आपने हमें मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सुधाकर जी। और उसके अलावा सुनील पाठक जी ने मेल किया है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं जी, नमस्ते और धन्यवाद।

तो अरविंद कुमार दुबे जी ने मेल लिखा है, नमस्कार। वाकई मई महीने में इतना सुहावना मौसम नहीं दिखता है। वैसे इतना सुबह और रात में मौसम ठंडा है। हम सभी लोग एक साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं, एफएम रेनबो लखनऊ के सारे कार्यक्रम लाजवाब लगते हैं। अरविंद गोविंद दुबे, प्रतिमा प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आपने हमें मेल किया है। हाँ जी, ये जो आपने मेल किया ना अरविंद कुमार जी ने, आपने जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर बात की है, और सभी लोग ऐसे ही बस नमस्ते धन्यवाद करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है ना उस पर बात करेंगे। जैसे अब मई का महीना है और ये बड़ी बात है, हर बार जेठ के महीने में इतना ज़्यादा गर्मी और लू चलती है जिससे हम लोग परेशान होते हैं, कभी ठंड मिल जाए, कहीं ठंड मिल जाए। और वो जो ना जो चलता आ रहा है, बहुत सालों से चलता आ रहा है, बहुत सालों से क्या मतलब, जब से प्रकृति चलती आ रही तब से चलता आ रहा है। और वो जो है ना, वो समय की मांग है। और जो इस समय हो रहा है, भले ही हमें राहत मिल जाती है, लेकिन अगर आप दूर की थोड़ा सोचे ना तो डर लगता है ना। आपको क्या लगता है? वही तो मैंने पूछा आपसे कि आपको क्या लगता है, मई में सावन भादो जैसा मौसम है तो सावन भादो में कैसा होगा जी?

और एक बात और, डरने की परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस जुड़े रहना है हमारे साथ और नेचर को इंजॉय करना है। और खूबसूरत ट्रैक तो हमारे पास है ही हैं आपके लिए।

या देखिए लंच वंच करने देंगे हमको कि नहीं करने देंगे, ऐसे ही बस हम प्रज्ञा कटेरिया, प्रतिमा कटेरिया, वेद बाबू कटेरिया और कहा है पुत्र वधू है इनकी निशा कटेरिया, इनका नाम जरूर ले लीजिएगा। धन्यवाद जी। देखिए सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप मौसम के बारे में बात करेंगे ना कि मई का मौसम है और गर्मी होनी चाहिए, लू चलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम मना रहे हैं, हम लोग मना रहे हैं कि नहीं हाँ काहे नहीं गर्मी पड़ रही, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नेचर ने कर रखा है। लेकिन कभी कभी अभी 2-3 दिन पहले जब बारिश हुई ना तो बिल्कुल लग रहा था कि ठंड सा माहौल हो गया है, और ऐसे में सर्दी हो जाती है ना, और तमाम तरीके अगर हम तैयार नहीं है सर्दी के लिए तैयार नहीं है तो तमाम सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। आप क्या कहना चाहते हैं और जो भी कहें आप हमें ईमेल के माध्यम से कह सकते हैं fmrainbow@lucknow.com से। शुभम जी ने मेल किया है, लिखते हैं कि मेरी वाइफ का बर्थडे है और कौशलिन जी भी साथ में हैं और इन्होंने हमें सुल्तानपुर रोड अर्जुनगंज अंसल से हमें मेल किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखिए ये ना कोई ऐसा प्रोग्राम तो है नहीं कि हम आपकी पसंद का ट्रैक सुनवा पाएँ, लेकिन हाँ जो भी ट्रैक हमारे पास हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, आप इंजॉय करेंगे, डेफिनेटली करेंगे।

1:40 और 50 सेकंड्स का वक्त, आप हैं ऑटो पर तेरी बात में आज अपने दोस्त विनय के साथ और एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रैक और आपकी मील भी। हाँ जी, अर्पित शर्मा जी ने मेल किया है, लिखते हैं कि हमारे यहाँ तापमान 45 से भी ज़्यादा है, थोड़ी ठंडक हमारे यहाँ भी भेज दीजिए। अच्छा जी, बालू तरह राजस्थान से आपने हमें मेल किया है। अर्पित जी, आपके वहाँ गर्मी पड़ रही है? देखिए, हम ये आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी लखनऊ है, तो अब आकाश से वाणी जाएगी तो हो सकता है भगवान जी देख ले जाए, उधर मोड़ दें आपकी तरफ, इंतज़ार करिए। अच्छे दिन बिल्कुल बारिश होने वाली है आपके यहाँ। वकील अहमद साहब का मेल है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, और जी धन्यवाद, आप खाना खा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और लिखते हैं कि वकील अहमद मंसूरी कटका हतूरी ब्लॉक हरगांव ज़िला सीतापुर से आपने मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब हमसे जुड़ने के लिए। गुलफ़सा जी लिखती हैं, क्या लिखती हैं, गुलफ़सा सिद्दीकी जी, हेलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून विनय भैया, मैं गुलफ़सा सिद्दीकी संडीला से, आप पूरे एक महीने बाद आए हैं। मौसम की बात नहीं की आपने, लिखती हैं कि मौसम बहुत अच्छा है बस। हाँ जी, मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मई में ऐसा मौसम होना चाहिए? अच्छा तो होना चाहिए, मजा तो आ रहा है हम सभी को।

हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और होता भी है। जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो कभी चाहे नाराज़गी हो या फिर कोई बात हो गई हो तो साथ नहीं छोड़ते हैं। 1:48 और 7 सेकंड्स का वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम होठों पर तेरी बात। चलिए जल्दी से मेल्स पर नज़र डालते हैं। जय साहब लिखते हैं, सभी नगमे अच्छे लग रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने मेल किया है हमें।

राम शर्मा जी ने मेल किया है और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी बड़ाई लिख दी है हमारी जी। आंचल सेठ जी लिखते हैं, बादलों का आना जाना लगा है वैसे ही इस मौसम में, ऐसा मौसम हमारी समझ के परे है। इसका साफ मतलब है कि जलवायु को हम सब ने परिवर्तित कर दिया है, कभी गर्मी कभी ठंडी और कभी बारिश, पता ही नहीं मौसम भी बारहमासी हो गए। नीता सेठ जी लिखती हैं, टॉपिक अच्छा है और मौसम भी अच्छा है जी, धन्यवाद। टाइगर खान लिखते हैं, माय नेम इज नरगिस, संडीला से इन्होंने मेल किया है, हरदोई से मेल, हाँ संडीला से भी और हरदोई से, अच्छा जी, और गुड आफ्टरनून, और जी वेरी गुड आफ्टरनून, और बहुत दिनों बाद आए हैं, हाँ जी हम आ गए हैं, लेकिन इतने दिनों भी बाद नहीं आए कि आप लोग ऐसे कह रहे हैं कि मैं छोटी थी और अब बड़ी हो गई हूँ। और मोनू सेठ जी लिखते हैं, मौसम बहुत ही खूबसूरत है, घर पर रहो तो सुहाना, घर के बाहर जाओ तो धूप का नजराना। चलिए बहुत अच्छा लगता है जब आपके मेल्स इस तरह के हम तक पहुंचते हैं और आपने अपने सुझाव और अपनी बातें आप हम तक रख रहे हैं, और इसीलिए हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं कि आप अपने दिल की बात हमसे कह सकें, ऐसा ना हो कि दिल की बात दिल में दबाए रखें और शाम तक ऐसा नहीं होना चाहिए ना जी, बिल्कुल। बिल्कुल वादा है हमारा आपसे, ऐसे सॉन्ग्स हम यहाँ पर प्ले करेंगे कि आप दीवाने हो जाएंगे 100.7 FM रेनबो के, जो कि पहले से हैं और दीवाने। 1:50 और 30 सेकंड्स का वक्त।

हाँ जी, विनय मिश्रा जी ने मेल किया है। लिखते हैं, नमस्कार। पर्यावरण से की गई छेड़छाड़ का नतीजा है इस मई महीने में गर्मी की जगह सर्दी का एहसास हो रहा है। अप्रैल में तपिश और अपने स्वभाव पर था, लेकिन एकाएक मौसम ने करवट बदली और ठंडक ने पूरे वातावरण को सुखद बना दिया। समस्तीपुर बिहार से आपने मेल किया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जयदेव जी ने मेल किया, गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ और बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी हैं, तरबूज खीरा जैसे पानी से भरपूर फलों का सेवन करें। गर्मी में सतर्क रहने के उपाय हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी हैं। रुद्रपुर नैनीताल से आपने हमें मेल किया है, और इतनी सारी नॉलेज आपने लाई कहाँ से? रुद्रपुर इतनी गर्मी तो पड़ती नहीं है शायद। उसके अलावा जावेद अख्तर साहब ने मेल किया है, और इन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, और लिखते हैं कि मोहब्बत व प्यार, मोहब्बत व प्यार भरे अंदाज में पूरे लखनऊ को। जी नमस्ते, जी नमस्ते। और पता नहीं आप लोग ना कई कई बार ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं अपने दिलों की कि हमको आ आ आ नमस्ते करके ही निपटाना पड़ता है। सही बता रहे हैं हम। और 1:56 और 15 सेकंड का वक्त, और ये वक्त कहता है कि प्रोग्राम से हम इजाज़त आपसे ले, लेकिन रेनबो हॉटमेल लेकर उस बार हम आपके साथ आते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आपके दिल की आवाज़ 107.7 FM रेनबो।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं, आप सुनिए FM समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल सरकार में भाजपा की सरकार बनने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री के यशस्वी मार्गदर्शन एवं ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। भारत और न्यूजीलैंड शहद उत्पादन एवं निर्यात क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में हनी एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। योजना के अंतर्गत न्यूजीलैंड के उच्चायोग के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने यूपी का भ्रमण कर शहद उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। इस प्रतिनिधिमंडल ने कल प्रदेश में कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से मुलाकात की और शहद उत्पादन की गुणवत्ता तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन बढ़ावा देने पर चर्चा की। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बस्ती में जेल में रह रही महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। जनपद मथुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर लगभग 3.5 लाख वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया है। अपने सोशल मीडिया के संदेश में उन्होंने कहा है कि मातृभूमि के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा हेतु उनका अदम्य साहस एवं समर्पण देश के लोगों के को न्याय के विरुद्ध अडिग रहने और राष्ट्र निष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में महाराणा प्रताप की लगभग 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान श्री सिंह का गॉड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वो सैन्य मामलों के विभाग के सचिव

के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए आपके दिल की आवाज़ 107.7 FM रेनबो।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

हाँ जी, ये है 100.7 FM रेनबो, 2:05 और 14 सेकंड्स का वक्त। रेनबो हॉटमेल चल चुकी है भैया। लूप लाइन से मेन लाइन की तरफ लेकर चलते हैं। और अगर आपको अपनी सीट बुक करानी है तो fmakashwanilakhnow@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कर सकते हैं अपने दिल की बात। क्योंकि आपको पता है ना, ये हॉटमेल अब एक घंटे बिना रुके बिल्कुल रुकती नहीं है, चलती रहती है। एक घंटे अपने नॉनस्टॉप मंजिल तक पहुंचती है। तो हो जाइए तैयार एक खूबसूरत सफर के लिए। और इस सफर में आपका हम सफर है आपका दोस्त आरजे विनय यादव। चलिए मेल्स भी ले लेते हैं। और ये मेल्स आया है कौशलिन जी का, इन्होंने मेल किया है हमें अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड अर्जुनगंज से। और ये अपने दोस्त इनके दोस्त हैं शुभम, और शुभम की आज एनिवर्सरी है। अच्छा जी, और एनिवर्सरी के लिए वो जो शुभम है और उनकी वाइफ है उनको डेडिकेट करना चाहते हैं सॉन्ग। तो आप इंजॉय करिए कौशलेन जी, शुभम जी और उनके तमाम साथी, आप भी इंजॉय कर सकते हैं आपकी पसंद का ट्रैक। FM आकाशवाणी लखनऊ 100.7 @gmail.com पर।

2:11 और 33 सेकंड का वक्त आप हैं हॉटमेल में और मेल्स हमारे पास बहुत सारे पहुंच चुके हैं और सभी के मेल्स हम कोशिश करेंगे कि पढ़े जाए और सॉन्ग जो आपने रिक्वेस्ट किए हैं वो प्ले किए

पूनम जी ने मेल किया है हमें और इन्होंने जलालाबाद वेस्ट से मेल किया है और सुरेश, पूनम और विशाल इन लोगों ने मेल किया है। कोई सॉन्ग की रिक्वेस्ट नहीं की है आपने, बस राम राम जी लिखा है जी, राम राम पूनम जी। और उसके अलावा रियाज जी ने मेल किया है, हमारे भाई रियाज को सॉन्ग सुना दीजिए, हमसे गुस्सा हो जाएंगे प्लीज़। और ये लिखते हैं कि मैं आई एम फैज़ान, फैज़ान ने मेल किया है, लिखते हैं कि रियाज को मेरा सॉन्ग सुना दीजिए, कह रहे हैं कि मैं अभी ईरान में हूँ। चलिए रेहान, रियाज, फैज़ान, ईरान, जो टिक्का, जो भी लोगों को सुनना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपका ट्रैक हम आप तक पहुंचा सके। और अनिल कुमार जी ने मेल किया है और नमस्कार जी, नमस्कार, और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने लिखी है, हम कोशिश करेंगे कि आपका ट्रैक आप तक पहुंचाया जाए। आफ्ताब अंसारी जी ने लिखा है, विनय यादव जी को प्यार भरा नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार, और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने की है। और आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, सभी को आपने डेडिकेट करना चाहा है जी, हम कोशिश करेंगे कि आपका ट्रैक आप तक पहुंचाया जा सके। आफ्ताब अंसारी जी, धर्मेंद्र जी ने मेल किया है, लिखते हैं हॉटमेल जी, नमस्कार, नमस्कार हॉटमेल में, और कारवा फिल्म से सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपका ट्रैक आप तक पहुँचे। भोपालगढ़ राजस्थान से आपने

मिल गया है धर्मेंद्र कपिल पूजा परिहार जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बाबू अंसारी जी ने मेल किया है और लिखते हैं, गुड आफ्टरनून जी, हम बहुत अच्छे हैं और लिखते हैं आप ये गाना सुनवा दीजिए जी, हम कोशिश करेंगे कि आपका ट्रैक आप तक पहुंचे। नरेश जी ने मेल किया है और लिखते हैं कि नमस्कार जी, नमस्कार, और लिखते हैं सर प्लीज़ मेरा नाम पूरा पढ़ना। क्या नाम है आपका पूरा?

इतने साल प्लीज मेरा नाम पूरा पढ़ना। क्या नाम है आपका पूरा? और केएल बाजार पानीपत से इन्होंने मिलकर नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल पापा जी और नानक शिव जी कॉलोनी, पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डुग्गू और कहते हैं शुक्रिया हमें शामिल करने के लिए। देखिए कितना कॉन्फिडेंस है। आप लोग जानते हैं कि हमारा मेल शामिल होगा लेकिन फिर भी शिकायतें करते रहते हैं। दिग्दर्शन जी ने मेल किया है बाईपास मेरठ से, दिग्दर्शन और कविता गौड़ गांव शोभापुर से। आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं मेरठ से लगभग 40 वर्ष से आकाशवाणी के अलग अलग स्टेशन पर सॉन्ग सुनता हूँ, फरमाइश भेजता हूँ और मेरा नाम भी बोला जाता है जी। और धन्यवाद लिखा है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं आप। सतीश अनेजा जी लिखते हैं, विनय भाई नमस्कार जी, नमस्कार। और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने लिखा है चंडीगढ़ सिटी से, आपने हमें मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम देखिए कोशिश करेंगे कि आपका ट्रैक आप तक पहुंचा सकें। और उसके अलावा रविंद्र मोहन दास जी ने मेल किया है और ये लिखते हैं कोई गीत सुना दीजिए। अच्छा जी, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी। आशु जी ने हमें मेल किया है गोमती नगर से और लिखते हैं कि मेरे सिस्टर की शादी होने वाली है 12 मई को। अच्छा जी, और उन्होंने सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है कि कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिए। बड़ी ज़बरदस्त हालत का माहौल चल रहा है, सही बता रहे हैं आपको। और रविंद्र दास जी, आपने भी किसी सॉन्ग में शामिल करने के लिए कहा है तो आपके लिए, और आशु जी आपके लिए, आपकी सिस्टर की जो शादी होने वाली है 12 मई को, और सभी को डेडिकेट करते हैं जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी एनिवर्सरी चल रही है और जो शादी में बढ़िया झूम गाने वाले हैं आजकल, परसों नरसों आने वाले कई दिनों में, सबके लिए।

हाँ जी, 2:20 और 48 सेकंड्स का वक्त। आप हैं हॉट मेल पर आज अपने दोस्त विनय के साथ, एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रैक और आपने मेल। सुधाकर यादव जी ने मेल किया है और इन्होंने कालीगांव से हमें मेल किया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सीख मूसा साहब, बहुत सारे मेल आ गए हैं आपके जी। प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हैं जी? हम भी खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? दुआ में याद रखना जी, बिल्कुल याद है आप। और समाज से शेख मूसा मोहसिन, बहुत सारे मेल किए हैं आपने। आलोक वर्मा जी ने मेल किया है और सॉन्ग की रिक्वेस्ट इन्होंने की है, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से इन्होंने लिखा है। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार, सुदामा खेड़ा खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने की है जो हम कोशिश करेंगे कि आपका ट्रैक आप तक पहुंचाया जा सके। और पंकज शर्मा जी ने मेल लिखा है और इन्होंने मेल किया है जगमोहन गुल ग्लानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इशप्रीत शर्मा और बहुत सारे नाम उन्होंने लिखे हैं। और कुछ भी नहीं, खाली नाम लिखे हैं आपने पंकज जी।

शाह जी ने मेल किया है हमें हिंगोली महाराष्ट्र से, और स्मृति नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, और बहुत सारे नाम आपने लिखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए महाराष्ट्र से। ताज मोहम्मद जी ने मेल लिखा है, और आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार, जी नमस्कार, और किसी भी वर्मा इसमें शामिल कर लीजिए, क्या बात है। रमाकांत जी ने मेल किया है और लिखते हैं, मुझमें थी एक विकलता तुम्हारे लिए, द्वार दीपक सा जलता तुम्हारे लिए, और जो होता पता तुम यहीं आओगे, मैं ना घर से निकलता तुम्हारे लिए। ये क्या है, प्यार है, मोहब्बत है, या आगे कुछ खौफ? जो भी है, बहुत अच्छा है। रमाकांत जी लखीमपुर खीरी से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

2:27 और 10 सेकंड्स का वक्त। और ये जो सॉन्ग आप इंजॉय कर रहे हैं, ये तरंग अंशुमन जी ने हमें मेल किया है और मेल किया है रायबरेली से। लिखते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ ये सॉन्ग सुनवा दीजिए। ऐसा क्या था इस सॉन्ग में, लेकिन देखिए हमने प्ले कर देना, आपके दिल की बात हमने सुन ली। और बहुत सारे मेल्स हम तक पहुंचे हैं, देखते हैं और किन किन का मेल आया है। शिलू मौर्या जी लिखती हैं, गुड आफ्टरनून सर जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और फैजुल्ला गंज लखनऊ से, इन्होंने हमें मेल किया है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी का महीना चल रहा है तो गोविंदा जी की मूवी का सॉन्ग सुनवा दीजिए। ठीक है। और प्रोग्राम अपने पतिदेव शोभित मौर्या जी के साथ सुन रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सुनते हैं ना, फैमिली के साथ में सुनते हैं तो उसका एंजॉय करने का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही होता है। लीजिए, चंडीगढ़ से एक और मेल हम तक पहुंचा है, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा जी, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने भी की है जी, हम कोशिश करेंगे कि आपका ट्रैक आप तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अगर नहीं भी पहुंच रहा है ना, आपका नाम पहुंच रहा है आप रेडियो के ज़रिए और जो सॉन्ग हम प्ले कर रहे हैं ना, कोशिश करते हैं कि कई लोगों से जुड़ा हुआ वो सॉन्ग हो। शायद जैसे उनकी शादी थी ना अभी, जिनका हमने ट्रैक प्ले किया था, उनकी सिस्टर की शादी थी और बहुत सारे लोगों ने शादी वाले सॉन्ग को प्ले करने की गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी, तो हमने प्ले किया। तो आप

समझ जाया करिए ना कि हाँ ये मेरे लिए ही है। अकरम हुसैन जी ने मेल किया है, नमस्कार, अपनी पसंद के किसी भी गीत में हमें शामिल करें, मैं इंतजार में हूँ। जी शामिल हो गए हैं। सीतामढ़ी बिहार से आपने हमें मेल किया है, मुसरत जहां, नाज और तलत जहां, नाज फरत जहां और बहुत सारे नाम उन्होंने लिखे, साजिया, नुजरत और रिफत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बोधराज जी ने मेल किया है और सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला और गीतिका भानु प्रकाश जी।

और राजेश वर्मा, शेख मोसा जी, पूजा जी मलियाबाद, वैसे हम नाम ले रहे हैं क्योंकि इन लोगों के मेल पड़ चुके हैं, सॉन्ग नहीं प्ले कर रहे, तो इसी में हम सबको शामिल कर रहे हैं। पूजा जी मलियाबाद से इन्होंने मेल किया और लिखती हैं कि मौसम बहुत अच्छा है तो सर उसी से रिलेटेड कोई सॉन्ग सुनवा दीजिए। ये कितना प्यारा सॉन्ग है। गरिमा सिंह जी, अतुल शुक्ला और निजाम आलोक वर्मा जी, आपके पसंद का ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, और आपका भी ट्रैक आपके रेडियो सेट पर हो सकता है। बस आपको जुड़ना है हमारे साथ, fmakashwarilakhnow@gmail.com पर मेल करना है, करनी है अपने दिल की बात।

ये अशोक कुमार जी ने मेल किया, अशोक राज गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून, रायपुर ओडारा मितौली लखीमपुर खीरी से आपने हमें मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। गुरमीत सिंह जी मेल करते हैं खुशनुमा लखनऊ, और अमिता साउथ दिल्ली से जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए गुरमीत जी। उत्तम कुमार जी ने मेल किया है पश्चिम बंगाल बोहड़ा गाछी से, मुन्ना भगत गुड्डी सत्यम अर्णब किस्सु और श्वेता उत्तम कुमार। 2:36:17 का वक्त, आप है हॉटमेल पर और हॉटमेल लगातार स्टेशन से स्टेशन को पार कर रही है, उड़ती हुई निकलती जा रही है।

मुकेश जी ने मेल किया है और लिखते हैं आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से आपने मेल किया। मुकेश, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर, किसी भी गीत में हमें शामिल करें। जो तो भाई जो अगला हमारा नेक्स्ट ट्रैक होगा ना, उसमें आपका नाम शामिल है। शाहरुन नूर जी ने मेल किया है, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। जी धन्यवाद, आपने सुन लिया है जो सॉन्ग प्ले हो चुका है ना, उसमें आपका भी नाम आ गया है। ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से आपने मेल किया है शाहनूर, फरियाज, शकील, मोइन, तस्लीम और टीजे जी। तुलसी जी ने मेल किया है प्रिय होस्ट और गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून और मीत दर्द काटे गीत। क्या क्या लिखा है आपने। बिहारी कॉलोनी सादरा दिल्ली से आपने मेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दिलीप कुमार जी ने मेल किया है और सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, भागलपुर बिहार से आप हमसे जुड़े हैं। दिलीप कुमार, सोनी, कमल, किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भागलपुर बिहार से हमसे जुड़ने के लिए। मूंदी चक। विनय कुमार जी ने लिखा है, अरे आरजी विनय यादव जी कहाँ कहाँ थे आप, बड़े दिनों बाद आए हैं प्रोग्राम में। और और लिखते हैं कि आज बहुत दिनों बाद मेरा भी मन करने लगा, जबरदस्त लग रहा है प्रोग्राम सुनकर, हो सके तो मेरा भी सॉन्ग चला दीजिएगा फुर्सत मिले तो। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तो नाड़ी। क्या बात है, इतनी बड़ी रिक्वेस्ट। पुंजा जी ने मेल किया है और लिखते हैं कि नमस्कार नमस्कार, और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने की है दुर्गा कॉलोनी हाथी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी और डब्बू डब्बू।

आशीष तुहान, कौशलेंद्र शुभम और निजाम जी, आपका ट्रैक आपके रेडियो सेट पर। हाँ जी, हाँ जी, पृथ्वी और रेखा जी आप भी जुड़े हैं हमारे साथ रायबरेली से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और आपका ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।

बज के 44 मिनट और 5 सेकंड्स का वक्त आपको बताएं। देखिए ऐसे जो सॉन्ग बजते हैं ना तो बहुत पता नहीं क्या क्या बताएं हम आपको, और लोग ऐसे मतलब दिल से इतने प्यार से इतनी मोहब्बत से सॉन्ग रिक्वेस्ट करते हैं और सुनते हैं। अपने दिल की हालत समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं और जो लोग सुन रहे हैं ना वो भी समझ सकते हैं। विनय कुमार जी आपका ट्रैक आपके रेडियो सेट पर। वादा रहा सनम हो गए जुदा। जी ये मेरी पसंद का तो है लेकिन मैंने रिक्वेस्ट नहीं की, मेरा भी नाम विनय कुमार है।

2:47 और 25 सेकंड्स का वक्त आप हैं रेनबो हॉट मेल पे। आज अपने दोस्त विनय के साथ वारिस अली खान साहब ने मेल किया है जी। धन्यवाद लिखते हैं कि विनय भाई आदाब, लगता है आपको मौसम की मार पड़ी है। क्या बताएं, आप समझ गए। और उसके अलावा लिखते हैं कि अर्ज है, हारा वही है जो लड़ा नहीं, जीता वही है जो झुका नहीं। और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने की है तो सॉन्ग तो बहुत अच्छे आई होप प्ले हो रहे हैं और आप सभी लोग इंजॉय कर भी रहे हैं। उसके अलावा शैलेश कुमार जी ने मेल किया है रूपपुर चंदेला से, नीलू शर्मा विनय सर को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। और दिलवाले मूवी से तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं, ये बात तो बिल्कुल वैसे भी अच्छी नहीं है। जो आपको चाहता है, जो आपको पसंद करता है, जो आपको अपने दिल में रखता है, उसको बिल्कुल भी सताना नहीं चाहिए। सॉन्ग की बात आपने की है तो कोशिश करेंगे कि हम आप तक पहुँचा दें। शैलेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अच्छे मेल के लिए। रमेश जी ने मेल किया है, किसी भी गीत में हमारे सभी नाम शामिल कर लीजिए, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से आप हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चंद चौहान, मोहनी और कल्पित, बेबी गर्वी, बेबी आय और हिमांशु, हिमांश नाम आपने छोटा सा लिखा है। साहिन जी ने

लिखा है और नमस्कार जी नमस्कार, और प्रोग्राम आपको अच्छा लगा इसके लिए धन्यवाद, और सॉन्ग की रिक्वेस्ट आपने भी की है। अच्छा जी, नारायण, ओमकार और तमाम साथियों के नाम आपने लिखे हैं। कहाँ से मेल किया है आपने? आपने मेल किया हमें कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र से।

भला ये बताइए, ये सॉन्ग किसे पसंद नहीं है? लेकिन पर्टिकुलर किसी की पसंद का सॉन्ग है और सबको पसंद है। नित्या सैनी जी ने मेल किया है हमें, और ये मेल इन्होंने किया सीतापुर से। लिखती हैं कि आज हमारी एनिवर्सरी, हमने कहा था ना कि बहुत सारे लोगों की एनिवर्सरी है, शादी है, धमाल मचा रहे लोग,

0: 9:54 का वक्त हो चला है और बहुत सारे मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं। और मुनीश कुमार जी ने मेल किया राजभाव भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से और लिखते हैं कि विनय सर कहाँ थे जी, हम बिल्कुल आपके साथ में हैं और आपको सॉन्ग भी अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम्स भी अच्छे लग रहे हैं। शिवानी, शिवम, राधा रानी, लक्ष्मी, शिल्पी और राम भोर राज का नाम लेने के लिए आपने कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और उदय भान पाल जी ने मेल किया है और इन्होंने मेल किया है बुंदेलखंड महोबा जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। उदय भान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश और दिव्यांश। अरविंद कुमार बुद्ध जी ने मेल किया है और गुड आफ्टरनून लिखते हैं जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और रसूलपुर मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से इन्होंने मेल किया है और माय फेवरेट सॉन्ग देखा है पहली बार जी, धन्यवाद। इसलिए तो हम प्ले करते हैं ना, हमको पता है ना कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं और क्या क्या रिक्वेस्ट आप करते हैं हमसे।
1: अरे मर गए फोकट में हम, कोई तो हमको लियो बचाए।
0: हाँ जी, ये सॉन्ग मालूम है किसकी पसंद का है? ये मैं तो नहीं कहूंगा कि मेरी पसंद का है, लेकिन मेरी तरफ से आप सभी के लिए है। क्योंकि भाई देखिए, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सबके सॉन्ग प्ले कर पाएं। संजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट टाइम में बिल्कुल आपने मेल आया है। संजय कुमार जी, उदय भानपाल, रोसी दी डिकोस्टो, नवी हसन, एम के, पिंकू सोनी, सुधाकर जी और शैलेश कुमार गुलबसा, शमशुल, डी के साहब, भागवत और रमेश चौहान, अंकुश पाटवा और बहुत सारे साथी जिन्होंने मेल किया, जिनके मेल शामिल नहीं हो पाए और जिनके सॉन्ग नहीं प्ले हो पाए, उन सभी के लिए ये ट्रैक मेरी तरफ से। इंजॉय करिए।

जी फ्रेंड, 2:58 और 15 सेकंड्स का वक्त, और ये वक्त कहता है कि रेनबो हॉटमेल से आप हम अब आपसे लें इजाजत, क्योंकि न्यूज ब्रेक के उस पार प्रोग्राम आपका नेक्स्ट इंतजार कर रहा है ना। तो हॉटमेल को मेन लाइन से लूप लाइन में लाने का वक्त हो चला है, तो अपना चाहने का कहीं नहीं है आप लोगों को, एक से बढ़कर एक है आपके लिए इंतजार कर रहे हैं न्यूज ब्रेक के उस पार।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं, आप सुनिए एफएम समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री के यशस्वी मार्गदर्शन एवं ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 11 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। नालसा के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तरीकों से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। इसी क्रम में आज प्रदेश भर में लोक अदालतों का आयोजन किया गया है। बस्ती में जेल में रह रही महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं मथुरा और अमरोहा में भी 1 लाख से 1 लाख से अधिक वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। कुशीनगर जिले के दीनापट्टी स्थित एक ईंट भट्टे पर खोदी गई मिट्टी के गड्ढे में 3 मासूम बच्चों के डूबने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि खेलते हुए 3 बच्चे गड्ढे पर पहुंचे, जल भराव के कारण बच्चे अपना संतुलन खो बैठे और पानी में डूब गए। छत्तीसगढ़ निवासी बच्चों के परिजन ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कौशाम्बी में 284.46 लाख की लागत से बनने वाले जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। जवानों के हित में विभिन्न प्रकार के भत्तों को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में सुगमता तथा आम जन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अप्रैल में IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में मिर्जापुर को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में प्रभारी IGRS के नेतृत्व में जनसुनवाई समाधान प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण कराया जाता है। इस बुलेटिन में इतना ही।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुनिए,
2: कहिए,
1: कहिए,
2: सुनिए,
1: सुनिए,
2: कहिए,
1: कहिए।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव।
1: यूथ की बात यूथ के साथ
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर।
1: धड़कन लखनऊ की।

3:11:20 का वक्त आप हैं अपने दोस्त विनय यादव के साथ और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम सतरंगी दुनिया। दोस्तों दुनिया सतरंगी है ना, आपको क्या लगता है कि दुनिया कब सतरंगी लगती है आपको? जब आप खुश होते हैं, जब आपकी मर्जी की चीजें आपके अकॉर्डिंग चल रही होती हैं। हाँ जी, अगर कहें तो सच बात तो यही है कि अगर हमारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं तो फिर कैसे हम मान लें कि दुनिया सतरंगी है। हाँ जी, ये जो सॉन्ग्स हैं ना, ये बहुत कुछ हमारे दिल को, बहुत हद तक हमारे दिल को छूते हैं और बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं, बहुत कुछ बता जाते हैं और एक मैसेज जो हम तक पहुंचता है। आप तक पहुंच रहा है क्या? हम तक तो पहुंच रहा है। आप एंजॉय करिए, लौट कर आते हैं, बातें करते हैं सतरंगी दुनिया में कि दुनिया कैसे सतरंगी है।

मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

नव ऊर्जा, नव सृष्टि सृजन, नव हो उमंग, पवित्र हो मन। नित्य नव दिवस का शुभारंभ भक्ति भाव की पुष्पांजलि।

हाँ जी फ्रेंड, 3:23 और 20 सेकंड्स का वक्त हो चला है. आप हैं सतरंग की दुनिया में आज अपने दोस्त विनय यादव के साथ. हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि दुनिया सतरंगी आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे निर्धारण करेंगे उसका कि दुनिया मेरी दुनिया सतरंगी है या आपकी दुनिया सतरंगी है. आपके मुताबिक चीजें चलें तब जैसा आप सपना देखते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाए तब. अच्छा, दो चीजें हो सकती है ना, या फिर नेचर आपको चला रहा है, आपको लगता है कि नेचर ने मेरे साथ अच्छा किया, या फिर कुछ कुछ गलत हुआ, या आप दूसरों को देखते हैं कि नहीं उनकी दुनिया बहुत अच्छी है, सतरंगी है, बचाए मेरे.

तो आपको बताऊं कि दुनिया ना सबकी सतरंगी होती है और उसका निर्धारण, उसको जस्टिफाई हम सब ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी के दिल में कुछ ना कुछ बातें रहती हैं जो अंदर ही अंदर लगता है यार ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, मेरी जिंदगी बिल्कुल मजे में होती। और अगला सोचता है यार ऐसा होता तो ऐसा हो जाता तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती मेरे लिए। हाँ सब कुछ है आपके पास, शायद कुछ बहुत। खैर ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कुछ बहुत और सब कुछ और जो नहीं है, उन सारी चीज के बीच में जो बातें आती है ना उनके बारे में हम बात करेंगे। 3:25 का वक्त, विनय यादव है आपके साथ, एंजॉय कर रहे हैं आप प्रोग्राम सतरंगी दुनिया।

3:29 और 53 seconds का वक्त. आप हैं सतरंगी दुनिया में आज अपने दोस्त विनय के साथ. फ्रेंड्स, हम जो बातें कर रहे थे ना कि सतरंगी दुनिया कैसी लगती है आपको, कि कैसी होनी चाहिए सतरंगी दुनिया, और ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम सभी ख्वाबों में ये सोचते जरूर हैं कि ये दुनिया ऐसी होती तो सतरंगी होती. आपको पता है जो चीजें बाकी रह जाती हैं हमारी जिंदगी में, जो पूरी नहीं हो पाती, शायद कोशिश हम बहुत करते हैं, बेहिसाब कोशिश करते हैं कि ये चीजें पूरी हो जाएं, और फिर मन मार के बैठ जाते हैं. आपको क्या लगता है कि वो जो मिस कर दिया हमने, क्या वहीं से हमारी जो दुनिया सतरंगी होनी थी वो रुक गई क्या? ऐसा होता नहीं है, सच बताएं आपको. जो हमारे पास मौजूद है और जिसकी कल्पना हम कर रहे हैं आने वाले भविष्य में, उसके लिए जो जी रहे हैं, वो सतरंगी दुनिया हो सकती है, हमारी भी और आपकी भी.

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

वैसे आपने क्या एनालिसिस किया है अपनी लाइफ में कि शतरंज की दुनिया कैसी है आपकी? मिलते मिलाते अगर ये कहा जाए कि बहुत कुछ हासिल कर लिया है हमने या कुछ बाकी है, तो उसके बारे में कुछ कह सकते हैं क्या आप? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है ना शतरंगी दुनिया, कैसे एनालिसिस करेंगे आप अपनी जिंदगी में? हाँ जी, किसी की दुनिया ऐसी भी शतरंगी हो सकती है।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: फ्रेंड्स, आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम सतरंगी दुनिया। 3:46 और 40 सेकंड्स का वक्त हो चला है, और आपको बताएं कि वैसे तो अगर देखा जाए ना, तो सतरंगी दुनिया छोटी छोटी खुशियों में हम ढूंढ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा सपना पूरा होना ही सतरंगी दुनिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारी एक पल की खुशी की जो चीज़ है ना, वो अगर हमें मिलती है और वो पल हमारी खुशी से भरा होता है, वो दिन हमारी खुशियों से भरा होता है, तो आई थिंक सतरंगी दुनिया वैसी ही होती है। क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों से जब मिलेंगे, बात करेंगे, तो हर कोई आपसे अपना दुखड़ा रोने की कोशिश करता है, आपको बताते हैं कि कोशिश करता है कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम है, और खुशियां भी जाहिर करता है लोग। लेकिन दुख जो है ना, वो ज़्यादा बड़े लगते हैं, और जब आप उनको सुनते हैं, फिर अपने जो चीज़ें हैं उनसे कंपेरिजन करते हैं, तो आपको लगता है कि सब चीज़ें थोड़ा ऐसे ही हैं। लेकिन ऐसी ही होती नहीं है, वो चीज़ें आपके मुताबिक चल तो नहीं सकती, लेकिन आप चला जरूर सकते हैं उनको। कैसे? पता है ना, छोटी छोटी खुशियों को अपनी जिंदगी में शामिल करके।

0: फ्रेंड्स 3:53 और 20 सेकंड्स का वक्त हो चला है और बस चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे कि दुनिया सतरंगी हर किसी की हर वक्त नहीं होती है, बस थोड़ा सा इंतज़ार और थोड़ी थोड़ी खुशियां अगर हम करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल होते रहते हैं, उन खुशियों में शामिल होते रहते हैं, तो ऐसे ही जिंदगी सतरंगी होती रहती है।
1: हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता।
0: बस किसी के सहारे से, कभी किसी को सहारा देकर हम एक बार अपनी जिंदगी सतरंगी कर सकते हैं, दुनिया सतरंगी कर सकते हैं, और एक बार दूसरे को सहारा देकर उसकी दुनिया सतरंगी करने में सहायता कर सकते हैं। और यही प्यार है, यही जिंदगी है, और ऐसे ही चलता रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, सबकी दुनिया सतरंगी रहेगी।
1: चाहत न होती अगर तुम न होते।
0: तो आज के लिए

जी इजाज़त, अपने दोस्त विनय यादव को फिर किसी और दिन आपसे मुलाकात करेंगे। और मेरे पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे, विनय कुमार जी लेकर हाजिर है। नेक्स्ट प्रोग्राम आप इंजॉय करेंगे उनके साथ अगले 4 घंटे। तो मैं चलूँ, प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी मार्गदर्शन एवं ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। नालंसा के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। प्रदेश भर में आज लोक अदालतों का आयोजन किया गया। बस्ती में जेल में रह रही महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। मथुरा और अमरोहा में 1,00,000 से अधिक वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया। कानपुर देहात में जिलाधिकारी कपिल सिंह ने विभिन्न वादों की सुनवाई करते हुए उनका निस्तारण भी किया। कुशीनगर जिले के दीनापट्टी स्थित एक ईंट भट्टे पर खोदी गई मिट्टी के गड्ढे में 3 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि खेलते हुए ये तीनों बच्चे गड्ढे पर पहुंचे। जलभराव के कारण बच्चे अपना संतुलन खो बैठे और पानी में डूब गए। छत्तीसगढ़ निवासी इन बच्चों के परिजन ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया है। अपने सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि मातृभूमि के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा हेतु उनका अदम्य साहस एवं समर्पण लोगों को राष्ट्रीय निष्ठा की प्रेरणा देता है। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का संघर्ष और राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज और कल किया जा रहा है। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें लगभग 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस किया गया है। देवरिया जिले में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि भवन के जीर्णोद्धार के बाद फीता काटकर शिलालेख का अनावरण और भवन का लोकार्पण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि भवन अब पूरी तरह व्यवस्थित एवं कार्य के अनुकूल हो गया है। इससे विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत सुकून से भरा दोपहर
1: पुरानी जींस और गिटार
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर फिर रात को फुर्सत के वो पल
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर तो सुनते रहिए एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की

जी हाँ, हे करते करते देखिए मैं एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ। विनय यादव गए और विनय कुमार आ गए और मोहब्बतें लुटाने हम आए हैं। 4 घंटे आपके साथ रहेंगे और आपसे बहुत सारी बातें शेयर करना है। और अभिजीत सावन की ये बेहतरीन आवाज़ और मोहब्बतें लुटाने वाला ये गाना आपके लिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है। यूथ वे सुनते रहिए 107 FM रेनबो।

जय दोस्तों, आपके साथ बिताया हुआ हर मंजर कभी भूल नहीं पाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि मैं आपका दोस्त विनय हाजिर हो चुका हूं लेकर यूथ वेव, और आपका हम वेलकम कर चुके हैं। और आप जानते हैं यूथ वेव जहां पर होती है आपके पैशन, आपके ड्रीम और आपकी ग्रोथ की बातें। और आज का जो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर से जुड़े स्किल्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमसे जुड़ा है, हमारी रूट से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो आप इस टॉपिक के साथ हमारे साथ बन रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिसे हम और आप बड़े प्यार से कहते हैं धड़कन लखनऊ की।

और दोस्तों कच्चा घड़ा होना कोई ख़राब बात नहीं है, कच्चा घड़ा ही धीरे धीरे पक जाता है। जी हाँ, अगर आप लगातार कोशिशें करते रहते हैं ये तो ज़रूर आप पक जाते हैं, गढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और यूथ वे में तो हम ऐसे भी आपके करियर, आपके स्किल्स की बात करते हैं और आज स्किल डेवलपमेंट पर हम बात करें। और आज हमने जो स्किल आपके लिए चुनी है वो है आर्ट एंड कल्चर। और दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि आर्ट एक इनबॉर्न टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट यानी वो आपके अंदर पहले से ही होता है, लेकिन सच बात यह है कि आर्ट और कल्चर की जो स्किल्स हैं वो प्रैक्टिस और एक्सप्लोर करने से डेवलप हो जाती हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे सिंगर हैं और आपके घर में सिंगिंग का माहौल है, म्यूज़िक का माहौल है, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में, आपके जहन में म्यूज़िक बस सा जाता है। और इसके साथ ही साथ अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स आर्टिस्ट हैं और आपके घर में कलर्स रहते हैं, हर ओर कैनवस है, ब्यूटिफुल सी आर्ट है, तो कहीं ना कहीं आप भी टेक्निक सीख जाते हैं। पर इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जिनके घर में आर्टिस्ट, जिनके पेरेंट्स आर्टिस्ट हैं या कोई उनके घर में आर्टिस्ट हो उनका बच्चा आर्टिस्ट ही बने, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें जाना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर उसमें जा सकते हैं। और आप बेहतरीन एल्बम सॉन्ग एंजॉय कर रहे हैं, तो एक और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो हमने आपके लिए सेलेक्ट करके रखा है, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के पद के लिए एक रिक्ति उपलब्ध है। ये पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित। चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना के साथ विस्तृत भर्ती विज्ञापन आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के साथ साथ वेबसाइट upsconline.nic.in पर भी प्रकाशित किए गए हैं। आवेदन करने के लिए आप देख सकते हैं ये वेबसाइट upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको पात्रता, वेतनमान आदि सभी जानकारियां विस्तार से मिल जाएंगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में सिमुलेटर इंजीनियर ग्रेड 1 का एक पद उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए देखिए आधिकारिक वेबसाइट igrua.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप पात्रता, वेतनमान एवं अन्य सभी शर्तों की जानकारी विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान में उपनिदेशक सिविल इंजीनियर के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस पद के लिए आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रपत्र केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वेबसाइट का पता है cicef.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप पात्रता, मानदंड और वेतनमान आदि की सभी जानकारियां विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है जो इन पदों के लिए भारत के नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित कर रही है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार केवल ऑनलाइन अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। पद नाम है असिस्टेंट फोरमैन। कुल 150 पद हैं, जिनमें से 60 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 15, एससी श्रेणी के लिए 24 और एसटी श्रेणी के लिए 33 तथा ओबीसी श्रेणी के लिए 18 पद आरक्षित हैं। तकनीकी इलेक्ट्रीशियन के कुल 350 पद उपलब्ध हैं, जिनमें से 140 सामान्य वर्ग के लिए, 35 ईडब्ल्यूएस के लिए, 56 एससी वर्ग के लिए, 77 एसटी वर्ग के लिए और 42 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की वेबसाइट www.mahanadikol.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप योग्यता, पात्रता मानदंड, आरक्षण, आयु में छूट, परीक्षा शुल्क और अन्य नियमों और शर्तों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल।

0: ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

बहुत बहुत स्वागत है यूथ वेव में, और ये बेहतरीन आवाज के साथ एक बार फिर से हम छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए।

जी अदनान स्वामी की ये बेहतरीन आवाज में तेरा चेहरा आप सुन रहे थे 100.7 FM रेनबो पर, और आज आपके साथ आपका दोस्त विनय है लेकर प्रोग्राम यूथ वेव। और यूथ वेव में देखिए क्या बज गया। और विनय, ये आपसे बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो आर्ट एंड कल्चर में स्किल्स की बात हम कर रहे थे, उस पर हम सबसे पहले ये कह रहे थे कि एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपको कुछ भी पसंद हो, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फोटोग्राफी, इनमें से कुछ भी आपको पसंद है तो आप उसे एक्सप्लोर करिए। और जब आप बहुत एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें सब कुछ पसंद होता है लेकिन सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। आप परफेक्ट किसी एक चीज़ में ही हो सकते हैं, यानी किसी एक चीज़ में ही अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। तो अब टाइम इस बात का है कि आपकी आजकल ना टाइम में लर्निंग के लिए रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रहेगी। आज के समय में आप आराम से सीख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब से और इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां से बेसिक स्किल्स तो आसानी से सीखी जा सकती है। यानी बेसिक सीखकर बड़े सारे लोग बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं, कई सारे रियलिटी शोज़ में वो पहुँच गए हैं। बस उन्होंने अपने दिमाग में क्लैरिटी बनाई और फिर वो अपने लिए काम करते गए, अपने ऊपर काम करते गए, और आज वो छाए हुए हैं। ये बातें हम ऐसे ही जारी रखेंगे। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर एक और बेहतरीन ट्रैक।

और हम गल्ला करने हर रोज आपके लिए आते हैं जी हाँ, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक हमारे बड़े सारे प्रोग्राम आपके लिए हाजिर रहते हैं। आप हमें रेडियो पर सुनते हैं, ऐप के माध्यम से सुनते हैं और हाँ, लाइव रेडियो के माध्यम से भी इंजॉय करते रहते हैं। यूथ वेव प्रोग्राम में आपका दोस्त विनय आपके साथ है और हम बात कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर में कैसे आप स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट बात है प्रैक्टिस की। दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के कोई भी स्किल नहीं सीखी जा सकती है। डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, जैसे आप स्केच बना सकते हैं, अगर आप पेंटिंग में जाना चाह रहे हैं, स्केचिंग में जाना चाह रहे हैं, अगर आप सिंगिंग में ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आप सुर पकड़ने की कोशिश करिए, रोज़ गाइए, किसी को कुछ भी लगे, कोई कुछ भी कह रहा है, बस आप गाइए। हाँ, अगर लिखने का शौक़ है, लिखना चाह रहे हैं, तो आप डायरी लिखना शुरू करिए और डायरी लिखते लिखते स्क्रिप्टिंग पे काम करिए। जो अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप उन्हें सुनिए, पढ़िए, देखिए कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहे हैं जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, उन इस्तेमाल करिए उन वोकैब को। साथ ही साथ अगर फोटोग्राफी में करियर बनाना चाह रहे हैं, तो आप अगर आपका फ़ोन है, अगर कैमरा है, जिस जो भी है, थोड़ा फ्रेमिंग पे ध्यान दीजिए, एंगल पे ध्यान दीजिए और वही जो एक्सपर्ट है, जिनसे जिनको आप अपना आइडल मानते हैं, उनकी फ़ोटोज़ को देखिए और वो देखिए कि किस तरह से वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं, चाहे वो लाइटिंग हो, कलर हो, इन सब को ध्यान में रखेंगे तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस के माध्यम से आप भी बेहतरीन फोटोग्राफर, पेंटर या फिर सिंगर या किसी भी आर्ट में आप बेहतरीन बन सकते हैं। और हाँ, अगर आपको बोलने का शौक़ है, जैसे हम सभी को है, तो आप अपने घर में बातचीत करिए, लोगों को थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि जब भी बात करें तो प्रोनंसिएशन साफ रखिए। और हाँ, नई नई चीज़ें सीखिए, नई बातें लोगों तक पहुंचाइए, इंटरेस्टिंग तरीके से बात करिए। और हाँ, ज़्यादा सीखने के लिए सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम यूथ वेव, और यूथ वेव पर हम बहुत सारे स्किल्स की बात कर रहे हैं जिनमें बेसिकली हम आर्ट और कल्चर, फोटोग्राफी, डांस, इन सब की बातचीत कर रहे हैं। और दोस्तों हमने बात की थी कि अगर आप को थोड़ा बहुत शौक है इन सब चीज़ का तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हैं, और साथ ही साथ थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर मौका मिले तो किसी वर्कशॉप्स को ज्वाइन करिए। किसी वर्कशॉप को ज्वाइन करने से क्या होता है ना कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होती है। बेसिक सीखने के बाद आप वर्कशॉप में जा सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारी समर वर्कशॉप चलने वाली हैं, एक्टिंग की, थिएटर की, डांस की, पेंटिंग की, फोटोग्राफी की, क्योंकि वो हॉबी बेस होती हैं। और साथ ही साथ वर्कशॉप के साथ ही साथ आप बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं, उनमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे आप और ज़्यादा सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं, क्योंकि लर्निंग है ना सिर्फ किताबों से नहीं मिलती है, एक्सपीरियंस से भी मिलती है। एक और ज़रूरी बात कि अपने वर्क को शेयर करिए। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने काम को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे हैशटैग का इस्तेमाल करिए, और वो उससे क्या होगा कि आपके का आपका काम बहुत दूर तक पहुंचेगा, लोग उसे देखेंगे, उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और दोस्तों आर्ट और कल्चर सिर्फ स्किल नहीं, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी रूट्स में है। और जब हम अपनी किसी आर्ट फॉर्म को सीखते हैं तो आप उसे सिर्फ सीखते नहीं, अपने कल्चर को भी सीखते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: ए आजा,

मेरी गली, कभी आना तू मेरी गली, समझ क्या।

और दोस्तों ये पलाश सेन का गाना आपको जरूर याद होगा, बहुत ही फेमस गाना था और बड़ा ही मजेदार है, मुझे तो बहुत पसंद है। और हम यूथ वेव में अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। दोस्तों एक बात याद रखिए कि छोटी सी बात है कि ये परफेक्ट बनने से पहले शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव स्पार्क है तो उसे दबाकर मत रखिए, उसे एक्सप्लोर करिए, नर्चर करिए और दुनिया के सामने लाइए। मैं हूँ आपका अपना दोस्त, अब इजाज़त ले रहा हूँ आज के प्रोग्राम यूथ वेव से। आपको न्यूज ब्रेक के उस पार हम फिर से मिलेंगे। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। होमोर्ज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और चार अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पास से गुजर रहे एक जहाज ने चालक दल के नौका में सवार लोगों को बचा लिया है। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वो सुरक्षित हैं। सूत्रों ने बताया कि आग लगने के कारण का पता लगाया नहीं जा सका है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक से संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्यपाल आरएन रवि ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और मंच पर उन्हें अंगवस्त्र पहनाया। उत्तर प्रदेश सरकार जनगणना 2027 को अधिक पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और सटीक बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण का औपचारिक शुभारंभ किया। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए जनगणना 2027 के अंतर्गत एक स्वगणना सत्र आयोजित किया गया, जिसमें कई मंत्रियों और सांसदों ने अपनी स्वगणना पूरी की। स्वगणना के व्यापक प्रचार प्रसार और प्रसार के लिए सरकार राज्य में जागरूकता अभियान चला रही है और इसके लिए सहायता केंद्र और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के होम गार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कौशाम्बी में 284.46 लाख की लागत से बनने वाले जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। जवानों के हित में विभिन्न प्रकार के भत्तों को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी दो दिनों में मौसम साफ रहेगा। कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी दौर शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति, एक विशेष कार्यक्रम।
1: विशेष कार्यक्रम। विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार है आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
2: देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना दो चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
3: धन्यवाद ओम जी।
2: उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है?
3: उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं।

0: और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का, उसका कार्य संपन्न किया जाना है। और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए। और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। तो इस बार स्वगणना की भी सुविधा है पूरे देश में। 7 मई से हमारे यहाँ स्वगणना की सुविधा लागू है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर जो हमारा जनगणना का तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए, जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं, वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है। और उसको एक यूनिक कोड, उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद, आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध है उस समय भी। आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें। आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वगणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दे।
1: गलत और फर्जी जानकारी को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? और मान लीजिए किसी से कुछ गलत जानकारी दे दी गई, तो उसको सुधारने का क्या ऑप्शन होता है?
0: सेंसस में हम गलत और सही के अर्थ पर नहीं जाते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो परिवार हमें बता रहा है वो सही बता रहा है, तो हम उसको कभी प्रूव करने को नहीं कहते हैं। और सेंसस वन टाइम प्रोसीजर है। एक बार आपने अपना रिस्पांस फ्रीज करा दिया, आपने जो भी उत्तर दिया उसको एक बार प्रश्नावली में भर लिया गया, तो वो प्रश्नावली फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप बाद में जाकर अपने किसी आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं हमारे लिए वही सच। तो हम सही और गलत के मानक पे नहीं जाते हैं।
1: जी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में जनगणना की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखती हैं आप?
0: उत्तर प्रदेश बहुत व्यापक हमारा प्रदेश है, बहुत अधिक हमारी जनसंख्या भी है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो पूरा देश को लगता है और उत्तर प्रदेश में हमारे सामने है, वो है कवरेज, कि इतने अधिक क्षेत्रफल में प्रत्येक घर तक पहुंच पाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे। इसके लिए जिला प्रशासन के सामने हमारे चार्ज ऑफिसर जो तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी, और हमारे सामने भी निदेशालय के रूप में सबसे बड़ी जो पहली चुनौती है वो है कवरेज। फिर दूसरी चुनौती आती है कि आपको 5.5 लाख कार्मिक चाहिए, और ये एक दिन की ड्यूटी नहीं है या 2 दिन की ड्यूटी नहीं है इलेक्शन की तरह, ये एक 30 दिन की प्रक्रिया है और आपकी ट्रेनिंग भी 3 दिन की होती है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो जो कार्मिक हो कम से कम वो मनोयोग के साथ पूरा लगा रहे इस ड्यूटी में और उसको अच्छे से कंप्लीट करे। तीसरी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश का जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है, और शहरी क्षेत्र की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों से एकदम अलग होती है। शहरी क्षेत्र की समस्याएं, जैसे मैं एक बताना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग, और वो पूरा दिन घर पे नहीं रहते हैं, और एन्यूमरेटर आया, वो बार बार आया अपने 1 माह के अवधि के दौरान, और आप उसको घर पर नहीं मिले, और फिर बाद में शिकायत भी होती है कि हमारे यहाँ एन्यूमरेटर नहीं आया। ये हमारी मुख्य कुछ चुनौतियां। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं स्वगणना का भी प्राविधान किया गया है कि आप घर से कम डेटा भर दें और एक एन्यूमरेटर का आपके पास लोकल एरिया में जो भी उसका फोन नंबर प्राप्त कर लें, या जो भी आप उससे एक समय पर मिलकर उसको कम से कम अपनी प्रश्नावली कंप्लीट करा दें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे बड़ी चुनौती है कवरेज, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल बट हर व्यक्ति तक पहुंचना, हर स्थान तक पहुंचना। बट मुझे पूरी आशा है इस बार जिस प्रकार की गहन तैयारी हम लोगों के जिलाधिकारियों ने की है, उसके बाद ये चुनौती नहीं रहनी चाहिए।
1: क्या जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है और इसके कानूनी पहलू क्या है?
0: बिल्कुल, जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है। एक अपील भी जारी की गई है प्रदेश सरकार द्वारा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जब प्रगणक आपके घर आता है उसको ये वैधानिक अधिकार है कि वो आपके घर आए और वो आपसे प्रश्न पूछे, और आपका ये वैधानिक दायित्व है कि आप उसको सही उत्तर दें। ये सभी कुछ हमारा जो सेंसस एक्ट 1948 है उसमें निर्धारित है कि वो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आपके घर आएगा, आप उसको मना नहीं करेंगे और आप उसको उत्तर देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जनगणना ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है, और ये भी अपेक्षित है कि प्रत्येक व्यक्ति को सही उत्तर देने हैं।
1: अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कोई कानून भी है जिसमें कुछ ये कहता है कि नहीं, इनको पार्टिसिपेट करना ही है?
0: सेंसस एक्ट 1948 में ये निर्धारित है कि प्रगणक आपके घर आएगा और आप उसको उत्तर देंगे। यदि आप नहीं देते हैं तो आप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।
1: आम जनता को जनगणना में भाग लेने के लिए किस तरह से जागरूक किया जा रहा है?
0: वर्तमान में तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े, क्योंकि घर घर तक ये बात पहुंचानी है। हमारे पोस्टर, बैनर, टीवी कैंपेन ये सब तो चल ही रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी बार बार हमारा एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा कि आपकी ये तिथियां हैं। बहुत सारे हो सकता है जनप्रतिनिधि भी अपील करें, बट घर घर तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंचने की आवश्यकता है। तो हमने जैसे बताया प्रयागराज में उन्होंने कूड़ा गाड़ी के माध्यम से अनाउंस करवाया। हमारा ये भी प्लान है कि शहरों में RWA के माध्यम से, क्योंकि RWA सभी जगह जहां पे जो

0: रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से जो पढ़ी लिखी जनता है उन तक ये बात पहुंचाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये कार्य मुख्य विकास अधिकारी को दिया है कि वो जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के प्रधान के माध्यम से ये अपील जारी कराएं और ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक घर तक हमारा प्रगणक पहुंचे और प्रत्येक घर उसको उत्तर दे। तो हमारा दो स्तर का कैंपेन है, एक रूरल कैंपेन जो कि प्रधानों के माध्यम से और ग्रामीण जो हमारे कार्मिक तैनात होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके माध्यम से होगा, और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि चुनौती अधिक होती है तो मीडिया कैंपेन तो है ही, उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि स्वयंगणना अधिक से अधिक लोग करें क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास बहुत बार समय नहीं होता कि वो क्वेश्चनेयर भरने के लिए आधा घंटा दे पाए, तो स्वयंगणना का विकल्प यूज कर सकते हैं और अपने एन्यूमरेटर को अपना आईडी शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा, नगर निगमों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी कॉलोनीज में जब हमारी जनगणना चलेगी तो बार बार अनाउंसमेंट कराई जाएगी, वहां के एन्यूमरेटर का नंबर शेयर किया जाएगा कि यदि कोई घर किसी भी कारण से छूट जाता है पहले 10-15 दिन में तो वो जरूर से अपने प्रगणक से संपर्क स्थापित करके अपनी प्रश्नावली कंप्लीट कर ले।
1: निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच ओम जी।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम।
4: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
5: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
6: धड़कता है जो हर दिल में
7: सुबह 6 से रात 12 बजे तक
8: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
9: धड़कन लखनऊ की।
10: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
11: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
10: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
12: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
13: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
14: स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो,
15: धड़कन लखनऊ की।
3: जय दोस्तों, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की 100.7 FM रेनबो पर। शाम के 5:13 हुए हैं, विनय आपके साथ है और शुरू हो चुका है FM टॉप 10, जहां हर बीट में है एनर्जी, हर सॉन्ग में एक स्टोरी। और आज हम लेकर आए हैं सन 2006 के सुपरहिट गाने और उसका काउंटडाउन। तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस म्यूजिकल जर्नी को। और गाने 10 से लेकर 1 तक हम आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, समय थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, तो पहले गाने की थोड़ी सी झलक तो बनती है।

दोस्तों ये है कॉर्पोरेट फिल्म का गाना, जो फिल्म 7 जुलाई 2006 को रिलीज हुई थी, और ओ सिकंदर ये गाना जो बहुत ही बेहतरीन गाना है और बहुत ही बेहतरीन आवाज़ कैलाश खेर जी की आवाज़ है। ये सिर्फ गाना नहीं बल्कि ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया है। कभी गिर कर भी मुस्कुराना सिखाता है, जो जो भी हो खुद पर भरोसा रखना है ये सिखाता है। तो दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर।

और आइए अब चलते हैं गाना नंबर 9 की ओर, जो अगेन अब बहुत ही बेहतरीन गाना है और ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है। जय दोस्तों, 10 नवंबर 2006 को फिल्म रिलीज हुई थी विवाह, मुझे हक है, ये है गाना नंबर 9। प्यार में सिंपलिसिटी कितनी खूबसूरत होती है, गाना हमें एहसास कराता है, वो छोटे छोटे वादे, वो हल्की सी मुस्कान, अगर आपके लाइफ में कोई भी स्पेशल है ना तो उसे एक प्यारा सा हक करिए या फिर एक प्यारा सा मैसेज तो भेज ही सकते हैं। क्यों?

और दोस्तों श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज में ये बेहतरीन ट्रैक आप सुन रहे थे 100.7 FM रेनबो पर। और अब वक्त है गाना नंबर 8 का। दोस्तों लगे रहो मुन्ना भाई, 1 सितंबर सन 2006 को रिलीज हुई ये फिल्म और ये गाना पल पल पल पल हर पल को खास बनाने का मैसेज देता है ये गाना। ये याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि फील करने के लिए है। कल किसने देखा है, आज है, आज जी लो भाई।

दोस्तों, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे गाना नंबर 8 और अब वक्त है गाना नंबर 7 का। थोड़ा ग्लैमर, थोड़ी मिस्ट्री और ढेर सारे स्टाइल। दोस्तों, ये गाना कहता है कि आज की रात बस जी लो बिना किसी टेंशन के। कभी कभी खुद को ब्रेक देना भी जरूरी है और डांस भी करना जरूरी है। ये डॉन फिल्म का गाना आज की रात 20 अक्टूबर सन 2006 को ये फिल्म रिलीज हुई और आज की काउंटडाउन में ये है गाना नंबर 7।

और वैसे रात नहीं हुई है जी, डॉन फिल्म का ये गाना जो आज की रात आप सुन रहे हैं, रात होने वाली है, अभी तो उजाला है लेकिन अभी आप सुन रहे हैं FM टॉप 10। तो 2006 में ये गाना टॉप पर बना हुआ था और बेहतरीन व्यू बटोर रहा था, फिल्म भी सुपरहिट थी। और गाना नंबर 6 तैयार है ओमकारा का बीड़ी जलेले। 28 जुलाई सन 2006 को ओमकारा फिल्म रिलीज हुई थी। देसी स्वैग और पावरफुल बीट है ये गाने में, अलग तरह का अंदाज है इस गाने का, और जब मूड थोड़ा लो हो तो बस ये गाना प्ले करिए, आप खुद ब खुद डांस करने लगेंगे और एक अलग सी एनर्जी आ जाएगी।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
3: और दोस्तों धूम 2 जो कि 24 नवंबर सन 2006 को रिलीज हुई, क्रेजी किया रे ये गाना नंबर 5 है। नाम ही काफी है क्रेजी किया रे। ये गाना आपको डांस फ्लोर पर खींच तो लाएगा ही, जिंदगी में थोड़ा क्रेजी होना जरूरी है। फन करिए, एंजॉय करिए।

crazy. जी crazy, ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट रहा था उस वक्त, और सुनील चौहान की बेहतरीन आवाज में ये गाना आपने सुना, जो कि है गाना नंबर 5। और अब आते हैं चौथे नंबर पर। जी हाँ, ऋतिक रोशन क्रिश, जो कि 23 जून 2006 को रिलीज हुई थी, दिल ना दिया। सॉन्ग की बीट्स पावरफुल फील है और एनर्जी से भरा हुआ ये गाना, और हाँ, लाइफ में चैलेंजेस आए तो भी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि नेवर एवर गिव अप।

भैया कुणाल गांजा वाला की बेहतरीन आवाज में आप ये सुन रहे थे गाना नंबर 4। ऋतिक रोशन का बेहतरीन डांस आपने इस गाने में जरूर देखा है। और अब आ गया है गाना नंबर 3। जी हाँ, मितवा कभी अलविदा ना कहना का ये बेहतरीन ट्रैक। ये गाना दिल की गहराइयों से बात करता है, लव इमोशंस और फीलिंग का परफेक्ट ब्लेंड। कभी कभी दिल की सुनना भी जरूरी है क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता।

और अब आगे है गाना नंबर दो। जी हाँ, ये बेहतरीन आवाज़ आपके कानों तक ज़रूर पड़ गई है। फना फिल्म जो कि 26 मई सन 2006 को रिलीज़ हुई और ये बेहतरीन फिल्म है। इसमें आप देखेंगे काजोल और आमिर की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगी है, रोमांस का असली जादू। ये गाना सुनते ही दिल में एक अलग सी फीलिंग सी जाग जाती है। अगर किसी को आप बहुत प्यार करते हैं तो उसे अपने प्यार को जताना है तो बस आप ये गाना उस तक पहुंचा दीजिए, आपकी फीलिंग अपने आप पहुंच जाएंगी। फिलहाल ये गाना आप तक पहुंच रहा है 100.7 FM रेनबो के थ्रू।

दोस्तों अब वक्त हो चला है गाना नंबर एक का। सन 2006 में एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई थी और वो फिल्म थी रंग दे बसंती। जी एक बार फिर से आमिर खान रूबरू। ये गाना रंग दे बसंती 26 जनवरी सन 2006 को रिलीज हुई थी और ये है नंबर एक गाना रूबरू। एक ऐसा गाना जो हो पॉजिटिविटी और नई शुरुआत का सिंबल। आंखों के सामने जो है उसे पहचानो, खुद को पहचानो। ये गाना हमें यही सिखाता है, मौका देता है और किस तरह दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती निभाइए। ये जो बेहतरीन गाना, इसे प्रसून जोशी ने अपनी कलम से लिखा है। म्यूजिक है एआर रहमान का। आइए हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं इस बेहतरीन गाने को जो है 2006 का गाना नंबर एक।

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय

लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। कई जिलों में जिलाधिकारी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है तथा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान लोक अदालत में पारिवारिक और व्यवहारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रति कर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उन्नाव में स्वगणना जन जागरूकता अभियान एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बिजनौर जिले में मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। जिला जनसंख्या अधिकारी ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा रही है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आधुनिक टेक्नोलॉजी और संगठित दुग्ध व्यापार के जरिए सीधे बाजार से जुड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान गढ़ रही हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं और प्रशिक्षण मॉडल से अवध क्षेत्र में दुग्ध कारोबार से 18,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मोबाइल ऐप और डिजिटल सिस्टम से महिलाएं गाँव से ही सीधे बाजार व्यवस्था से जुड़ रही हैं। बीते 3 वर्षों में 1,25,000 से अधिक महिला सदस्य इस नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में मिर्जापुर के महरच्छ गांव में आज संतुलित उर्वरक, उचित प्रबंधन, स्वस्थ मिट्टी, समृद्ध किसान विषय पर किसान जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य, संतुलित पोषण प्रबंधन तथा जैविक एवं टिकाऊ खेती के प्रति जागरूक करना था। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रदेश के टॉप 10 न्यूज के तहत प्रस्तुत किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुबह की खूबसूरत शुरुआत। सुकून से भरा दोपहर,
1: पुरानी जींस और गिटार।
0: शाम के ट्रैफिक की फिर वही जद्दोजहद। शहर के शोरगुल में खो जाता ये सफर
2: है, हैरते आशिके जगा।
0: फिर रात को फुर्सत के वो पल,
3: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा,
0: यानी आपके हर वक्त का हम सफर। तो सुनते रहिए FM रेनबो 100.7 MHz। FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल, एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

दोस्तों 6:06 हो चले हैं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो आज विनय के साथ। शाम अवध का शुरुआत हो चुकी है और ये जो सेल्फी ले ले हमने गाना बजाया जय जय बजरंगबली, जेठ का महीना चल रहा है और हम हर मंगलवार को अपने बजरंगबली जी की अर्चना प्रार्थना करते हैं और शनिवार को भी, मंदिरों में भीड़ तो है ही, तो इस पूरे जेठ के महीने में हर शनिवार हर मंगलवार बस जय जय बजरंगबली। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि बजरंगबली हम सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमको स्वस्थ रखें, हमारी रक्षा करते रहें। जय जय बजरंगबली।

और हमने सेल्फी ले भी ली है। जी हाँ, हमने तो खटखटाक से सेल्फी ले ली है, क्योंकि हमें तो भाई हमने बजरंगली का नाम लिया और सेल्फी ले ली। और आप लोग भी भाई अगर मंदिर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सेल्फी लेना मत भूलिए, क्योंकि ये जब हम फोटो खींचते हैं ना तो ये हमारी मेमोरीज़ में शामिल हो जाती हैं। और जब भी आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं तो वहाँ पर हम बड़ी सारी फ़ोटो वीडियोज़ बनाते हैं, और 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद जब उन्हें देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और हमने अभी बजरंगबली का नाम लिया, और देखो गर्मियां चल रही हैं ना, और गर्मियों में बड़े सारे लोग घूमने का प्लान करते हैं, बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप कैलाश मानसरोवर घूमने के बारे में सोच रहे हैं, उसका प्लान बना रहे हैं, तो विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। जी हाँ, ये न्यूज़ आपके लिए बेहतर हो सकती है अगर आप ऐसा प्लान कर रहे थे। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग जा सकते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर, उसके लिए 1 जनवरी सन 2026 को जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है मिनिमम, और मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु के इंडियन सिटीज़न ही इसमें पात्र हैं। और किस तरह से आपका चयन होगा, किस तरह सेलेक्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन ड्रॉ होगा, जो लोग भी आवेदन करेंगे उनका ऑनलाइन ड्रॉ होगा और उसके तहत ही आप चुने जाएंगे। और हाँ, इसमें हेल्थ चेकअप अनिवार्य किया गया, क्योंकि थोड़ी टफ होती है ना। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए और पूरी तरह से आप हर पहलू को जानने के लिए आप एक वेबसाइट सुन लें, उस पर जाकर आप अच्छे से देख लें कि आखिर कौन सी टर्म एंड कंडीशन है जिन्हें आपको पूरा करना है, कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या है लास्ट डेट। और वो वेबसाइट है kmy.gov.in। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं kmy.gov.in। तो अगर आप चाहें तो आप इस वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी लीजिए और इस गर्मी में आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके घूम कर आइए।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से
3: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
2: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
3: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
2: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
3: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
2: fmrainbowhelpline@gmail.com।
3: याद रखिए हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
4: या दोस्तों 100.7 FM रेनबो पर रविवार बड़ा ही स्पेशल होता है, और जैसा अभी शिवम और स्वेच्छा आपसे कह रहे थे कि अगर आप अपनी बागवानी की कोई भी समस्या जानना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट फ़ोन पर अवेलेबल रहते हैं, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। बड़ी ही सिंपल सी मेल आईडी है fmrainbowhelpline@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप अपने सवाल हमको अभी भी भेज सकते हैं, और इस मेल आईडी पर जो भी सवाल बागवानी से जुड़े हुए, आप अपने घर में अगर फल फूल या कोई भी समस्या हो रही है, कुछ जानना चाह रहे हैं पौधों के बारे में, सब्जियों के बारे में, अगर लगाने में समस्या आ रही है, कैसी खाद इस्तेमाल करें, ये सब इनमें से कुछ भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, और वो हमारे साथ अवेलेबल रहते हैं फ़ोन पर। आप हमें मेल करें fmrainbowhelpline@gmail.com पर। साथ ही साथ संडे को हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम, जो बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है, हम आपकी सेहत का पूरा

ख्याल रखते हैं, इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद रहेंगे दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में डॉक्टर मोहम्मद तौफीक खान जी, जो कि MBBS MD है मेडिसिन विभाग से। और कल का विषय है बहुत ज़रूरी, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, बड़ी कॉमन समस्या हो गई है। तो कल का विषय यही है कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो उसका आप सीधे हमारे डॉक्टर साहब से जवाब पा सकते हैं। ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है, हमारे डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद रहेंगे, उनसे आप सीधे सवाल करें। और सवाल करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं 0522-2238-852 और दूसरा नंबर है 0522-2238-845। हाँ, अगर आपका फ़ोन नहीं लगता है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं 12 बजे से एक बजे के बीच में। और मेल आईडी आप जानते हैं fmakashwani@gmail.com। तो इस मेल आईडी पर आप सवाल भी पूछ सकते हैं। तो ये दो बेहतरीन प्रोग्राम जो आपके लिए हैं और आपको इनमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। और फिलहाल चल रहा है शाम अवध, शाम के 6:22 हुए हैं, बड़े सारे लोग अपने घर जा रहे होंगे, कई लोग घर जाने की तैयारी कर रहे होंगे और कई अपने घर में चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर शाम अवध और आज आपका दोस्त, आपका अपना प्यारा सा दोस्त विनय आपके साथ है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कल है संडे और कल से यानी कि संडे से डाक विभाग लखनऊ मुख्यालय अब रविवार को भी आधार के काम की सेवा शुरू करने जा रहा है। ये गुड न्यूज़ है। अगर आप वर्किंग डे में आधार का जो चेंजेस नहीं करा पा रहे थे, अपडेट नहीं करा पा रहे थे, तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। इसके लिए पहले चरण में हमारे लखनऊ शहर के GPO और चौक के प्रधान डाकघर के साथ ही साथ 8 डाकघरों को चुना गया है, जो संडे को भी खुले रहेंगे आधार के कामों के लिए। और GPO चौक प्रधान डाकघर के अलावा इसमें इंदिरा नगर डाकघर, गोमती नगर डाकघर, अलीगंज डाकघर, राजेंद्र नगर डाकघर और साथ ही साथ आलमबाग डाकघर और आवास विकास कॉलोनी में जो उपलब्ध डाकघर है वहाँ पर ये सुविधा है। और सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आप संडेस को जाकर यहाँ पर काम कर सकते हैं, अपने आधार का अपडेशन करवा सकते हैं। तो ये बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। और अब आता है एक बेहतरीन गाना। आपने एक फिल्म देखी होगी, आपको बिल्कुल याद होगी ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी की मुझसे दोस्ती करोगी। भाई मुझसे दोस्ती करोगी का ये गाना मुझे तो बहुत पसंद आया, होप आप सभी को भी बहुत पसंद होगा।

107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शाम अवध। शाम के 6:37 हो रहे हैं। और दोस्तों, एक और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। राजधानी, हमारी राजधानी लखनऊ के राजकीय और जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद की ओर से साल 2026-27 के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसका आयोजन की जो शुरुआत है जुलाई से ब्लॉक स्तर पर होगी। विज्ञान और दोस्तों, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं 16 जुलाई से 31 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। इसके बाद सितंबर से 31 अक्टूबर तक जिला स्तर और साथ ही साथ नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक राज्य स्तर और दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 तक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी। और दोस्तों, इस साल बाल विज्ञान कांग्रेस का जो विषय है वो है साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। जी हाँ, एक बार फिर से बताएं, साइंस एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। और इसका जो उद्देश्य है वो 10 साल से लेकर 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को विकसित करना है और उसे बढ़ाना भी है। तो अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप, एक वेबसाइट है उस पर जाकर डिटेल में देखें। वेबसाइट है iscos.org/csc2026। फिर से रिपीट कर दे, iscos.org/csc2026। यहाँ पर जाकर एक फॉर्म है, उसे भरना है और आप इसमें, आपके बच्चे को आप इसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। वैसे भी आप जितने अपने बच्चे को इन सब एक्टिविटीज़ में डालेंगे उतना ही उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

और अपन तो पूरी तरह तेरा है। जी हाँ, बड़ी अलग सी भाषा है, लेकिन सही मायने में हम तो आप ही के हैं। देखिए, लखनऊ के हैं तो हम तो आप ही के हैं, अपन ये सब भाषा हम नहीं बोल सकते। दोस्तों, आप सुन रहे हैं शाम अवध, 6:49 हो रहे हैं, विनय आपके साथ है। और आपको बताते चले दोस्तों कि राज्य संग्रहालय पर मौजूद जो स्थित विदेशी मूर्ति कला गैलरी पर्यटकों को खूब लुभा रही है, बहुत ही अपनी ओर खींच रही है। मैं फिर से बताऊं कि राज्य संग्रहालय स्थित विदेशी मूर्ति कला गैलरी पर्यटकों को खूब अपनी ओर खींच रही है। यहाँ रखी हुई दुर्लभ मूर्तियाँ और वस्तुएं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक इतिहास के से साक्षात करवाते हैं। जी हाँ, राज्य संग्रहालय में विदेशी मूर्ति कला गैलरी की मूर्तियों को स्थानांतरित कर संग्रहालय परिसर में रखा गया है। संग्रहालय के चौथे पार्श्व गैलरियों को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, अवध गैलरी और ओल्ड कोठी में कैफेटेरिया बनाए गए हैं, तो आप एक बार ज़रूर जाइए, देखिए राज्य संग्रहालय में ये नई चीज़ आई है जहाँ पर विदेशी मूर्ति गैलरी बनाई गई है, तो इसका आप मज़ा ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अभी मौसम थोड़ा सही है, थोड़े दिनों बाद जैसा कि मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि थोड़ा सा बदल सकता है, तो अभी आप, कल संडे है तो कल इसका मज़ा ले सकते हैं। फिलहाल आप ये ट्रैक एंजॉय करिए हमारे साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

दोस्तों इसी गीत के साथ शामे अवध से इजाजत दीजिए अपने दोस्त विनय को। न्यूज ब्रेक के उस पार आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर हाजिर होंगे। सुनते रहिए 100.7 एफएम रेनबो।

नमस्कार, आप सुनिए प्रदेश के टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। प्रदेश सरकार ने सम्मानजनक करियर बनाने के लिए खिलाड़ियों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्तियां दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित सीएम भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम ने कहा, शुभेंदु अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 624 पदों के लिए आयोजित 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।

प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्व गणना की प्रक्रिया जारी है। इसको लेकर विभिन्न जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मिर्जापुर, उन्नाव, बिजनौर सहित कई जिलों में लोगों को स्व जनगणना के लिए प्रेरित किया गया है। प्रदेश के होम गार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कौशाम्बी में जिला कमांडेड होम गार्ड भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने होम गार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक काम किए हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता मामले सहित विभिन्न वादों का निस्तारण किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत तैयार हुए भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया संदेश में महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने भीषण गर्मी में प्रदेशवासियों को तय शेड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रादेशिक समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

0: ये दोस्तों 100.7 FM रेनबो पर 7:04 हुए, आप सुन रहे हैं आज विनय को। हेलो FM प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आप जानते हैं हेलो FM में हम आपके पसंदीदा गाने सुनाते हैं और आपसे बात भी करते हैं। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, दो मैजिकल टेलीफोन नंबर हैं, 0522-2238-652 और दूसरा नंबर है 0522-2238-845। हमारे बड़े सारे लोग अब फोन करना शुरू कर चुके हैं, बहुत पहले से फोन कर रहे हैं और जो हमारी फोन लाइनें ब्लिंक कर रही है और हमारे पहले लकी लिसनर का फोन भी लग गया। ये देखते हैं कौन है, जानते हैं कौन है हमारे साथ है। हेलो,
1: हेलो सर,
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? जी ममता जी बोल रही है, संडीला लखनऊ, संडीला सीतापुर से, हरदोई से। जी जी जी जी, संडीला के लड्डू फेमस है जी। तो आप हमें ये बताइए कि आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं सारे?
1: जी सर।
0: आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है मुझे ये बताइए, पूरे दिन भर में?
1: सर सबसे पहले गुड मॉर्निंग,
0: क्या बात है, यानी आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं ये प्रूफ कर दिया आपने, क्योंकि आपने बड़े सारे ऐसे प्रोग्राम का जिक्र किया जो सुबह से लेकर रात तक बजते हैं, उसमें रेनबो कैफे है, गुड मॉर्निंग लखनऊ और बहुत सारे। आप मुझे बताइए कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं आप?
1: सर मुझे सुनना,
0: तो किसे सुनाना चाह रहे हैं आप ये गाना?
1: सबसे पहले आपको
0: थैंक यू, चलिए चलिए आइए हम सब मिलकर ये गाना एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: ओके बाय
0: बाय बाय बाय।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: दोस्तों 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं हेलो FM और हमारे बहुत सारे लिसनर कॉल कर रहे हैं और एक लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: जी नमस्ते।
2: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैं ग्राम बसिल नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
2: उज्जैन महाकाल की नगरी?
3: जी बिल्कुल, जय श्री महाकाल।
2: जय श्री महाकाल। कैसे है वहाँ, कैसे वेदर है?
3: जी बहुत ही अच्छे हैं। अभी मतलब आपको बताऊं, मौसम तो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, काफी हवाएं भी चली थी अभी तेज, और ऐसे मौसम भी लग रहा है कि पानी आने जैसा हो रहा है।
2: अच्छा, तो देखिए अभी तो बेमौसम बारिश हो रही है, लेकिन अगर बरसात के मौसम में आपको क्या लगता है कि बरसात का मौसम आपको बढ़िया लगता है कि नहीं?
3: जी बिल्कुल, सबसे अच्छा मौसम मुझे बरसात का ही लगता है।
2: अच्छा, ऐसा क्यों भाई?
3: जैसे आपको बताऊं, जैसे एकदम से पानी चढ़ के आता है, बादल आते हैं, बादल छाते हैं, और मतलब ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं आती है और एकदम से बरसात शुरू हो जाती है। उसके बाद में जब इंद्रधनुष निकलता है तो ये जब नजारा होता है ना, तब देखने लायक होता है।
2: आप ये बताइए कि बरसात के मौसम भीगते हैं, नहाते हैं?
3: जी बिल्कुल, हम खेत में काम करने जाते हैं ना, तो जब अगर एकदम से बारिश आ जाती है तो भीग कर ही आते हैं खेत से।
2: नहीं, वो तो एकदम से बारिश आ जाती है, कभी नहाने के लिए निकले घर से कि चलो बारिश हो रही है नहाते हैं आज?
3: जी ऐसा तो होता है, लेकिन बट बहुत कम होता है।
2: अच्छा,
3: जैसे क्या होता है, दिन का समय होता है ना, तो वैसे तो हम बाहर ही रहते हैं दिन में, लेकिन जब अगर ऐसे शाम के समय बरसात आती है तो फिर नहाने का मन तो करता ही करता है।
2: चलिए, कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके मुझे। आप मुझे ये बताइए कि गाना कौन सा सुनना चाह रहे हैं आप?
3: जी बताऊं, अब मदर्स डे है ना आज,
2: कल
3: तो
2: है
3: उसके, जी हाँ जी सॉरी कल है, तो उसके उपलक्ष्य में मुझे गाना सुनना है बेटा फिल्म का, आज मेरी माँ ने मुझे बेटा कहके बुलाया है, खुशियों का दिन आया है।
2: क्या बात है, और किसे सुनाना चाह रहे हैं आप ये?
3: जी हमारे दोस्त है भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम यादव, आशुतोष अग्निया, संगीता जी, और कानपुर से पूनम जी।
2: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन गाने के लिए और हमारे लिए समय निकालने के लिए।
3: जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
2: मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
3: FM रेनबो का मैं नियमित होता हूँ और कॉल लगा के बात भी करता हूँ, और मतलब यहाँ पे जो जितने भी कॉलर लगाते हैं ना कॉल, उनकी बातें बड़ी अच्छी होती है सभी की।
2: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 100.7 FM रेनबो पर, हमारे टेलीफोन नंबर है 0522-2238-852 और दूसरा नंबर है 0522-2238-845। जिन दोस्तों का कॉल नहीं लग रहा है वो आप मेल भी कर सकते हैं FM रेनबो हेल्प, ये मेल आईडी पर आप हमें कल 9 बजे, हेल्पलाइन नंबर है fmrainbowhelpline@gmail.com, इस पर आप हमें अपने बागवानी से जुड़े बातें भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आईडी है जिस पर आप भेजेंगे वो है fmakashwani@lucknow@gmail.com। आइए गाना एंजॉय करते हैं, आप सुन रहे हैं हेलो FM आज विनय के साथ।

और दोस्तों इसी बीच हमारे पास मेल्स भी आ रहे हैं, अनिल पांडे जी ने हमें मेल किया है और वो हमें एक हिदायत दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए और आपकी इस बात का हम पूरा ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ गुलफ्सा सिद्दीकी ने हमें मेल किया है और वो कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, ये गुलफ्सा सिद्दीकी है संडीला से, हमें ये सुन रही है, साथ ही साथ इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ इन्होंने हमारी तारीफ़ की है कि हम कॉलर से अच्छे से बात कर रहे हैं। वैसे हमारे सारे लिसनर्स ही बड़े अच्छे हैं तो उनसे तो अच्छे से बात करना बनता ही है और बड़े प्यार से बात करें। जैसे उज्जैन से अभी एक साहब ने बात की, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि उनसे हम बात ना करें और हम फ़ोन रखें या गाना बजाएं, सही बताएं। और अब 7:18 हुए हैं, अभी थोड़ी देर में 19 मिनट हो जाएंगे। 7:20 पर हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे अपने लखनऊ केंद्र से और उसके बाद जारी रहेगा हेलो एफएम। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए

0: स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
1: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में पार्टी की पहली सरकार का नेतृत्व किया। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से लिखा कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी बधाई दी। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में आज जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एक कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जनमानस को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर जिले में आज मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। जनगणना के संबंध में जिला जनसंख्या अधिकारी बानिया सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
2: स्वगणना कार्यक्रम है, ये 20 दिवसीय थीम बेस्ड कार्यक्रम है। जो आज का जो दिवस है वो युवा खेल और स्पोर्ट्स मीडिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें आज कलेक्ट्रेट बिजनौर में हमने जनपद बिजनौर के सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए दो दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। बस्ती जिले में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 10 मई को प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित 5 विषयों तथा द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला सहित 4 विषयों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। औरैया में लोक अदालत में 22,000 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
4: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
1: सुल्तानपुर में आयोजित लोक अदालत में किसानों और ऋणदाताओं को भी राहत मिली। दिव्यांग किसान जयप्रकाश सिंह का 2.25

0: लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मात्र 75,000 रुपए में निस्तारित हुआ।
1: हमारा केसीसी का लोन था किसान क्रेडिट कार्ड का, जो कि 2,25,000 रुपए अब तक हो गया था। उसे जज साहब ने 75,000 रुपए में सेटलमेंट किए हैं, जिसमें 25,000 रुपए अभी दिया जा रहा है। 50,000 रुपए के लिए हमको समय मिला है 2 महीने का, हम दे देंगे।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत तैयार हुए भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि भवन का जीर्णोद्धार कराया गया है, इससे विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक और नवाचारी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाकर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। प्रदेश के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कौशाम्बी में महिला थाना के पास जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में सुगमता आएगी तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश के कई जिलों में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फरुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। ITF जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्मकुमार ने आज ITF जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली है। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋभव सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक सम्पन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: चलिया चलिया चलिया, रूह चुरा लूं मैं हूं ऐसी चलिया।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: दोस्तों 100.7 FM रेनबो पर एक बार फिर से आपका दोस्त विनय हाजिर है लेकर प्रोग्राम हेलो FM। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आप हमसे बात करते हैं और हम आपके फेवरेट गाने सुनाते हैं, आपके पसंद के गाने आपको सुनाते हैं। हमारे दो नंबर हैं 0522-2238-852 और दूसरा नंबर है 0522-2238-845। साथ ही साथ हमारे दोस्त हमें मेल भी कर रहे हैं जिनका फ़ोन नहीं लग रहा है, और हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com। हमारी एक प्यारी सी लिसनर बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है?
7: जी मैं निशा अंसारी, जिला बाराबंकी से बोल रही
6: हूं। जी बाराबंकी से निशा अंसारी जी,
7: सर कैसे हैं आप?
6: मैं बहुत जबरदस्त हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
7: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात हो गई और कैसे?
6: हाँ आपने बहुत इंतजार किया हमसे बात करने के लिए।
7: जी हाँ, एक घंटे का
6: अरे वाह, इतना आप हमारे

0: एफएम को प्यार करते हैं
1: जी, हम बहुत चाहते हैं एफएम को।
0: आप हमें ये बताइए कि बाराबंकी में ऐसी कौन सी फेमस जगह है जहां आप बहुत घूमने जाती हैं?
1: अभी तो नहीं गए, लेकिन देवा मेला, देवा शरीफ,
0: देवा शरीफ का मेला जो लगता है देवा में, हाँ वहाँ मैं भी नहीं गया हूँ, मेरा भी बड़ा मन है जाने का।
1: जी हाँ, मैं नहीं गए हैं, दिल करता है जाने का।
0: तो इस बार जब मेला लगेगा तो हम साथ में चलेंगे, क्यों? अरे आपने
1: आप
0: बोला
1: है सर?
0: जी
1: आप है, हम गया है,
0: तो अभी कहाँ मेला लगा है, जब मेला लगेगा तब चलेंगे, अभी कहाँ मेला लगा हुआ?
1: आप वहाँ से आएंगे, हम जाते हैं।
0: वही वही तो हम कह ही रहे हैं, हम लखनऊ से आएंगे, आप बाराबंकी से, और फिर हम साथ में चलेंगे। आप हमें बताइए कि एक बहुत बेहतरीन गाने की फरमाइश आपने की है, वो गाना कौन सा है?
1: मूवी है जानम समझा करो।
0: और बोल है
1: लव हुआ।
0: जी आप हमें बताइए किसे सुनाना चाह रहे हैं गाना जिससे आपको लव हुआ?
1: जी रेडियो को सुनाना चाहते।
0: क्या बात है, वाह वाह, ये अच्छा आपने जवाब दिया कि आप रेडियो से प्यार करती हैं। और किसे सुनाना चाह रहे हैं, नाम को लेना चाह रहे हैं आप?
1: जी हाँ, लेना चाहते आपको, आपकी पूरी टीम को, प्रीति मैम को,
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे नाम लिए और हमें, हमारे सारे जो आरजेस को भी आपने डेडिकेट किया, और प्रीति जी खास आपके लिए भी है ना, तो
1: प्रीति
0: मैम जी,
1: प्रीति मैम आई है क्या?
0: नहीं मतलब हमने ऑन एयर बोल दिया, जरूर सुन रही होंगी वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच इतना समय निकालने के लिए। चलिए हम सब ये गाना एंजॉय करते हैं, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: तो आइए अपने एक दोस्त से हम बात करते हैं, और ये फैज साहब हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी बताइए।
1: सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम। जी सर, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा बाराबंकी से बात कर रहे हैं सर।
0: हाँ हाँ जी जी जी, आपकी दुकान है ना सब्जी और फल की?
1: जी सर, मेरी सब्जी और फल की दुकान है। कई मर्तबा आपको मैंने बुलाया अपने गांव, आप नहीं आए सर, ये बात गलत है।
0: अब दिल से नहीं बुलाया भाई, ऐसे कहते हैं आप सिर्फ।
1: जी नहीं सर, ये मत कहते, मेरे दिल ही से बुलाते हैं सर।
0: चलिए आप हमें ना मेल करिएगा अपना एड्रेस, हम आएंगे आपके, है ना। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ हाँ, आवाज आई, बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं?
1: जी सर, हम गाना सुनना चाहते हैं, फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा, गाने के बोले हैं, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया।
0: क्या बात है, सर? क्या बात है, इसे गा गा के सब्जी बेचते होंगे, है ना आप?
1: जी जी सर।
0: और किसे सुनाना चाह रहे हैं आप?
1: सबसे पहले मेरे क्यूट से प्यारे वाले आरजी विनय भैया हैं, जो इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं उनको।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद में मोहम्मद जावेद अख्तर भाई हैं, मोहम्मद आसिफ भाई हैदराबाद तेलंगाना से हैं, और रिंकी पिंकी हैं, समा परवीना पाएं, गुलाब साहब हैं, साइबा अंसारी हैं, यासर अमीर भाई हैं, तालिब भाई हैं, जमील गुंटी वाले, सुरभी सिंह हैं।
0: देखिए सारे नाम हमने सुने लेकिन ऑन एयर नहीं गए, इतना धीरे आप बोल रहे थे।
1: नहीं सर। हेलो।
0: हाँ हाँ, अब आए आप, पता नहीं फोन से कहाँ चले जा रहे हैं आप।
1: जी नहीं सर, अब आई सर आवाज,
0: आवाज पूरी आ रही है। चलिए हम सब मिलकर ये गाना सुनते हैं। थैंक यू सो मच। जी हाँ,
1: मैं मतलब कुछ लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ सर।
0: हाँ हाँ, नाम सुन लिया मैंने, बहुत सारे रिंकी पिंकी और सबका नाम लिया आपने।
1: जी एक बार फिर ले लो, अगर सब लोग नहीं सुने तो।
0: चलिए ले लीजिए, आपको मौका दिया।
1: सबसे पहले मोहम्मद जावेद अख्तर भाई है, मोहम्मद आसिफ भाई हैदराबाद तेलंगाना से, रिंकी पिंकी, समा परवीना पे, गुलाब साहब भी, सादिया अंसारी, यासिर हमीद भाई है, तालिब भाई है, और बाबू अंसारी भाई है, जमील गुंटी वाले, सुरभी सिंह है सर।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू।

और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन गाना हमें सुनने को मिला और फैज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इतने बेहतरीन गाने के लिए, मुझे भी बहुत पसंद है। अब आइए मेल्स की ओर बढ़ते हैं, हमारे एक प्यारे से लिसनर वेट कर रहे हैं पर मेल्स बहुत सारे हैं, इन्हें पढ़ना तो बनता है। और हमारे वकील अहमद साहब ने हमें मेल किया है, वो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि आवाज़ इन्हें अच्छी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब जी। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि अच्छा, इन्होंने खुदा गवाह वकील अहमद मंसूरी कटरा हथूरी ब्लॉक हरगांव ज़िला सीतापुर और साहिबा अंसारी रज़िया अंसारी परवीन रिंकी पिंकी महक अंसारी सबका नाम लिखा है इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मेल किया और हमने आपका मेल पढ़ दिया है। और साथ ही साथ और इसके बाद हमें मेल आया है, ये है सत्यम पाल जी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, इन्होंने हमें दो मेल भेजे हैं और एक मेल में सिर्फ नाम है, दूसरे में लिखा है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ओके इन्होंने भी हमें एक हिदायत दी है जी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। साथ ही साथ हमें अर्पित शर्मा ने मेल किया है, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, फ़ोन लग नहीं रहा है, सोचा मेल ही कर दूं, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स और मनोरंजन और मज़ेदार होते हैं, साथ ही आपका शानदार एंकरिंग अच्छा ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमें मेल किया है। कुछ इन्होंने नाम भी लिखे हैं, टी आर शर्मा, अर्पित, तोशिका और निर्मला, और फ्रॉम ये शायद कुछ लिखने चाह रहे थे पर वो हो नहीं पाए, लिखा नहीं पूरा। साथ ही साथ एक और बहुत ही प्यारा सा मेल है, ये है अनुष्का गुप्ता, गुड इवनिंग कह रही हैं अनुष्का, ये जलालाबाद यूपी से काफ़ी टाइम बाद मैसेज कर रही हूँ, ऐसा इन्होंने लिखा है और कहती हैं माँ के लिए कुछ संदेश देना चाहती हूँ, आप ज़रूर पढ़िएगा और पूरी फैमिली की तरफ से बहुत सारा प्यार

0: FM रेडियो को, लिखती हैं कि क्या लिखूं मैं माँ पर, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। माँ वो है जिसने मेरे गुनाहों को भी नज़रअंदाज किया, उनसे मिली हर सीख जिंदगी सवार देती है। माँ के सपनों को पूरा करना ही असली जीत है। दुनिया की हर माँ को सलाम, उनका संघर्ष प्यार असीमित है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माँ माँ होती है। मोनू भैया ने हमें मेल किया है, पूछ रहे हैं कैसन है, हम बहुत ज़बरदस्त हैं। इंद्रपाल जी ने भी हमें मेल किया है, फ़ोन नहीं लग रहा है, हमने आपका मेल शामिल कर लिया है। ये हमें ग्राम अमृता सीतापुर से मेल कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमें मोनू सेठ जी ने दूसरा मेल किया है, और अच्छा इन्होंने एक फिल्म का नाम लिखा है। और आइए, आकाश कुमार जी का मेल है। आकाश वर्मा है, ग्राम मुरारपुर रेलवे स्टेशन दरियाबाद ज़िला बाराबंकी से संदेश भेज रहे हैं, हम बहुत बढ़िया हैं। और इन्होंने लिखा है कि कई दिनों बाद ये कार्यक्रम में मैसेज कर रहे हैं, सभी मित्रों के साथ बैठकर कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, और सबको नमस्ते बोल दीजिए, जिसमें मैं कुछ नाम भी लिख रहा हूँ कि उन्हें भी शामिल कर लीजिएगा। नाम कुछ यूँ है कि अर्जुन यादव, अंशु शर्मा, सचिन रावत, सत्यम भास्कर, विकास, सुनील, सभी ये सभी मित्र, अच्छा इन ये सभी मुझे नमस्ते कर रहे हैं, हमने इन्हें नमस्ते कर दिया। और साथ ही साथ इन्होंने गाने की फरमाइश की, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका गाना ले। और रामराज जी ने हमें मेल किया है, श्री गणेशाय नमः, ज़िला रायबरी से मेल कर रहे हैं, और इन्होंने भी कुछ नाम लिखे हैं, राजा राम, राजू भान, पप्पू पासी, मनीष, निर्जा, मिर्ज़ा, इमरान बेग, रिजवान भाई, सबका नाम लिखा है। और अशोक कुमार जी ने हमें मेल किया है, और ये अशोक राज हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं, रायपुर हुडारा मितौली लखीमपुर खीरी से इन्होंने हमें मेल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए। जिशान खान ने गुड इवनिंग कहा है, बोल रहे हैं विनय भाई, आई एम जिशान खान सनीला से, आप प्रोग्राम अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने लिखा है कॉल नहीं लग रही, इसलिए इन्होंने मेल कर दिया है। और हमारे एक लिसनर हैं सत्यम जी, जिन्होंने हमसे बात करने के लिए फ़ोन किया, लेकिन बड़े प्यार से कहा कि हम कल बात कर चुके हैं इसीलिए हम ऑन एयर नहीं होंगे। कैसरगंज बहराइच से इन्होंने हमें मेल किया, इन्होंने फ़ोन किया था, और हमारे एक लिसनर हैं, वेट कर रहे हैं हमारे हमसे बात करने के लिए, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार विनय सर।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से बाबू अंसारी जी बात कर रहे हैं सर।
0: जी बाबू अंसारी जी, कैसे हैं आप?
1: जी सर हम बढ़िया हैं सर, आप कैसे हैं?
0: हम बहुत बढ़िया हैं, और हमने आपसे पूछा ना कि आपने एक गाना फरमाइश की है, दिल दीवाना ढूंढता है एक हसीन लड़की।
1: जी कुमार सानू जी की आवाज में और अलका याग्निक की
0: आवाज। क्या बात है, यस यस, आपको यानी पसंद है बहुत।
1: जी जी जी
0: हाँ, तो आप भी ढूंढ रहे हैं आई थिंक किसी को। अब मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाने के लिए कहा जाए, मान लेते हैं कि आपको हम एक टिकट देते हैं स्विट्जरलैंड की, मान लेते हैं दो टिकट देंगे, है ना, तो आप किसे ले जाएंगे?
1: किसे ले जाएंगे सर?
0: अपने साथ
1: सर मैं जो है अपने चचा को ले जाऊंगा साथ में अपने।
0: अच्छा चचा, चचा जी का क्या नाम है?
1: मुनान अंसारी नाम है सर।
0: तो चचा जी को
1: के साथ मैं जाता हूँ जगह घूमने के लिए।
0: क्या बात है, चचा भतीजे की जोड़ी यानी हिट है।
1: जी
0: चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बात है कि ऐसी भी एक जोड़ी है जो साथ घूमने निकलती है। अब मुझे ये बताइए कि जो गाना आप पहले तो अपने चचा जी को सुनाना चाहते हैं आई एम श्योर, उसके बाद कुछ नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी सर।
0: जी बताइए।
1: सबसे पहले सर आपको डेडिकेट करते हैं।
0: थैंक यू।
1: और मोहम्मद फैज अंसारी रामपुर कटरा से, कुलदीप गुप्ता जी उदोली बाराबंकी से, सुरभि सिंह हैं सीतापुर से, और श्री प्रकाश तिवारी जी हरिकेर जी हैं, और साहिबा अंसारी जी हैं, और समा परवीन अंसारी जी हैं।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: सर। जरा से हमारे भाई फुरकान से बात कर लीजिए जरा से।
0: अब हमने गाना बजा दिया है, जल्दी से बताइए। हेलो कैसे हैं आप?
2: नमस्ते।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है।
0: चलिए आपसे
2: बहुत मस्त चल रहा है।
0: चलिए थैंक यू सो मच, आइए हम सब मिलकर ये गाना सुनते हैं एक रिश्ता फिल्म से। थैंक यू।

0: और दोस्तों घड़ी बहुत तेजी से आगे भाग रही है, 7:54 हो चले हैं। आइए हम कुछ मेल्स पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे मेल्स हैं। अहमद नवाब जी ने हमें गुड इवनिंग कहा है संडीला से, ये हमें मेल करती हैं और ये लिखे हैं दो विनय एक ही दिन। जी ये आपने नोटिस किया, गुड। विनय यादव जी आए थे दिन में और आज शाम में विनय। और साथ ही साथ छबी राम जी ने हमें मेल किया है और ये हमें छबी राम जी राजपूत छबी, ये इन्होंने एड्रेस नहीं लिखा है। साथ ही साथ राधे श्याम जी ने मेल किया है, गुड इवनिंग कह रहे हैं और कैसरगंज आए हैं। मैं आपको कैसरगंज के फेमस नदरई का पुल, अच्छा ओके जी जी जी जी, हमें बताइएगा कि मुझे किधर आना है घूमने के लिए। यासमीन बानो जी ने हमें मेल किया है, गुड इवनिंग कह रही हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है इन्हें। ये हमें सीतापुर से मेल कर रही हैं, शुभम काजल अवस्थी सनीला ये सभी हमें सुन रहे हैं। साथ ही साथ सुनील कुमार जी ने हमें मेल कर रहे हैं और भी बड़े सारे लोग हमें मेल कर रहे हैं, तो हम बस नाम लेंगे। और हमारे एक लिसनर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हैं सिमरन सौरांजलि ने हमें मेल किया है, शैलेश कुमार ने हमें मेल किया है, पिंकू सोनी, मनोज विश्वकर्मा जी ने मेल किया है। और आइए हम अपने लिसनर से बात करते हैं जो हमें फ़ोन पे जिनसे हमारी बात होने वाली है। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ कौन सा बोल रहे
1: हैं
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मेरा नाम है गुलाब कश्यप।
0: जी बताइए कैसे हैं आप?
1: सर बिल्कुल ठीक हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: सर रामपुर राय जिला उन्नाव से।
0: ये तो पास में हमारे है ना।
1: जी सर,
0: आप मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है खाने में?
1: खाने में
0: जल्दी बोलिए, समय नहीं हमारे पास, 57 होने वाला है, इतना सोचना पड़ रहा
1: है। करेला की सब्जी बहुत,
0: क्या बात है, करेला बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, आपको पसंद है?
1: हाँ सर बहुत ज्यादा ही।
0: चलिए आप मुझे गाना बताइए किस सुनाना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे फोन

0: रखना पड़ेगा
1: सर। गाना सर खासकर सर आपको डेडिकेट है और सर कल मदर्स डे के अवसर पर सर मैं माँ को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: थैंक यू सो मच फोन करने के लिए, क्योंकि समय नहीं है, हम बहुत बात नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी गीत के साथ इजाजत दीजिए अपने दोस्त विनय को, किसी रोज आपसे फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाल बागची की पीठ ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया है कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1,400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में पार्टी की पहली सरकार का

नेतृत्व किया। राज्यपाल आर एन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दीं। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। मिर्जापुर में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बिजनौर, इटावा, पीलीभीत में भी मीडियाकर्मियों और लोगों को स्वजनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। कई जिलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का 2रा चरण आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित होगा।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

नमस्कार, आदाब, तहे दिल से इस्तकबाल आपका आबशार में। 8:05:33, मैं हूं आपकी मेजबान समरीन। आज की इस खूबसूरत महफिल की शुरुआत उस एहसास के साथ जो हमसे शुरुआत से जुड़ता है, जब हमारी जिंदगी का आगाज हुआ होता है, वो पहली लोरी, वो पहली दुआ और वो पहला सहारा और हमारी सबकी पहली मोहब्बत यानी माँ। इस पर एक बड़ा खूबसूरत सा शेर मुनव्वर आना ने कहा है कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। दोस्तों, बचपन की वो रातें जब माँ की गोद दुनिया की सबसे महफूज कोना लगती थी और वही हिफाजत हम आज भी ढूंढते हैं हर रिश्ते में, जब उनकी उंगलियां पकड़कर हम हर डर से पीछा छुड़ा लेते थे, बड़े से बड़ा डर छोटा लगने लगता था, जब उनकी आवाज में एक जादू हुआ करता था जिसकी तलाश आज भी जारी है। आज की हमारी पहली गजल उस ममता के नाम, उस अपनेपन के नाम और उस बेपनाह मोहब्बत के नाम जो बिना किसी शर्त के बस देना जानती है। यकीनन मदर्स डे कल है और जैसा कि हम कहते हैं कि इसके

कोई एक दिन मुकर्रर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बेलौस मोहब्बत के लिए शायद पूरी जिंदगी जो है वो कम पड़ जाए। शुरुआत करते हैं जावेद अख्तर की लिखी हुई और जगजीत सिंह की गाई हुई इस बेहद हसीन गजल के साथ। प्रोग्राम आबशार में मैं समरीन एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ।

इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारे माजी की मीठी यादें तपती धूप में फुहारों जैसी हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हो जाते हैं जो खत्म होकर भी दूर नहीं जाते। दिल उन्हीं के नाम से हमेशा धड़कता रहता है। जब जुदाई का दर्द अल्फाज बनता है तो गजल बनकर सदियों तक दिल में उतर जाता है। आज की इस महफिल में अगली गजल है शहनशाह गजल मेहंदी हसन की, जिसमें शिकायत भी है, मोहब्बत भी है, रुखसती भी है और एक गहरा यकीन भी। ये सिर्फ एक गजल नहीं बल्कि टूटते रिश्ते के बीच हुई मोहब्बत की आखिरी आवाज है। तो आइए अपने जज्बात को थोड़ा खामोश करते हैं और दिल को सुनते हैं, क्योंकि अब सुरों की बारिश में उतर रही है एक ऐसी गजल जो सुनने वाले की रूह तक यकीनन जाएगी। मेहंदी हसन साहब की आवाज़ में ये गजल।

किताबों में तो अचानक से हुई मोहब्बत और पहली नज़र की मोहब्बत का जिक्र अक्सर होता है और गानों में भी होता है, गज़लों में भी होता है, लेकिन आप का दिल किसी की तरफ धीरे धीरे रागिब होता है और धीरे ही धीरे ये जज्बात रूह में उतरते चले जाते हैं। एक मुस्कान से शुरू हुआ इश्क कब आपकी ज़िंदगी बन जाता है आपको पता ही नहीं चलता, और फिर एक दिन एहसास होता है कि जिसे हम देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, जिसे देखकर ज़िंदगी शादाब हो जाती है, अब वो मेरी पूरी कायनात बन चुका है। और इसी खूबसूरत कैफियत को अपनी आवाज़ में अमर किया है शहनशाह गज़ल। एक बार फिर से मेहंदी हसन साहब की अगली गज़ल आप सुनेंगे, खूबसूरत एहसास, जिसमें शख्स धीरे धीरे हमारी तन्हाइयों में, हमारी रूह में

जाता है, फिर हमारी बातों में उतर जाता है और फिर धड़कनों का हिस्सा बन जाता है। गजल तो आप समझ ही चुके होंगे। इस गजल में मोहब्बत के उसी सफर की कहानी है जहां इश्क शोर नहीं करता, बस खामोशी से दिल में घर बना लेता है। इस सुरीली शाम में कुछ पल मोहब्बत की उस नर्म बारिश में भीगते हैं जहां आपके दिल में इसके हर मिसरे से आप वो मोहब्बत की पहली खुशबू को महसूस कर सकेंगे।

वक्त की गुजर जाने का, साथी के बिछड़ जाने का डर हम सबको सताता है। और इस पे एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और फिराकदारी है। और यही तकलीफ, यही उलझन आपने महसूस किया होगा फरीदा खानम की अभी जो आपने गजल की उसमें। कुछ ऐसे दर्द होते हैं दोस्तों जिसे हम दुनिया से छुपाना चाहते हैं, मगर दिल के कोने में वो अपनी शिद्दत बनाए रखते हैं। चेहरे मुस्कुरा रहे होते हैं, महफिलें सजी होती हैं, लेकिन रूह किसी कोने में एक खामोश उदासी लिए अपनी जगह पर मौजूद रहती है। और जब ये उदासी अल्फाज बनती है तो ऐसी गजलें जन्म लेती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आपकी रूह को या तो तस्कीन देती हैं या माजी की तकलीफ। अगली गजल गुलाम अली की आवाज में आप सुनेंगे, जिसमें पहले ही मिसरे में आपको पूरी जिंदगी की थकान महसूस होगी, किसी के बिछड़ने की कसक होगी तो कुछ अधूरे रिश्तों की चुभन होगी, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब वक्त भी नहीं दे पाता। अपने इन्हीं जज्बात को आवाज देती हमारी ये गजल आपके रेडियो सेट पर, ये रही गुलाम अली की आवाज में।

0: 8:42:19 और हर बार की तरह आबशार से इस गज़लों भरी महफिल से मैं आपकी दोस्त समरीन आपसे लेती हूँ इजाज़त। 9 बजे आपसे रेनबो कैफ़े में एक बार फिर से मुलाकात होगी, जहाँ होंगे आपके प्यार भरे मेल्स, कुछ बेहतरीन गाने और होंगी आपसे बातें। फ़िलहाल रेनबो कैफ़े से मुझे दीजिए इजाज़त। अभी एक आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारी दिल्ली से प्रसारण में।
1: मैंने अदाकारा की हैसियत से अपनी सलाहियतों को जाहिर

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 99 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे।

0: तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल की नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़क

0: लोगों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला

बराबरी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए, पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रेनबो कैफे में। मैं हूं आपके साथ समरीन। 9:03 यानी कि एक घंटा पूरा हम आपके साथ रहने वाले हैं इस प्रोग्राम में, जहां होगा बेहतरीन म्यूजिक और साथ ही साथ होंगे

आपके प्यार भरे से मेल्स। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए fmakashwadilakhnow@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा सा छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और इस ट्रेडिशन को चालू रखते हुए आज का ट्रैक जो बेहद आपके मूड को रिफ्रेश करने वाला है आपको सुनवाते हैं।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: जी हाँ, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, 9:58 और भर भर के आपके मेल्स हमारे पास आने भी शुरू हो गए हैं। सबसे पहला मेल जो हमें भेजा है वो है विजय पाल यादव जी का। लिखते हैं, आदरणीय बहन जी सादर नमस्ते, मैं विजय पाल यादव और साथ में है बबलू यादव, ग्राम पोस्ट ललहवा जिला खीरी से कार्यक्रम सुन रहा हूँ। मेरे बबलू भाई आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि आज हम दोनों एक साथ आपका कार्यक्रम सुन पा रहे हैं। दीदी आपका इंतजार रहता है, आपसे निवेदन है जल्दी जल्दी आया करिए। मैं तो बहुत जल्दी आई हूँ इस बार, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, आबशार सुन के मन प्रसन्न हो गया। पॉप टाइम का तो कहना ही क्या है, प्रस्तुति लाजवाब है। दोनों की तरफ से आपको प्यार भरा सलाम स्वीकार हो और हमारी तरफ से भी आपको तहे दिल से प्यार और सलाम। अंसारी शाह रून नूर लिखते हैं, रेनबो कैफे पेश करने वाले को हमारा आदाब, आपका ये कार्यक्रम मैं रोज सुनता हूँ, मुझे इस कार्यक्रम के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। अच्छा अंसारी साहब, आपका जब मैं मेल पढ़ती हूँ ना तो मैं बहुत रुक रुक के पढ़ती हूँ, बहुत टंग ट्विस्टर वाला नाम है आपका, अंसारी शाहरून नूर। विवेक कश्यप लिखते हैं, गुड इवनिंग मैम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। विवेक कश्यप फ्रॉम सिसैया दरियाना पोस्ट कठौरा जिला सीतापुर से इन्होंने हमें मेल भेजा है, बहुत शुक्रिया विवेक। मोनू सेठ लिखते हैं,

टाइम एकदम जबरदस्त हुए काहे से समरीन जी आई हैं और आगे लिखते हैं, समरीन मैडम जी कैसन हैं आप, उम्मीद है बहुत नीक हुई हैं, हम बिल्कुल ठीक बा कोशिश है बताइएगा मुझे सही थी गलत थी। शिव पूजन ला लिखते हैं, हेलो डियर आरजे जी गुड इवनिंग, मैं शिव पूजन विलेज सनी गवा लखीमपुर खीरी से, प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी लग रही है। अगला मेल हमें भेजा है वैभव प्रकाश ने, लिखते हैं समरीन मैडम जी के साथ रेनबो सुनने वाले सभी लोगों को और गंगोई असल कुचलई माझा मिश्रापुर गांव के सभी दोस्तों को वैभव प्रकाश सिंह नागपुर महाराज से गर्मा गरम राम राम। अरे भाई मौसम अभी तो ठीक हुआ है, गर्मा गरम राम राम नहीं बोलिए, अच्छा बेहतरीन प्यार से राम राम बोलिए, अभी तो राहत हुई है हमें गर्मी से। कमल पांडे जी लिखते हैं, समरीन मैम जी नमस्कार, मैं कमल शंकर पांडे ग्राम महोलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर से मेल कर रहा हूँ। मैंने दरवाजे को कुंडी मारकर और रेडियो का वॉल्यूम फुल करके इसमें बजने वाले गीतों का फुल आनंद ले रहा हूँ और पूरी तरह से गीतों के साथ साथ झूम रहा हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त गीत के साथ हुई। रेनबो कैफे मेरा बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है, मैं ये कार्यक्रम प्रतिदिन सुनता हूँ और इसमें बजने वाले गीतों का फुल आनंद लेता हूँ। कार्यक्रम में मेरा मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सच बताऊँ मैंने इससे पहले कई मेल से जुड़े कार्यक्रम किए हैं एंड उसमें मेल्स शामिल करना इट्स सो इम्पॉसिबल, लेकिन आपके ये जो मेल्स हैं ये बहुत ही आराम आराम से आते हैं तो सारे मेल्स पढ़ पाना हमारे लिए आसान होता है। गुलफ्शा सिद्दीकी लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम सरमिनप्पी, मैं गुलफ्शा सिद्दीकी संडीले से, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हैं सरमिनप्पी, मैं अभी चैट के ऊपर अच्छा ओके लिख रही है समरीनप्पी भी, मैं छत के ऊपर हूँ, हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। और साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, ममता निशा अंसारी, हम सब ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, दैट्स सो स्वीट। और अमूमन शाम के वक्त हम प्रोग्राम में अकेले होते हैं लेकिन आप लोगों का ये साथ जो हमें लगातार रात में 12 बजे तक हमारे साथ होता है और मेल्स के ज़रिए भी आप हमें बताते हैं और पहले भी बताते हैं कि हम आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहने वाले हैं तो हमें बिल्कुल भी अकेलापन या तन्हाई महसूस नहीं होती है। नीलू शर्मा का मेल है, क्या मेल है आपको बताएंगे लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: 9:19:42 आप है अपनी दोस्त समरीन के साथ, प्रोग्राम चल रहा है रेनबो कैफे और आपके मेल्स का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कल मदर्स डे है, तो आज अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी माँ से तो आप ज़रूर हमारे साथ मेल के ज़रिए से शेयर करिए। और फ़िलहाल बाबू अंसारी लिखते हैं कि समरीन जी अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और हम सभी प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। एक मेल जो रह गया है शैलेश जी, नीलो शर्मा रूपपुर दिल्ली से लिखती हैं, बाद मुद्दत के उनको ख्वाब में देखकर यूं लगा जैसे बेताब दिल को करार आ गया, आरजू के गुल मुस्कुराने लगे जैसे गुलशन में जाने बहार आ गया। समरीन दी को मेरा सलाम, 7:58 पर मैंने आपको दिल से याद किया और 8 बजे आपकी आवाज़ भी सुनने को मिल गई। सारा पीहू, रोशनी, बबीता, वंदना, मनु, सोनी को मेरा नमस्कार बोल दीजिए। तो जब आपने 7:58 पर मेरा ख्याल किया और 8 बजे मैं आपको सुनने को मिल गई, तो आपने ये नहीं सोचा कि काश कुछ और मांग लिया होता? ऐसा अक्सर होता है। आगे बाबू अंसारी जी का तो मेल मैं पढ़ चुकी हूँ। कोमल तिवारी लिखती हैं, आप प्रोग्राम धमाकेदार करती हैं हमेशा, शुक्रिया कोमल। बहराइच से इन्होंने हमें मेल किया है। अच्छा, एक नाम था मोनू जी, आपने मेल 2 बार किया है लेकिन आपने ये नहीं लिखा है कि आपने मेल कहाँ से किया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मुझे मेल भेज रहे हैं तो आप सब्जेक्ट में ही डालिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अर्पित शर्मा अनमोल लिखती हैं, शुभ संध्या मेम साहब, आपकी शहद जैसी आवाज़ के साथ शानदार म्यूज़िक ट्रैक बड़ा मज़ा आ रहा है, कसम से फुल इंटरटेनमेंट, बहुत शुक्रिया। TR शर्मा, निर्मला, अर्पित शर्मा, तेशिका शर्मा, बलोत्रा राजस्थान होडू से इन्होंने हमें मेल किया है, बहुत शुक्रिया अर्पित जी। और ज़ीशान खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम समरीन अप्पी, आई एम ज़ीशान खान संडीले से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी वाइफ गुलफ़शा सिद्दीकी दोनों इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आप सऊदी से आ गए हैं संडीला, वाह वेरी नाइस, आप दोनों साथ बैठ के ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। नेक्स्ट मेल अरविंद कुमार दुबे लिखते हैं, नमस्कार FM रेनबो लखनऊ, समरीन मैम आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी हंसी अच्छी लगती है, ईमेल ढूंढकर हर किसी को शामिल करना एक कठिन काम है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा मेल हमेशा शामिल हो जाता है। हम सभी रेनबो लखनऊ के सारे प्रोग्राम्स का आनंद लेते हैं। अरविंद दुबे, गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से। देखिए, जिस चीज़ को आप शिद्दत से करते हैं वो आपको ये कायनात देती है। अभी किसी ने मुझे लिखा, नीलू ने लिखा कि 7:58 पे उन्होंने याद किया और मैं 8 बजे जो है मुसल्लत उनके सर पे। तो आप भी जो भी चाहें आपको ज़रूर मिलता है, बस शिद्दत होनी चाहिए। सुधांशु लिखते हैं, राधे राधे, सुधांशु ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ और मुझे समाज शास्त्र विषय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, आपको मेहनत और आपका हौसला ही आपकी सफलता का रास्ता तय करता है, इसलिए खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। आई टोटली अग्री सुधांशु, अक्सर हमारी ज़िंदगी में बहुत टफ फेजेस आते हैं जब लगता है कि आप

चुके हैं और ये बोझ जो है वो ज़िंदगी का बढ़ता जा रहा है, लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं और आपको लगता है ये मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बिलीव मी कि ये फ़ेज़ है और ये फ़ेज़ गुजर जाएगा। आपको बस शिद्दत से अपना काम करते रहना है और ये मान के चलना है कि बस जो भी है ये वक्ती है, चाहे खुशी हो या गम। ये आपको बहुत मोटिवेट करता है। एमन आ गई हैं, लिखती हैं, हाय डियर समीरप्पी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एमन, और आपका मेल आते ही मैं और भी अच्छी हो गई हूँ। लिखती हैं, आपको मुझसे शिकायत रहती है कि एमन देर से आती है, इसलिए आज मैं जल्दी आ गई। ये मेरी माँ के लिए है। आसमा अनंत है, बिल्कुल मेरी ममा के प्यार की तरह। हैप्पी मदर्स डे ममा। मुझे पता है ममा दिखाई नहीं देती पर वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, उनका प्यार, उनका स्पर्श मैं हमेशा महसूस करती हूँ। आई लव यू ममा। एमन नवाब संडीला। इसमें कोई शक नहीं कि माँ लव्स आते ही आप इमोशनल हो जाते हैं और ये ऐसा लव्स है जो हमारी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत होता है। इस पर मुनव्वर राना का बहुत खूबसूरत शेर है, अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। इसी के अलावा जो दूसरा मेरा बहुत पसंदीदा शेर है वो है कि इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और ये माँ लव्स अपने आप में प्यार से भरा हुआ छोटा सा शब्द है जो आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी कायनात हो जाता है, ये आपका वजूद है। तो एमन, ढेर सारा प्यार आपको मेरी तरफ से। आनंद तिवारी लिखते हैं, मौसम बदल रहा है, सब अपना अपना ख्याल रखें, सुना है बदलता मौसम और बदलते लोग बहुत तकलीफदेह होते हैं, पतझड़ भी हिस्सा है ज़िंदगी के मौसम का, फ़र्क सिर्फ इतना है कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। आनंद तिवारी, दारुकोया, मल्लावा, हरदोई, यूपी, और लिखते हैं कि ज़बरदस्त प्रोग्राम। आनंद बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से जब बात होती है ना तो ख़ुद हमें भी हौसला मिलता है और लगता है कि ज़िंदगी की इस तपती धूप में आपके ये जो प्यार है, ये जो मेल्स हैं जो हम तक पहुँचते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें भी बहुत हौसला देते हैं। महेंद्र दीपान लिखते हैं, आदरणीय समरीन मैम जी, चरण स्पर्श आपके हिसाब से पढ़ लीजिएगा, अपनी दोनों बहनों का नाम ज़रूर ले लीजिएगा, बबीता राव जी गुसाईगंज और रोशनी रावत जी। और इन्होंने बहुत प्यारा सा मुझे एक पोस्ट कार्ड बना के भेजा है और बाकायदा उसमें लिखा है, लिखते हैं कि रेनबो कैफ़े सिर्फ एक शो नहीं एहसास है, आपकी आवाज़ में वो जादू है जो दिल को छू जाता है, आपकी बातों में वो अपनापन है जो हर श्रोता को अपना बना लेता है, आपकी शानदार प्रस्तुति, मधुर आवाज़ और बेहतरीन अंदाज के कारण रेनबो कैफ़े न सिर्फ एक रेडियो शो बल्कि हमारे दिन की खूबसूरत शुरुआत बन जाता है, आप यूं ही हमारे दिलों में मुस्कान, ऊर्जा और उमंग भरती रहें, आपकी हर बात हमें प्रेरित करती है, आपकी हर झलक हमें मंत्रमुग्ध करती है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, और मैं वाकई अभिभूत हुई आपके इस मेल से। और अतुल कुमार यादव लिखते हैं, हेलो जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। माँ तो माँ होती है इसलिए जो भी कहें कम है। सभी माताओं को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। ग्राम खोरेता खैराबाद सीतापुर से इन्होंने हमें मेल किया है और बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन चूंकि ये रेनबो कैफ़े है तो यहाँ सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि बेहतरीन म्यूज़िक भी लगातार इंतज़ार कर रहा होता है आपके रेडियो सेट पर। ये रहा

बैंड ऑफ बॉयज, एक ऐसा वक्त था जब आपको जब म्यूजिक का मजा लेना होता था. बैंड ऑफ बॉयज, सनम बैंड, ये सारे ऐसे म्यूजिकल बैंड्स होते थे जिनके बिना ना म्यूजिक अधूरी लगती थी. और हमारे टाइम पे तो जो एल्बम था उसका अलग ही लुत्फ था. हालांकि अब क्या एल्बम का कल्चर थोड़ा सा कम हुआ है कंपैरेटिवली, बट फिर भी जो प्राइवेट एल्बम्स होते थे बहुत खूबसूरत होते थे. आइए बढ़ते हैं और शामिल करते हैं उन मेल्स को जो बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं. अच्छा फरमाइश आई है कुछ नो अपने रीजनल लैंग्वेज का भी हम गाना सुना दें जरूर. अच्छा जीशान लिखते हैं, नहीं समरीन अपी, मैं अभी भी सऊदी में ही हूँ और यहीं से सुन रहा हूँ. गुलफशा संडीले से सुन रही हूँ और मैं यहाँ खाना बनाते हुए ये गाना सुन रहा हूँ. अरे वाह. और अफजल लिखते हैं, मेरा कुछ गुनाहों की सजा भी साथ, अच्छा मेरे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है. मैं जब भी घर से निकलता हूँ अम्मी की दुआ साथ चलती है. बहुत ही खूबसूरत शेर अफजल जी. सीतापुर इमालिया सुल्तान.

कानपुर फराकपुर से इन्होंने हमें मेल किया है। रामराज लिखते हैं, श्री गणेशाय नमः, पॉप टाइम्स, रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, पप्पू और मनीष, नीरज, मिर्जा रिजवान भाई आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप ईमेल पढ़ते हैं तो और भी अच्छा लगता है। हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी। रमाकांत लिखते हैं, गुड इवनिंग डियर मैम जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। कुमुद मैम काफ़ी दिनों से नहीं आ रही हैं, क्यों? रमाकांत सिंह, ग्राम मदनपुर, ज़िला लखीमपुर खीरी से। सोनू जी लिखते हैं, आज रोटी के पीछे भागता हूँ तो याद आती है माँ, रोटी खिलाने के लिए माँ मेरे पीछे भागती थी, बस यादें, अब मेरी माँ मेरे पास नहीं है, जो है वो है यादें। और सोनू जी, एक ख़ास बात यह है कि वो यादें बहुत खूबसूरत हैं, हम रह रहकर उन यादों में जाते हैं, उस पल को जीते हैं और फिर आज की ज़िंदगी में वापस आते हैं जहाँ हमारे बहुत सारे फ़राइज़ हैं या तो हम माँ बाप बन चुके हैं। तो यकीनन वो पल जो हमने अपनी माँ के साथ गुजारे थे, उन्हें हम चेरिश करते हैं, याद करते हैं, और वो एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। वैभव प्रकाश सिंह लिखते हैं, गर्मा गर्म राम राम, इसलिए भेजा है आपको कि आप लोगों से हमें बहुत जलन हो रही है, आपके उधर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और नागपुर में बहुत गर्मी पड़ रही है, और बाप और इसी गर्मी में ट्रेन चला है, लोगों को मंजिल मंजिल तक पहुंचता रहे, बस आपके प्यारे प्यारे मेल्स और गानों से ठंडक पहुंच रही है, इसलिए दोबारा से मेल किया है। वैभव बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से मेल करने के लिए और बात का जवाब देने के लिए। और देखिए, जल्दी आपकी तरफ भी मौसम बेहतर होगा, हालांकि जिस लिहाज से बारिश हो रही है ये भी अच्छा नहीं है, जिस वक्त पे जो चीज़ हो वो बेहतर होती है, ये वक्त नहीं है कि इस वक्त पे बारिश हो, क्लाइमेट चेंज का असर सब तरफ दिखाई पड़ रहा है। रेणु देवी लिखती हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने परिवार के साथ सुन रही हूँ, राम सेवक, रेणु, आयुषी, उषा, नीतू, गुड इवनिंग समरिंदी, हसनपुर और आस उन्नाव से इन्होंने हमें मेल भेजा है, बहुत शुक्रिया रेणु जी। आंचल सेठ लिखती हैं कि बेपनाह मोहब्बत माने की, बाप ने भी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन कंधों पर कभी सवारी की थी उन कंधों को भुलाते लोगों को भी देखा है, जीते जी कभी कुछ नहीं, मरने के बाद उन्हें रोते देखा है। बिल्कुल सही बात आपने कही, और आज मैंने कहीं एक देखा था जिसमें था कि एक दिन जिस दिन सब आपसे प्यार करते हैं, और ये कह के आपकी मतलब एक बॉडी रखी हुई थी और उस पर ये लिखा हुआ था, तो जिनको आप प्यार करते हैं उनको ज़िंदगी रहते हुए ज़रूर जताइए कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं। रोशनी रावत लिखती हैं, नमस्ते समरीन दीदी जी, आप कैसी हैं? मैं आपके साथ 12:02 तक रहूँगी, एक एक पल का आप हिसाब रखते हैं। हाँ, दैट्स सो स्वीट, आबशार प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम एकदम ललन टॉप चल रहा है, साथ ही साथ मैं सिर हिला हिला कर झूम रही हूँ और गीत सुन रही हूँ और गुनगुना भी रही हूँ। मैं अपनी माता श्री के लिए दो शब्द कहना चाहती हूँ, वो हैं तो हम हैं। मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम पोस्ट बमना, तहसीलपुर सफीपुर, ज़िला उन्नाव से इन्होंने हमें मेल भेजा, चंडीगढ़ से ये प्रोग्राम सुन रही हैं। नीलू शर्मा दीदी, बबीता राव जी को राधे राधे बोल दीजिएगा, और अर्ज़ किया है इन्होंने कि हमसे ना पूछिए हमारा इरादा क्या है, खुद से खुद का वादा चाहिए, पता नहीं क्यों आजकल रातों को नींद कम आती है और सुबह भी नींद जल्दी खुल जाती है, आजकल चेहरे पर मुस्कान रहती है। देखिए, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका दिमाग बहुत चल रहा है, और एक वजह हो सकती है कि आप काम नहीं कर रही हैं रोशनी ये दो बड़े बड़े रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये होता है जब मैं थोड़ी काहली करती हूँ और बहुत मेंटली बहुत काम कर रही होती हूँ, सोच रही होती हूँ, प्लानिंग्स कर रही होती हूँ, तो मेरी नींद गायब हो जाती है। तो एक तो फिजिकल अपना जो है वो काम बढ़ाइए और दिमाग को शांत करिए, दिमाग को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन करिए। आगे नीलू शर्मा लिखती हैं, रूपपुर चंदेला से, माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा, सभी सुनने वालों को और समरीन दी आपको मदर्स डे की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, मैं जितना प्यार अपनी माँ से करती हूँ उतना ही सारा पीहू रोशनी की मम्मी से भी करती हूँ, समरीन दी जब मेरी तबीयत खराब होती है मेरे मुँह से एक ही शब्द निकलता है, हाय माँ जी मुझे बचा लो, अब आपसे कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी मैं, तो आप ऐसे काम क्यों करती हैं।

कि आपको मम्मा से ये कहना पड़े, ऐसे काम ही मत करिए। सावित्री देवी जी लिखती हैं, गुड इवनिंग डियर मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू। हम विलेज भरतपुर बरगदी पोस्ट अर्जनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमारे साथ अनंत ईशान भी हैं, शुक्रिया सावित्री जी। अरुण आनंद लिखते हैं, जिंदगी में जब बचपन के खेल समाप्त हो जाते हैं उसके बाद किस्मत के खेल शुरू होते हैं। जय कृष्ण जी। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा जो बचपन होता है जिसे माँ अपने आंचल से ढककर हमें तमाम तरह के परेशानियों से दिक्कतों से बचाती है, हमारे आंखों में आंसू नहीं आने देती है। और आजकल का दौर तो और जेंटल पेरेंटिंग का हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के लिए जो बाहर की दुनिया है वो और हार्ड हो गई है, हार्श हो गई है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि भगवान का दिया सबसे खूबसूरत वरदान जो है वो माँ है। मोनू सेठ लिखते हैं, नैनन में है जल भरा, आंचल में आशीष, तुम सा दूजा नहीं, यहाँ तुम्हें निवाए शीश, रही लहू से सींचती काया तेरी देन, संस्कार सारे दिए अद्भुत तेरा प्रेम। माँ का प्यार दुनिया की सबसे सच्ची दुआ है, माँ घर ही नहीं पूरी दुनिया होती है, रातों को जागकर हमें लिया है पाल, ऋण तेरा कैसे चुकाएं सोचे तेरा लाल। मेरे पास मेरी माँ नहीं है इस बात का दुख जीवन भर रहेगा, लेकिन जब तक आपकी माँ आपके साथ रही होंगी यकीनन वो प्यार जो आपको एक बार मिला होता है वो जिंदगी भर साथ चलता है। हालांकि बहुत इमोशनल मेल आ रहे हैं माँ के प्यार में, या माँ से जो जज्बाती कनेक्शन हम सभी का होता है उससे रिलेटेड एक थोड़ा सा पेपी सा ट्रैक सुनाते हैं ताकि थोड़ा माहौल बदले, एनर्जी बदले। आपके रेडियो सेट पर बी पराग का ये ट्रैक रहा।

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी

9:34 रेनबो कैफे के जाने से जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन जल्दी से वो मेल्स को शामिल कर लेते हैं जो चाहते चाहते हमारे पास आए हैं। बबीता राव लिखती हैं, मैम जी आपको सुने और ईमेल ना करें ऐसा मुमकिन नहीं, पता नहीं क्यों आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपकी वॉइस और गज़लों का आबशार प्रोग्राम रेनबो कैफे सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसका असर ये हुआ है कि जैसे लग रहा है कि कोई मेडिसिन मिल गई हो, अब तो रजनीगंधा प्रोग्राम भी सुनकर ही सोऊंगी। मैम जी आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत शानदार, लाजवाब, उम्दा प्रस्तुति, आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है और स्टूडियो में हमारी आरजे भी हैं। मैम जी आपको और सभी दोस्तों को एडवांस में मदर्स डे की शुभकामनाएं, ईमेल शामिल करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बबीता अच्छा फील करेंगी आप तो अच्छा फील होगा, आप सोचें कि आपके अच्छा फील करने से ये बहुत इन्फेक्शियस चीज़ है, दूसरे भी अच्छा फील करते हैं, तो अपनी स्प्रिट हाई रखिए। मनोज विश्वकर्मा लिखते हैं, गुड इवनिंग मैम जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आबशार सुना बहुत अच्छा लगा, पूरा रजनीगंधा तक आपके साथ रहूँगा। छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव से उन्होंने हमें मेल भेजा है। अरुण आनंद लिखते हैं, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी करीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, और जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। के आनंद ने हमें ये लाइन्स भेजी हैं जो अपने आप में बहुत खूबसूरत मैसेज भी दे रही हैं और लाइन्स भी बहुत खूबसूरत हैं। रोशनी रावत लिखती हैं कि आपको सुनने के लिए देर रात तक जागते हैं और सुबह साइबर कैफ़े आने के लिए उठना पड़ता है, और भी एक दो वजह हैं मैं समझ सकती हूँ, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन अपना ख्याल ज़रूर रखें आप। एम के राज ने लिखा है, मुनेश कुमार राजगांव भानुपुर हरोआ जिला का लखीमपुर खीरी से, कार्यक्रम प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब, हर घंटे हर रोज़ लाइव सुनता हूँ, वाह वाह क्या गाने बज रहे हैं, थिरकने पर पाँव मजबूर हो गए हैं। विवेक गौतम लिखते हैं, मैं विवेक गौतम गंगागंज शिवगढ़ रायबरेली से, प्रोग्राम के गानों की प्लेलिस्ट मुझे बहुत पसंद आ रही है, मेरी एक देखिए अगला मेल हमें भेजा है आयुष ने, मेल बहुत लंबा है, मैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैम आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लग रही है, पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, माँ का होना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है सांस लेना, इसलिए माँ कभी नहीं जानी चाहिए ज़िंदगी से, माँ के बिना सब अधूरा है, आई लव यू मम्मी, हम सब लोग सुन रहे हैं, रेनू देवी और जीजू राम सेवक विलेज मैनी पोस्ट ऑरस डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से, प्रेजेंट टाइम न्यू अशोक नगर में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। आयुषी आपका मेल भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुए। जाते जाते एक खूबसूरत सा ट्रैक जिसे सुन के आपको यकीनन अच्छा फील होगा, अंशुल गर्ग की आवाज़ में आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

नमस्कार, रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। गौतम बुद्ध नगर में आयोजित 5वीं व्हीलचेयर राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप में मेजबान उत्तर प्रदेश की टीम चैंपियन बन गई है। रोमांचक मुकाबले में यूपी ने हरियाणा को 5 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यूपी के बल्लेबाजों ने आक्रामक शुरुआत करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 191 रन बनाए। हरियाणा की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 186 रन ही बना सकी। जौनपुर में गोमती नदी में नहाते समय 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक अपने दोस्तों के साथ नदी में स्नान करने गए थे, तभी गहरे पानी में चले जाने से ये हादसा हो गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
2: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
0: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

कुछ खुशबुएं वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वो बस यादों की किसी कोने में चुपचाप महकती रहती हैं। और जब ये पुराने गीत और उनकी धुनें दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, तो बीता हुआ हर लम्हा फिर से जी उठता है। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर से मैं समरीन हमारे सभी श्रोताओं का रजनीगंधा में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक ऐसी महफिल जहाँ हर गीत अपने साथ लेकर आता है मोहब्बत की नरमी को, जुदाई की खामोशी को और उन सुनहरे दिनों की मीठी सी आहट को जो गुजरते वक्त के साथ हम कहीं दूर छोड़ आए हैं। आज की इस महकती हुई रात में पुराने नगमों के साथ फिर से महसूस करते हैं उन एहसासों को जो गुजरते वक्त के साथ कहीं दूर छूट आए हैं। हेमलता की आवाज में पहला गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा।

कुछ लोग अपने काम से हमेशा जिंदा रहते हैं, वो चले भी जाएं तो उनकी आवाज, उनके जज्बात किसी नज्म की तरह हवाओं में तैरते रहते हैं। और आज का ये हमारा गीत जिंदगी की उसी सच्चाई को बड़ी सादगी से बयां करता है कि इंसान तो बस कुछ लम्हों का मुसाफिर है, लेकिन उसके एहसास, उसकी मोहब्बत, उसकी आर्ट, उसकी क्राफ्ट, उसकी कला वक्त की कहीं आगे तक का सफर करती है।

0: ये आपको सुनवाते हैं कभी कभी का वो अमर नगमा जिसे अपनी आवाज दी थी मुकेश ने और जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी में।
1: कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है।

अच्छा सच बताइएगा, या फिर सोचिए कि आपने ऐसे ख्वाब तो जरूर बुने होंगे। पूरे होना ना होना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपनी जिंदगी को ऐसे सजाना संवारना, इसका एहसास ही बहुत स्पेशल फील कराता है। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मुकम्मल तो नहीं हो पाते, लेकिन दिल की किताब में उम्र भर अधूरे ख्वाब बनकर दर्ज हो जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर कोई थोड़ा पहले मिल गया होता या हालात थोड़े अलग होते तो शायद कहानी कुछ और होती, मुस्कुराहटें शायद ज़्यादा होती हमारी ज़िंदगी में और तन्हाइयाँ कम होती। आज ये अगला जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, नगमा सुनाने जा रही हूँ, इन्हीं अधूरी चाहतों और खामोशी से अफसोसों की नर्म दास्तां है, जिसमें मोहब्बत है, इंतज़ार है और एक ऐसा दर्द है जो बहुत धीरे से दिल में उतरता है। आइए आपको सुनाते हैं हमारा अगला गीत।

कुछ आवाजें कुछ आहटें वक्त की धुन में खो जाने के बाद भी दिल के कोने में यूं ही गूंजती रहती हैं, जैसे बारिश की पहली बूंद जो मिट्टी को नहीं यादों को महका देती है। और फिर कोई अधूरा इंतजार, कोई बिछड़ा हुआ साथी धीरे धीरे आंखों के सामने आने लगता है। आज का हमारा ये अगला गीत भी रूहानी मोहब्बत और एहसासों से सजा हुआ एक ऐसा नगमा है जिसकी हर लाइन में, हर पंक्ति में आप महसूस करेंगे जुदाई की कसब को। तो आइए सुनाते हैं आपको लता जी की आवाज़ में ये मधुर गीत।

10:43 आप सुन रहे हैं रजनीगंधा अपनी मेजबान समरीन के साथ। ढलती हुई इस रात में हैं कुछ हसीन कलाम और खूबसूरत गीत, और साथ ही साथ माजी की यादें, मोहब्बत का एहसास और उस चेहरे की झलक जो सिर्फ

जिंदगी में एक शख्स नहीं था बल्कि पूरी कायनात थी। और जब आपकी नजरें उस शख्स को देखती थीं, तो मानो लगता था कि चांदनी उतर आई हो, हर अदा में एक रोशन चेहरा दिखता था। आज का हमारा अगला गीत भी इसी खूबसूरत एहसास की बात करता है, जहां तारीफ सिर्फ अल्फाज तक नहीं सिमटी है बल्कि दिल की धड़कनों की जुबा बन चुकी है। मोहम्मद रफी की आवाज में अगला ये गीत, बहारें फिर भी आएंगी, फिल्म से।

वाह, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर ही ना आप अलग जोन में चले जाते हैं, और दिल ही नहीं चाहता कि ये नगमा ख़त्म हो, लेकिन 10:56 वक्त गुजरता रहना ही नियति है और वक्त गुजर भी रहा है, इसलिए गीत भी ख़त्म होगा। लेकिन हमारा रजनीगंधा का ये कार्यक्रम अभी 1 घंटा आपके साथ, इस कार्यक्रम में हम और रहेंगे, एक न्यूज़ ब्रेक होगा और न्यूज़ ब्रेक के बाद आपसे फिर उस तरफ मुलाकात होगी। गाना आपकी फीलिंग्स वाला मैं प्ले कर रही हूँ।

0: नमस्कार, रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। भारत ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल टारगेट री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। प्रदेश के कई जिलों में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद रोडवेज पर बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित भी किया। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने भीषण गर्मी में प्रदेशवासियों को तय शेड्यूल के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय समीक्षा में उन्होंने अधिकारियों और अभियंताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे गर्मी में ट्रांसफार्मर खराब ना हो। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।
1: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहां हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
3: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो।
0: ग्यारह बजकर 3 मिनट और 3 सेकंड और हमारा रजनीगंधा का दूसरा मरहला यानी कि दूसरा पड़ाव जो है वो शुरू हो चुका है। दोस्तों, मोहब्बत कभी भी दस्तक देकर या किसी मौके पर ऐसे ही नहीं आती। ये बस अचानक खामोशी से दिल की गलियों में उतरती जाती है और फिर इंसान ये सोचता रहता है इस एहसास के बारे में, उस शख्स के बारे में। कभी एक मुस्कान से शुरू हुई इससे मोहब्बत की, कभी बिना किसी वजह के दिल को और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है वो शख्स। अगला गीत जो हमारा है वो इसी मासूम और

0: मीठे से इकरार की खूबसूरती का एहसास कराता है, जहाँ सवाल बहुत हैं मगर जवाब से ज़्यादा प्यारी वो फीलिंग्स हैं जो चुपके से दिल में जगह बना लेती हैं। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की जादुई आवाज़ में हमारा अगला गीत।
1: कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

11:14 आप सुन रहे हैं रजनीगंधा अपने दोस्त समरीन के साथ। हर मुस्कुराता चेहरा जरूरी नहीं कि अंदर से भी खुश हो। कभी बाहर की दुनिया रोशन तो दिल की दुनिया वीरान होती है। भीड़ में भी रहकर इंसान तन्हा होता है। जब जिंदगी किसी अपने को छीन लेती है तो बहारें भी सूने लगती हैं। फूल तो खिलते हैं मगर दिल का चमन उजड़ चुका होता है। हमारा अगला गीत इसी टूटे एहसास और उस खामोश उदासी की दास्तां को बयां करता है, जहां शिकायत भी है तकदीर से और बिछड़ने का दर्द भी बहुत गहरा है। मुकेश की आवाज में अगला गीत आपकी रेडियो सेट पर, ये रहा देवर फिल्म से।

होते हैं जिनके हिस्से में सिर्फ इंतज़ार आता है, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मिलने से पहले ही बिछड़ जाते हैं। जिस तरह पतझड़ के फूलों पर बहार नहीं आती, लेकिन उनकी खुशबू फिर भी दिल के किसी कोने में बाकी रह जाती है। आज का ये गीत भी उसी अधूरी मोहब्बत और बिछड़ते हुए ख्वाबों की उदास मगर खूबसूरत दास्तां है, जहाँ दर्द तो गहरा है मगर अल्फाज बेहद सादगी से दिल को छूते हैं। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में हमारा अगला गीत, फिल्म दो रास्ते।

रजनीगंधा में आज हम बात कर रहे हैं आपसे मोहब्बत की, जुदाई की, माजी की, तन्हाई की, वीरानियत की और एहसास की। ज़िंदगी हर किसी को मोहब्बत का मुकम्मल मौसम नहीं देती। कुछ लोग ऐसे

हैं वही आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे शख्स, ऐसे साथी और ऐसे दोस्त ही होते हैं जो ज़िंदगी की सारी थकान को पल भर में सुकून में बदल देते हैं। जैसे तपती हुई धूप में अचानक किसी पेड़ की ठंडी छांव मिल जाए, कुछ ऐसा। और फिर लगता है कि शायद यही वो एहसास था जिसकी तिश्नगी में हम बरसों से थे। हमारा अगला गीत मोहब्बत की उसी नर्म सुकून भरी रोशनी से सजा हुआ है, जहाँ प्यार किसी शोर की तरह नहीं बल्कि एक मीठी राहत की तरह दिल में उतरता है। अगला गीत आपके रेडियो सेट पर ये रहा, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने, फिल्म है साथ साथ।

11:34 और 21 सेकेंड, जहाँ कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपको स्ट्रेस फ्री कर देते हैं, सुकून महसूस कराते हैं।

दोस्तों, मेरे पास एक मेल आया था और उसमें जिक्र था कि आज आप थोड़ी उदास लग रही हैं, अच्छा साउंड नहीं कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके जहन में चल रहा है। यकीनन हम सब की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा होती है और कभी बहुत टफ और हार्श लगती है। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, कभी अपनों

से मिलाती है तो कभी खुद से भी दूर कर देती है। लेकिन शायद इसकी ये खूबसूरती है कि हर खुशी के बाद गम और गम के बाद खुशी, ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। और बिल्कुल एक बहते हुए दरिया के माफिक हमें भी अपने आप को छोड़ देना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए वो जो भी हमें देती है। हमारा अगला गीत भी इसी सच्चाई को बहुत सादगी से और गहराई से बयां करता है। जहां शिकवा कम है जिंदगी से, समझदारी ज्यादा है। आइए सुनते हैं अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी का म्यूजिक आपके रेडियो सेट पर। ये रहा

11:54 और 41 सेकेंड, और इसी के साथ रजनीगंधा से मैं समरीन आपसे लेती हूँ इजाज़त इस नगमों की दुनिया से, जहाँ गीत हमारे साथ साथ हमारे जज्बात के तौर पे, एहसासात के तौर पर, कभी कलाम में तो कभी मौसीकी में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। फिर होगी किसी रोज़ आपसे मुलाकात, होंगे गीत और होंगी आपसे बातें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, रखिए अपना और अपनों का ख्याल। शब बखैर।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनाओं और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपये और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रदेश के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कौशाम्बी में करीब 2,85,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने होमगार्ड्स जवानों के हित में भत्ता वृद्धि के ऐतिहासिक निर्णय सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इसके अलावा अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा और यह सामान्य से लगभग 1 डिग्री अधिक था। सूर्योदय 5:22 पर और सूर्यास्त 6:44 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सौ.7 MHz पर आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। अगली सभा में सुबह 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।